मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि यानी 10 जुलाई 2026 सुबह के समय 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण।

श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड का 117वां भाग आप सुन सकते हैं सुबह 6:44 पर। सुबह 7:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का, और आज सवेरे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:30 पर।

सुबह 8:45 पर आनंद लीजिए प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी का, और 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे दिल का मेलबॉक्स।

11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मेरा वजूद का चौथा भाग। 11:25 पर तस्वीर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में कुछ रोचक जानकारी। एक कदम बुजुर्गों की ओर सीनियर सिटीजन पर आधारित इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है 12:10 पर।

कलाकार बेमिसाल के आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 1:10 पर। उन्नत किसान कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। 3:10 पर आपकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन भवन का आनंद आप ले सकते हैं और परिक्रमा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 4:30 पर।

पानी पर लिखी कहानी घरौंदा हम आपके लिए लाएंगे शाम 5:10 पर। विश्लेषण कार्यक्रम होगा शाम 6:10 पर और मार्केट मंत्र शाम 6:30 पर। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7

बजकर 10 मिनट पर और सांझ सवेरे शाम 7:35 मिनट पर। राग और सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं सुबह 8:10 मिनट पर और स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 मिनट पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं।

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, जीवन की उलझनों में हम अक्सर बहुत कुछ सोचकर परेशान हो उठते हैं, लेकिन फिर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, बाकी जो होगा वो उनके आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। 6:18:56 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप ट्यून इन हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण में।

साथियों, कई बार कुछ शब्द हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ऐसे ही अमर शब्द हमें कबीर की वाणी में मिलते हैं, जो बड़ी सरलता से बिना किसी आडंबर के हमें ये बताते हैं कि मन निर्मल हो, कर्म सच्चे हों और हर व्यक्ति के मन में उसके परिजनों के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम हो, तो वही सच्ची भक्ति का मार्ग।

कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में विश्वास, विनम्रता और प्रभु का स्मरण हो तो जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। 6:32 और 23 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, जब बीच भंवर में नाव डगमगाए तो पतवार से पहले नाविक का विश्वास साथ निभाता है। ठीक उसी तरह जब मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, तो केवल उस परम शक्ति पर हमारा विश्वास ही हमें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करता है।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय गान का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ को।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार

उठकर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे बालकांड से लिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, और अब जानेंगे हम देश और दुनिया का हाल समाचारों के जरिए। तो आप सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी समाचार बुलेटिन, और उसके बाद 7:10 पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी मेरी। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए फिलहाल कार्यक्रम अर्पण से अनुमति, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.3

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियंत्रक तंत्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिम एशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य

0: क्षेपास्त्र प्रहारैहि प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं चतुर्दश जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया।

ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने खुशियों के होते हैं जनाब, तो कुछ सीख के। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह हमें एक नया पन्ना लिखने का मौका देती है एक बार फिर। इसलिए कहते हैं कि कल की उदासी को वहीं छोड़ दीजिए और स्वागत कीजिए आज का खुले दिल और खुली बाहों के साथ। और सच कहें तो सुबह का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब कानों में रस घोलते हुए ये गोल्डन सॉन्ग्स हमारा साथ देते हैं, हमारे हर काम में बिना किसी दखल अंदाजी के। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

भाई जमीन से आसमान तक सफलता की चाहत रखने वालों को करनी पड़ती है जी तोड़ मेहनत। ये बात तो सही है और इसमें नया भी कुछ नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी तो कुछ मिलता नहीं, और बाय चांस अगर कभी मिल भी जाए तो उतनी ही जल्दी वापस खो जाता है, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कद्र ही कहाँ करते हैं हम, है ना। चलिए तो फिर जारी रखते हैं अपनी कोशिश इसी तरह उस मंजिल को पाने की जिसका ख्वाब हमारे दिल में घर कर बैठा है, क्योंकि कहते हैं ना कि धारा को चीर कर ही मिलेगा किनारा। लता जी की आवाज़ में पेश है आपके लिए 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी से ये आइकॉनिक सॉन्ग।

7:20 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और हमारे साथ है मॉनसून, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनसून ने लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है और सुबह से न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी चार दिन तक बरसात का फोरकास्ट है। लेकिन फिलहाल जब मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ तो मुझे बरसात होती तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आज ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और हवा की गति रहेगी करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ह्यूमिडिटी हमें परेशान करेगी क्योंकि 90% आज ह्यूमिडिटी प्रिडिक्ट की गई है। और ऐसे में सबसे मुश्किल होता है जब हम धुले हुए कपड़ों को सुखाने की कोशिश करते हैं तो कॉटन के जो कपड़े हैं ना वो बहुत देर से सूखते हैं और कभी अंदर कभी बाहर कहीं कहीं हमें मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है जनाब कि आज कल का ये जो मौसम है ना इसमें हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर बारिश में भीग जाएं तो फिर ये कोशिश हमारी ज़रूर होनी चाहिए कि पहला मौका मिलते ही हम साफ़ पानी से नहा कर ख़ुद को सूखा रखने की कोशिश करें। और बरसात के मौसम में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन जो ख़राब बात है वो ये है कि मच्छर परेशान करने लगते हैं और ऐसे में फैलते हैं डेंगू और मलेरिया। और इससे बचने के लिए जो जो कुछ भी करना है वो हम सबको करना होगा, लेकिन घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है और ख़ास तौर से गमलों में और कूलर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो फिर ये ध्यान रखें कि वहाँ पानी इकट्ठा न होने पाए और सोते समय हो सके तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए अगर हमें बचना है बीमारियों से, मच्छरों से, और एंजॉय करना है मॉनसून सीजन को इसी तरह जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। फिलहाल गोल्डन म्यूजिक आपके साथ है 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और लता जी की आवाज़ में साथ में है अमीर बाई कर्नाटकी। गाना हम सबका जाना पहचाना और एक फुट टैपिंग नंबर है, फिल्म है समाधि। और अब क्या कहूँ, चलिए सुनवा देती हूँ आपको ये गाना क्योंकि बातें बहुत सारी हो रही हैं और बातें और भी होती रहेंगी आगे इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर।

जी जनाब, आपको बुलाते तो हम भी हैं हर रोज़, तभी तो आपसे मिलने चले आते हैं 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और आप जो भी कर रहे हैं वो करते हुए हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही गोल्डन म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए। तो और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आज आप दिन भर में सुनेंगे 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, आइए अब आपको ये बताते हैं। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट, जिसमें आपके साथ रहूंगी मैं, और 9:10 पर इसका दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें करेंगे बहुत सारी बातें आपके साथ और साथ होंगी प्रियांशी। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, और 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद। 11:25 पर आप सुनेंगे तस्वीर, जिसमें आज हम आपको मध्य प्रदेश में खजुराहो की सैर पर लेकर चलेंगे। और 12:10 पर दोपहर में आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। कलाकार बेमिसाल में आज हम अभिनेता संजीव कुमार के बारे में बात करेंगे दोपहर 1:10 पर। और 2:30 से 3 आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय होगा धान की रोपाई समय सावधानियां और खरपतवार। और इसमें शामिल होंगे स्टूडियो से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश कुमार, जो प्रधान वैज्ञानिक है पूसा संस्थान नई दिल्ली में। 6:30 मार्केट मंत्रा, 10:30 हरसिंगार, और 11:40 पर गीत मेरे मन में। तो फिलहाल एक और खूबसूरत गाना आपके लिए आशाताई की आवाज़ में, और इसी के साथ ले रही हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलती हूँ 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली में। टिल देन कीप एंजॉइंग द गोल्डन म्यूजिक। योर रेडियो वाली फ्रेंड पूजा सेज बाय बाय, टेक केयर। इस गाने के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।

0: बादलों से उतरी झमाझम बौछार से, अंबर से धरती पर बरसते प्यार से, प्रकृति के हरियालवी श्रृंगार से, गुदगुदाती पवन के संग नशीली फुहार से, कौन है जिसका ना झूम जाए मन। नदियां व झील सरोवर लगे भरने, नया जीवन पा उमंग उठे झरने, झूम उठे सब वृक्ष लता नहा धोकर, पक्षियों के दल लगे गुंजन करने, प्रकृति का हर ओर छोर आनंद मग्न, नए अंकुर खेतों का श्रृंगार करें, कृषक मन में नई उमंगें भरें, मौसम की अनुकूलताओं के वरदान से, मनकामनाओं की पूर्ति की फसलें लहरें, वर्षा की रानी की सौगातों से बिखरा चहुं ओर नया जीवन, बिखरा चहुं ओर नया जीवन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक और सुहावनी और हल्की भीगी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। Well, yes, rain is nature's way of adding a little soul to life.
0: Bilkul.
1: This is a very uplifting sort of reflection on rains. Also, nature looks more beautiful in the rain. Don't you think so?
0: बिल्कुल, और इस कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो मतभेद हैं वो भी बारिश के समान होने चाहिए, क्योंकि जो मतभेद हैं अगर वो बारिश के समान होंगे तो वो बरस कर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रेम और विश्वास जो है हमारा वो हवा के जैसा होना चाहिए।
1: True.
0: क्यों? क्योंकि वो दिखाई भले नहीं देता लेकिन हमेशा साथ रहता है।
1: How great is that?
0: बिल्कुल।
1: And well, the petrichor, the earthy smell, well, it's just amazing.
0: जी बिल्कुल,
1: right?
0: सबसे बिल्कुल बिल्कुल सबसे अगर उत्तम कुछ सुगंधों में से अगर बात की जाए तो गीली मिट्टी की जो वो गंध होती है उससे बेस्ट जो सौंधी खुशबू, अगर हम हिंदी में जैसा आपने बताया कि उससे अच्छा कुछ नहीं है।
1: True.
0: बिल्कुल.
1: It's a sort of a stress buster as well.
0: जी बिल्कुल.
1: I've read it somewhere and it works for me even.
0: ये सभी पर काम करता है शगुन, क्योंकि हम बाहर अगर बैठकर उस बारिश के मधुर संगीत का आनंद लें और गीली मिट्टी से निकसी उस गंध को अगर हम महसूस करें तो हम पाएंगे कि हमारे मन के भीतर एक अद्भुत आनंद की कह सकते हैं कि हम आनंद के पुष्प का प्रस्फुटन होता
1: है। True. And it's for some people it's tea time, coffee time.
0: बिल्कुल, अगर चाय और उस समय हमें मिल जाए तो क्या ही कहने। तो इन्हीं बारिश की फुहारों से जुड़ी इस सुबह में हम आपके साथ आए हैं कार्यक्रम आज सवेरे लेकर।
1: So yes, we are beginning our program. We have mainly three sections. Headlines
0: Bilkul.
1: First, Metro City updates next. We will explore today's history. Today it's 10th of July and our personality section basically
0: Ji.
1: begins. Then we have so many musicians that we'll talk
0: Bilkul,
1: about today.
0: Bilkul.
1: A lot of personalities. So let's begin our program with the headlines first.
0: Bilkul, bilkul.
1: India and Australia have agreed to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. The two countries also unveiled key initiatives to strengthen defense and maritime security ties during Prime Minister Narendra Modi's talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The adoption of the India-Australia Joint Declaration on Defense and Security Cooperation and India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap were among the major outcomes of the third India-Australia Annual Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia."
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। तीन देशों की इस यात्रा में अगले गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में श्री मोदी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी।
1: Prime Minister Modi will arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. The visit to New Zealand will be the first visit by the Indian Prime Minister in 40 years. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. So Auckland is buzzing with excitement ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to New Zealand. So nearly 4 decades after the last visit by an Indian Prime Minister, both the Indian community and New Zealanders, they are looking forward to this historic occasion. They are waiting for it, all the New Zealanders. Preparations are in full swing in Auckland to welcome Prime Minister Narendra Modi. Along with the Indian diaspora, many New Zealand people are also eager to greet him with the traditional Maori welcome, Kia ora Modi.
0: Ji. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाने का काम कर रही है।
1: महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ 7-member कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई टू ड्राफ्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द स्टेट। ही मेड द अनाउंसमेंट इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली यस्टरडे। The Chief Minister said that the directive principles of state policy in the Constitution of India call upon every state to consider implementing a uniform civil code. He said that in line with this provision, the state government had announced during the 2026 budget session that a committee would be set up to implement the uniform civil code. The committee will submit its report to the state government within the next 6 months. So based on this report, the government intends to table the Uniform Civil Code Bill before both houses of the legislature during the upcoming winter session in Nagpur.
0: प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है ताकि वो समाज के विभिन्न वर्गों से उनके विचारों को जान सके।
1: Former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been laid to rest at the Imam Reza Shrine in Mashhad as thousands of supporters gathered to pay their final farewells. Iranian media reported that the final burial took place at Dar al-Dhikr prayer hall after his coffin was carried around the tomb of Imam Reza as part of the funeral rites.
0: और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं।
1: Now on to sports.
0: जी बिल्कुल।
1: India's women's cricket team will create history today when they play first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England. It will be the first ever women's test to be held at Lord's. This will be the 16th test meeting between England and India. England and India women. England have won only once, while India have 3 victories, with the remaining 11 matches ending in draws. The last test between the two sides in England in June 2021, it ended in a draw. This is the team is led by Harmanpreet Kaur. India will look to make the occasion memorable in this historic encounter.
0: और शगुन अगर बात करें फुटबॉल के मैदान की तो फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: वेल, वी आल्सो हैव समथिंग स्पेशल टू टेल यू लिसनर्स, द क्लासिक मलयालम मूवी किरीदम विल रिटर्न टू थिएटर्स।

0: कार्यक्रम आज सवेरे में रुक करते हैं कुछ महानगरों की खबरों का, तो जानते हैं हाल दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5,633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन कर रही है। इसके अंतर्गत पॉक्सो, जागरूकता, साइबर सुरक्षा, आत्म प्रशिक्षण और नियमित निरीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शाहजहांबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। और अगर बात करें दिल्ली मेट्रो से जुड़ी, तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वाले वॉल निर्माण कार्य से की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में मैजेंटा लाइन पर 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे और ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की 7 प्रमुख लाइनों से जुड़ेगा।
1: On to Chennai. Let's head to Chennai. The Tamil Nadu government signed a memorandum of understanding with Vikram Solar Limited to set up a battery energy storage system manufacturing plant at the Sipcot Industrial Park in Gangaikondan in Tirunelveli district in the presence of Chief Minister C. Joseph Vijay for an investment of 15,037 crore rupees, which is expected to generate 2,670 jobs.
0: और अगर बात करें महाराष्ट्र के समाचारों की, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले जुड़े समूह ने महाराष्ट्र सरकार से खारघर में एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए पहाड़ी विस्फोट और खुदाई को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और मानसून के दौरान भूस्खलन और कीचड़ से खतरे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिए गए ज्ञापन में नेट कनेक्ट फाउंडेशन और सेव खारघर इकोलॉजी फोरम ने कहा कि पहाड़ियां नवी मुंबई की पारिस्थितिकी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और चेतावनी दी कि बारिश के बावजूद लगातार विस्फोट करने से ढलान अस्थिर हो सकते हैं और प्राकृतिक जल निकासी कमजोर हो सकती है।
1: Well, Bengaluru now. Karnataka has initiated measures to strengthen its power sector in view of possible disruptions linked to the El Nino phenomenon. Reviewing the state's power situation, Additional Chief Secretary Energy Gaurav Gupta directed officials to formulate a strategy to ensure uninterrupted electricity supply despite deficient rainfall and other weather-related challenges. He asked power utilities to maximize thermal power generation and expedite restoration of rain-damaged power infrastructure and speed up key projects. The Greater Bengaluru Authority will launch a special drive from Friday to remove abandoned vehicles parked on footpaths in coordination with the city's 5 corporations and the traffic police. So the GBA Chief Commissioner M. Maheshwar Rao said owners will be given 7 days notice to remove abandoned vehicles, failing which they will be seized and auctioned under the GBA Act 2024.
0: उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और कुलपति आर.एन. रवि ने कल सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें संस्थानों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, परिचालन, वित्तीय और अवसंरचनात्मक स्थिति का आकलन किया गया। समीक्षा बैठक में 20 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री रवि ने राज्य में विश्वविद्यालयों की दयनीय स्थिति पर इस दौरान गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के पुनर्निर्माण और उनके परिचालन की व्यवस्था को मजबूत करेगी।
1: Hyderabad, we'll head to Hyderabad. Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda stated that Prime Minister Narendra Modi has strengthened India internally while elevating its global stature to new heights. Speaking as the chief guest at the Democracy, Diplomacy, Development Conclave in Hyderabad yesterday, Mr. Nadda noted that the Prime Minister has effectively transformed India's political culture over the past 12 years by replacing dynastic and appeasement politics with a firm focus on development and accountability. He mentioned that Indian Railways has expanded into remote northeastern regions and has extended technological support to neighboring countries under the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam.
0: Sure. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और शगुन के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की, तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। इधर दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा का आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने की शहर में संभावना है। मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कोलकाता की, तो वहां पर भी आज बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: बिगिनिंग विद चेन्नई, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्रीज इन चेन्नई। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। The temperature will be between minimum of 24 degrees and maximum 33 degrees Celsius in Hyderabad.
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 10 जुलाई 2026 है। 10 जुलाई का दिन कहने को तो एक सामान्य सा ही दिन है, लेकिन इतिहास के झरोखे में अगर झांकें तो इस तारीख के नाम बहुत सी अच्छी और आंखों को नम कर देने वाली घटनाएं दर्ज हैं। तो जानते हैं उन घटनाओं के बारे में शगुन से।
1: राइट, टेकिंग आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम, इन 1800 द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज टू प्रमोट उर्दू हिंदी एंड इन 1806 द वेल्लोर म्यूटिनी इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ म्यूटिनी बाय इंडियन सिपॉयज अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
0: जी।
1: इन 1913 रोमानिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन बल्गेरिया। In 1963, first NCC, National Cadet Corps College, for training girls started at Gwalior. In 1964, Bangalore University was established in Karnataka. In 1971, Cochin University was established in Kerala. 1977, the Planning Commission decided to introduce rolling plan concept. In 1978, Mahatma Phule Backward Class Development Corporation was established.
0: और अगर बात करें बरस 1995 की, तो म्यांमा की लोकतंत्र समर्थक और असंतुष्ट नजरबंद नेत्री आंग सान स्यू की लगभग 6 सालों के बाद नजरबंदी से मुक्त की गई थी।
1: In 1997, Maleshwari earned India's first gold medal in Asian lifting weightlifting championship in Beijing.
0: और इसी साल यानी कि 1997 में फिजी में नए संविधान की मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार भी मिला था।
1: In the year 2000, EADS, the world's second largest aerospace group, was formed.
0: इसके 8 साल बाद यानी कि बरस 2008 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, या आज जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भिखारी ठाकुर को। वे भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, नारी विमर्श और दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता भी थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्हें भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। राहुल सांकृतायन ने अगर हम बात करें तो उनको अनगढ़ हीरा कहकर पुकारा था। जगदीश चंद्र माथुर ने उनको भरत मुनि की परंपरा का कलाकार से नामित किया। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके प्रमुख नाटक हैं विदेशिया, बेटी वियोग, कलयुग प्रेम, राधेश्याम बहार।

0: श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल की। जोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमतज़ला खान है। वो इस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चहेती अदाकारा हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से करोड़ों लोगों का दिल जीता। बिल्कुल, थिएटर को अपना पहला प्यार मानने वाली जोहरा ने परंपरा को तोड़ने और कला की दुनिया में अपनी सार्थकता को तलाशने में अपनी जिंदगी के करीब 70 बरस बिता दिए। थिएटर के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, वीर जारा और चीनी कम जैसी फिल्में शामिल हैं। जोहरा सहगल को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आइए क्यों ना सुने फिर प्रसार भारती में दिए गए उनके साक्षात्कार का ये अंश।
1: मुझसे पहले से मोहब्बत मेरी महबूब नमाज, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है, तेरा गम है तो गमे दर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से है आलम में शमानों को सार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीख बेहमान अतलस रेशमो अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचों बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है नजर अब भी उधर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब।
2: A turmoil of emotions.
0: जी बिल्कुल, क्या बात है, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है।
2: Such a beautiful narration this is. Listeners, today we are also remembering Jelly Roll Morton, blues and jazz pianist and the band leader and composer of Louisiana Creole descent. Morton was jazz's first arranger, proving that a genre rooted in improvisation could retain its essential characteristics and notate it. His composition, Jelly Roll Blues, published in 1915, was one of the first published jazz compositions. The composition that you are listening to in the background, it's Dr. Jazz.

श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली की जयंती है। उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक का लंबा संघर्ष किया। उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1940 में मशहूर फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स ने असद के पहली बार फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन किया था। इसके अलावा उन्होंने अफसाना, बरसात, पारसमणि, आया तूफान जैसी कई फिल्मों में अपने गीतों का जादू बिखेरा। अभी आप जो पार्श्व में गाना सुन रहे हैं यह है फिल्म पारसमणि का।

0: श्रोताओं, आज प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक माने जाने वाले सर गंगाराम की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत विधवा आश्रम, अपाहिज आश्रम, चिकित्सालय आदि संस्थाओं की स्थापना की गई है। और अगर बात करें क्रिकेट की दुनिया की, तो आज क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज लिटिल मास्टर यानी सुनील गावस्कर का जन्मदिन है। सुनील गावस्कर ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही बरस में 1000 से अधिक रन बनाए हैं और ये जादू उन्होंने चार चार बार करके दिखाया है। 34 शतक लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। सुनील गावस्कर को अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और विजडन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
1: Well, yes, Mukesh, his captaincy of the Indian team was considered as one of the first attacking ones, with the Indian team winning the 1984 Asia Cup and the World Championship of Cricket also in 1985.
0: जी, और बिल्कुल अगर हम खेलों की दुनिया की ही बात करें, तो आज एक और महानतम व्यक्ति की आज जयंती है, जिनका नाम है सैयद अली। वे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। वो पुरुषों की उस हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
1: Today we are also remembering and a singer, Mavis Staples. Well, today actually it's a birthday. Rhythm and blues and gospel singer, and we are with her. जी. With her birthday actually we are remembering the rhythm and blues that used to be active at that particular point of time in the year 1969 actually. She released her self-titled debut solo album. She continued to release solo albums throughout the following decades and collaborated with many, many artists. So let's listen in now to You Are Not Alone. You are

आज ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का भी जन्मदिन है। पटियाला घराने से संबंधित परवीन सुल्ताना ऐसी प्रतिभाशाली गायिका हैं जिन्हें वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। असमिया पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली परवीन सुल्ताना ने पटियाला घराने की गायकी में अपना अलग मुकाम स्थापित किया है। उन्हें पद्मश्री, गंधर्व कला निधि, मियाँ तानसेन, संगीत नाटक अकादमी और ना जाने ऐसे कितने ही पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। परवीन सुल्ताना ने फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। ये अभी जो आप गीत सुन रहे हैं ये उन्हीं का है जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात

0: का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू

0: करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilance

0: देते हैं कि वो यकसां सिविल कोड के निफास पर गौर करे। ये कमेटी आइंदा 6 माह के अंदर रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजुर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैन अलावामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंत। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौकिफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतालिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फरोग देने से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा क्या है जानते हैं दोस्त? वो यही है कि जो चीज़ सबके सामने होती है वही सबसे कम दिखाई देती है। जैसे कि चाबी हाथ में लेकर पूरे घर में पूछते फिरना कि अरे मेरी चाबी किसी ने देखी, या फिर चश्मा पहनकर कहना यार मेरा चश्मा कहाँ है। लेकिन मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात यह है कि ऐसा सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी होता है हमारे साथ। हम सोचते हैं कि खुशी कहीं दूर जाकर मिलेगी, सुकून किसी बड़े मकाम पर मिलेगा, जबकि वो तो सुबह की ठंडी हवा, घर वालों की मुस्कान, दोस्तों की एक फ़ोन और अपनेपन की छोटी छोटी बातों में हमारे सामने ही खड़ा होता है। कहते हैं ना कि सूरज रोज़ उगता है, इसलिए हमें उसका उगना चमत्कार नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या करना है? करना यही है कि आज अपनी नज़र का चश्मा बदल कर देखना है। हो सकता है कि जिस खजाने की तलाश में आप दुनिया घूम रहे हों उसकी चाबी तो आपकी अपनी चाबी जेब में ही हो।

करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

8:57 और 5 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, यह है म्यूजिकल दिल्ली और इसके पहले सेगमेंट में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी गोल्ड स्टूडियो से साथ देने वाली आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। फिलहाल वक्त ज़्यादा नहीं बचा है तो आपसे मुझे इजाज़त भी लेनी होगी, लेकिन जाते जाते एक काम की बात मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है जो ये कहती है कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है। स्क्रीन टाइम के लिए सबसे पहले आपकी जितनी भी गैर ज़रूरी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दें और खाना खाने बैठें तो फिर उस टाइम नो फ़ोन टाइम आप तय करके बैठें और हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करें। चलिए कोशिश करते हैं, शायद हम भी इसमें सफल हो जाएं। और फिलहाल एक खूबसूरत गाना आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ। जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, और इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के निर्माण तक विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री इन तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। उत्तराखंड से हमारी संवाददाता ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि राज्य के कई जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा की चेतावनी है।
2: मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस चेतावनी के मद्देनजर रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिलों में आज सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Australia have agreed to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. The two countries also unveiled key initiatives to strengthen defense and maritime security ties during Prime Minister Narendra Modi's talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The adoption of the India-Australia Joint Declaration on Defense and Security Cooperation

श्रोताओं, जुलाई की सुबह अपने साथ एक अनोखी आत्मीयता लेकर आई है। नभ में तैरते मेघ, पत्तियों पर मोतियों सी ठहरी वर्षा बूंदें और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध। प्रकृति मानो बिना कुछ कहे ही मन को शांति, ताजगी और एक नए विश्वास का संदेश दे रही हो। ऐसे में दिन की शुरुआत भी कुछ अधिक सहज और कुछ अधिक उजली सी लगती है। रिमझिम फुहारों का अपना ही जादू है, वो धरा को सींचती हैं, वृक्षों की डालियों पर नए रंग भर देती हैं, पक्षियों के स्वरों में नई ताजगी घोल देती हैं और मन में किसी शांत कोने में आशा का एक दीप जला जाती हैं। शायद इसीलिए सावन का हर प्रभात जीवन से फिर एक बार प्रेम करना सिखा जाता है। शायद इसीलिए सावन का हर प्रभात एक नए विश्वास का निमंत्रण लगता है। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की इस भीनी भीनी सुबह में हम साथ चलेंगे श्रम और सृजन की प्रेरक कथाओं तक, प्रकृति के स्नेहिल संदेशों तक और उन विचारों तक जो हमारे दिन को थोड़ा और अर्थपूर्ण बना दें। वर्षा की ये मधुर बेला है और प्रकृति की तरह जीवन भी निरंतर बहता है। हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर और एक नई मुस्कान लेकर आती है। तो आइए इस सुहानी सुबह का आरंभ करते हैं संगीत की मधुर संगति के साथ।

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रकृति के आंगन में ले चला हमें ये गीत, लता मंगेशकर के सुरों में, नौशाद के संगीत से सजा और शकील बदायूनी के बोल थे। फिल्म आदमी से अभी ये गीत हमने सुना। श्रोताओं, बरसात की सुबह शायद इसलिए इतनी प्रिय लगती हैं क्योंकि वे हमें कुछ पल ठहरना सिखाती हैं। आंगन में सजे तुलसी के चौरे पर ठहरी ये वर्षा बूंदे हैं, भीगी हवा में घुली चमेली की मादक सुगंध, और कहीं दूर किसी मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि है तो कहीं पेड़ों की डालियों पर चहचहाती गौरैयों का कलरव। प्रकृति मानो अपने सहज सौंदर्य से दिन का मंगलाचरण कर रही हो। तो आइए अब जरा आज के मौसम की भी खबर ले लें। लगता है बादलों ने दिल्ली में कुछ दिन और ठहरने का मन बना लिया है। दिन भर आकाश में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कहीं कहीं हल्की बारिश या फुहारें भी आपका अभिवादन कर सकती हैं। अधिकतम तापमान लगभग 34 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो यदि आप घर से बाहर निकलने का विचार करें तो छाता साथ रखिएगा, कौन जाने सावन राह चलते मुस्कुराकर आपका स्वागत कर दे। प्रकृति का तो अपना ही अद्भुत स्वभाव है, बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखा जाती है। जहां वर्षा हमें धैर्य सिखाती है, हम चाहें या ना चाहें, वृक्ष हमें विनम्रता और धुली हुई कच्ची पगडंडी ये विश्वास जगाती है कि हर नया सवेरा अपने साथ एक नई संभावना लेकर आया है। तो आइए इस सावनी सुबह की ताजगी को अब सुरों की मधुर छाँव में महसूस करें।

प्यासा सावन फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के सुरों में आपने ये गीत सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और संतोष आनंद ने लिखे थे बोल। श्रोताओं, हमारे देश की पहचान केवल उसकी धरोहरों से नहीं बल्कि उन्हें गढ़ने वाले कुशल हाथों से भी है। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी, धोबी, नाई, मूर्तिकार और ऐसे ही अनेक पारंपरिक कारीगर अपनी कला और परिश्रम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। ऐसे ही शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए का टूलकिट प्रोत्साहन, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन भत्ता तथा बिना गारंटी के रियायती ब्याज दर पर 3,00,000 रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और आप किसी पारंपरिक शिल्प या हस्तकला से जुड़े हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या फिर आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के संपर्क में आ सकते हैं। और आइए श्रोता

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तू आन है, तू शान।

मान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूं और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल लगी। सुबह की रौनक और सुरों का ये सिलसिला जारी है, तो आइए अपनी संगीतमय यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। श्रोताओं, भारतीय शिल्प और स्थापत्य की इस अनुपम परंपरा की एक और मनोहारी झलक लेकर मैं आज पूर्वाह्न 11:25 पर कार्यक्रम तस्वीर में आपके साथ चलूंगी मध्य प्रदेश के विश्व विख्यात खजुराहो की काला यात्रा पर। उस संसार से रूबरू होंगे जहां प्रस्तर मौन होकर भी सदियों की कथा कहते हैं और हर शिल्प भारतीय संस्कृति की अनुपम सृजनशीलता का साक्षी बनकर आज भी समय से संवाद करता है। और हर महान सृजन की शुरुआत होती है एक विचार से, और हर विचार में भविष्य को बदल देने की संभावना छिपी होती है। जब ऐसे विचार प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मानव कल्याण से जुड़ते हैं, तब वे आने वाले कल को सुरक्षित, समृद्ध और उज्जवल बनाते हैं। और आज का दिन यानी वैश्विक ऊर्जा स्वाधीनता दिवस, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, हमें इसी दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और प्रकृति के संसाधनों के प्रति जिम्मेदार रहना, ये केवल पर्यावरण की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। तो आइए इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ सुनते हैं एक और मधुर गीत।

समय की धारा निरंतर बहती रहती है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपने कर्म समर्पण और उत्कृष्टता के कारण उसकी स्मृतियों में स्थायी स्थान बना लेते हैं। वे हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची पहचान पद या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और निरंतर साधना से बनती है। आज का दिन ऐसे ही कर्म निष्ठा और उत्कृष्टता के प्रेरक उदाहरणों का स्मरण कराता है। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मल्लिका पद्मभूषण बेगम परवीन सुल्ताना का जन्म दिवस है। पटियाला घराने से हिंदी सिनेमा में कुदरत, पाकीजा, अन्य फिल्म तक उनके संगीत से कला जगत समृद्ध है। और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने वाले महान बल्लेबाज और कप्तान रहे सुनील गावस्कर तथा सार्वजनिक जीवन में दीर्घकाल से सक्रिय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में उनके योगदान और समर्पण ने असंख्य लोगों को प्रेरित किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर कर्मशीलता के साथ देश और समाज का पथ आलोकित करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं को सुरों का साथ देते हैं।

श्रोताओं, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि अच्छाई कभी बहुत बड़े अवसर नहीं मांगती। उसे तो बस एक छोटा सा क्षण चाहिए, एक मुस्कान, एक नमस्कार, एक धन्यवाद या किसी के लिए मन से निकली एक शुभकामना। और शायद यही छोटी सी बात हम सब अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, किसी अच्छी बात से करें। किसी अपने को मुस्कुराकर सुप्रभात कह दें। घर से निकलते समय धन्यवाद कहना ना भूलें। या रास्ते में मिलने वाले किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी मन ही मन शुभकामना कर दें। विश्वास मानिए, अच्छाई का हर छोटा सा बीज कभी ना कभी मुस्कान बनकर लौटता है। तो आइए इसी मुस्कान को सुरों का साथ भी दें। प्रस्तुत है ये मन भावन गीत मिली फिल्म से। लता मंगेशकर के सुर हैं, एसटी बर्मन के संगीत में और योगेश के लिखे बोलों के साथ सुनते हैं।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कुछ पेंगुइन्स अपने साथी को पसंद आने पर उसे एक सुंदर सा कंकड़ यानी एक पेबल उपहार में देते हैं। कितना अद्भुत है ना। दुनिया की सबसे प्यारी भेंट कभी कभी सबसे साधारण चीज भी हो सकती है, और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। सबसे कीमती उपहार हमेशा महंगे नहीं होते, वो समय, अपनापन और स्नेह के रूप में भी दिए जा सकते हैं। और अब इसी अपनत्व के साथ सुनिए ये गीत। फिल्म है शोर, लता मंगेशकर और मुकेश के सुरों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और संतोष आनंद ने लिखे हैं

हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। बीते हुए दिन की थकान, अधूरे काम या छोटी छोटी चिंताएं वहीं रह जाती हैं और सामने खुलता है एक बिल्कुल नया पृष्ठ, जिस पर आज हम अपनी मुस्कान, अपने कर्म और अपने व्यवहार से एक सुंदर कहानी लिख सकते हैं। हो सकता है आज का दिन बिल्कुल वैसा ना बीते जैसा आपने सोचा हो, लेकिन यदि मन में धैर्य, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में आशा बनी रहे तो हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ नया सिखा कर ही जाती है। जीवन की यही यात्रा उसे इतना सुंदर तो बनाती है। इन्हीं सकारात्मक भावों के साथ आज की इस

कहानी यात्रा से मैं प्रियांशी भटनागर आपसे अनुमति लेती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नई सफलताओं से आलोकित हों। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। फिर मिलते हैं समाचार, विश्व दर्पण और वर्ल्ड न्यूज के पश्चात ठीक 10:30 पर आपके प्रिय कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में। अपने गीत और संदेश तैयार रखिएगा और भेजिएगा हमें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तब तक नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi, along with Australian Prime Minister Anthony Albanese, visited the iconic Melbourne Cricket Ground today. The visit highlights the growing role of sports diplomacy in India-Australia relations. The discussions between both the leaders focused on cricket cooperation, sports infrastructure, athlete development, knowledge sharing, the IPL-BBL partnership and collaboration ahead of major global sporting events, including the 2032 Brisbane Olympics and India's 2036 Olympic bid.
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
2: New Zealand is celebrating Matariki, the Maori New Year, a time of hope, remembrance,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुरपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई

0: का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक तथा भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। ऑकलैंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वे बेहद उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: न्यूजीलैंड में समय आशा, स्मरण और नई शुरुआत का प्रतीक माओरी नववर्ष मातारी की मनाया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड की अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मातारी की उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पड़ाव भी है। ये केवल दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं बल्कि दोनों देशों की संस्कृतियों, परंपराओं और साझा आकांक्षाओं के संगम का प्रतीक भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ गया था। खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। मशहूर वेल्श गायिका और गीतकार बोनी टायलर का कल पुर्तगाल के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। टायलर के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की और बताया कि इस वर्ष मई में हुई उनकी आंत की सर्जरी के बाद उनका इलाज चल रहा था। बोनी टायलर का मूल नाम गेनर सुलिवन था। उन्होंने संगीत जगत को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें इट्स आर द हार्ट और होल्डिंग आउट फॉर द हीरो काफी लोकप्रिय हुए। 80 के दशक में आया उनका लोकप्रिय गीत टोटल एक्लिप्स ऑफ द हार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ।

0: बोनी टेलर के करियर के 3 ग्रैमी नॉमिनेशन में से एक बार वो इसी गाने के लिए चुनी गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल भी आज खेले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। उधर ब्रिस्टल में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में कल रात इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारत के धीरज बोमदेवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। अब कांस्य पदक के बीच कंपाउंड स्पर्धा में भारत ने पहले ही एक पदक पक्का कर लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच चुकी है।
0: ब्रिटेन के कई सांसदों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती अशांति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में सख्त लॉकडाउन, कर्फ्यू और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। इस हमले में ब्रिटिश नागरिक सहित कई लोगों की मृत्यु हुई है और नागरिक घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और समय हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स का। यहां आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए मैं हाजिर हूं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करें। आपके मन में हो कोई बात, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या खास संदेश, तो उसे भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए हमें अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी 9868868753। क्या पता श्रोताओं, कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से चल पड़े। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस धुन के साथ।

आइए श्रोताओं, संगीत की इस दिलकश लहर के बाद अब खोलते हैं आज का दिल का मेलबॉक्स और पढ़ते हैं आपके संदेश। महाराष्ट्र से संदेश प्राप्त हुआ है हमें राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी और राघव कुलकर्णी का। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आयान बाबू भी इनके साथ हैं। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही, इमरान, आमना, आसमा, आशु और समस्त फूलवाले फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस और सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब युग्मिता केश और महुआ केश की फरमाइश पर, कोलकाता से इनकी फरमाइश आई है इस गीत के लिए।

श्रोताओं, संगीत ने तो माहौल सजा दिया और बाहर भी सभी जगह बरसात के आसार लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपने अपने संदेशों में हमें और क्या लिख के भेजा है। तिलंगपुर कोटला दिल्ली से मधुबाला हमारे साथ जुड़ी हैं और अपना फरमाइशी गीत भी भेजा है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी यश और उनके मम्मी पापा सभी कार्यक्रम में गीत सुनना चाहते हैं। अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है इन्होंने। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवम हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू भी सुन रहे हैं कार्यक्रम। महाराष्ट्र से संदेश आया है, पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर लिख रहे हैं हमें कि पुणे में 4-5 दिन से बहुत बारिश हुई और अभी जरा रुकी है और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, तो इसी बहाने सुनना चाहते हैं एक मौसम वाला गीत। तो आइए पहले आप ही की फरमाइश पूरी करें, एक अच्छा सुंदर मौसम वाला गीत आपके लिए।

आइए श्रोताओं फिर सुने आपकी आवाज। राम लिख रहे हैं हमें, पलवल से इन्होंने अपना गीत भी लिख भेजा है। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान और समीरा आजमीन इनके साथ हैं। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति हमारे साथ हैं। परवेज आलम लिख रहे हैं हमें चंपारण मोतिहारी बिहार से। देवदत्त परसौलिया जुड़े हैं हमारे साथ प्रताप विहार गाजियाबाद से और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है इन्होंने। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हैं। राम नरेश, रेखा, करण, अल्पाश, रघु, रचना, सृष्टि, सावी हमारे साथ जुड़े हैं संगम विहार नई दिल्ली से। हरिप्रसाद विश्वकर्मा जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। और आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं एक

फरमाइशी गीत। इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास सीटी दीवाना सुखविंदर सिंह जौड़ा, इनकी दिल्ली से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी भी हमें इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत, जो मौसम के साथ साथ सभी को अच्छा लगता है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूँ कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आप सभी के मनपसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldair@gmail.com पर या व्हाट्सएप करें 9868867533 पर। तो आइए आपके कुछ और संदेश जल्दी से पढ़ लें। हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मकलापुर से नारायण इंगले, सोपानताइडे, राजकुमार और आशीष हमारे साथ हैं। नलेश्वर नगर से PS नावकर, निर्मला और विशाल हमारे साथ हैं। शाहजी नगर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता हमारे साथ हैं। पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी हमारे साथ हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप हमारे साथ जुड़े हैं। और सनावद मध्य प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत भी हमारे साथ हैं। और दिल्ली मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना, मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हमारे साथ हैं। आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आपके हर संदेश में स्नेह, विश्वास और आपका अपनापन अलग ही छवि में झलकता है। मिलते हैं समाचार के पश्चात, 11:25 पर मिलेंगे और चलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो। तब तक प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and security ties between the two democratic giants. The economic momentum ignited early with the India-Australia CEOs Forum, where business leaders celebrated a 55% surge in two-way trade driven by the 2022 ECTA agreement. To unlock further potential, Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese fast-tracked negotiations for the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA. The bilateral talks scaled a historic milestone in clean energy with the finalisation of the administrative arrangement enabling long-term Australian uranium supply to India, reviving a foundational 2014 framework. Strategic security also took centre stage as both maritime powers adopted a joint declaration on defence and security cooperation alongside a maritime security collaboration roadmap to ensure a free and open Indo-Pacific. The tour's unparalleled public resonance was on full display at the Melbourne Meets Modi Diaspora Rally, where an ecstatic crowd of around 25,000 at Marvel Stadium welcomed both leaders. Prime Minister Modi hailed the 1 million strong Indian-Australian community as the

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी गहराई और सच्चाई वही जान सकते हैं जो इस रिश्ते में रहते हैं। प्यार, भरोसा और साथ, ये तीनों ही चीजें इस अनमोल रिश्ते की पहचान होती हैं। ये जिंदगी में एक ठहराव देती हैं। अब वो आपकी कोई समवन स्पेशल हो सकती है या फिर आपका जीवन साथी।
1: दोनों ही सूरत हाल में वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो आपको आपकी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर लड़खड़ाने से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि शायद अब मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ देगा।
0: हो सकता है कि किसी की नौकरी जा रही हो, हो सकता है कि कोई किसी बीमारी से परेशान हो, किसी को बिजनेस में कोई नुकसान उठाना पड़ रहा हो या फिर किसी के साथ कोई पारिवारिक समस्या हो गई हो। वजह चाहे जो भी हो, मगर हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी दुख के सागर में गले तक डूब जाता है।
1: और फिर जितना अपने दुख से बाहर निकलने की सोचता है उतना ही उस दुख में और डूब जाता है, और यही वो वक्त होता है जब उसे अपने किसी ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसे उसके दुख से बाहर निकाल ले।
0: वो मोहब्बत की कुछ ऐसी मिसाल रखता है कि मुझसे कुछ ज्यादा ही वो मेरा ख्याल रखता है।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
3: वैसे आजकल के नौजवानों में एक खास प्रॉब्लम है, वो ये कि पलक झपकते ही किसी से भी दिल लगा लेते हैं। जरा सा कोई लड़की हंस बोल क्या ले तो बस बज गई दिल की घंटी, और उसके बाद दिन भर बस उसी का नाम और नहीं कोई और काम।
2: हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो, लेकिन वक्त चाहे जो भी रहा हो, चाहे वो गुजरा हुआ जमाना हो या आज का, प्यार खुद ब खुद हो जाना या किसी को चाह लेना शायद जिंदगी के साथ के लिए इतना आसान नहीं होता।
3: क्योंकि जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि प्यार को निभाने के लिए दोनों में से किसी एक को, खासकर मेल को, अपनी लाइफ में स्टेबलिस्ट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि उसका अपना एक वजूद हो, उसकी खुद की अपनी एक पहचान हो।
2: मगर कमबख्त, ये प्यार कुछ चीज ही ऐसी है जिसे इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। मगर फिर जब वक्त और हालात इन दोनों को मिलने नहीं देते तो जीवन में बाकी रह जाती है तड़प और ढेर सारा दर्द। कौन सही था, कौन गलत, ये कौन जान सकता है।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। यानी इंसान अपनी मर्जी से ना तो किसी से प्यार कर सकता है और प्यार हो जाने पर किसी को भुला सकता है।
1: आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जिनके इश्क के चर्चे आम हो गए। कहीं सुना होगा कि कोई स्त्री अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई। तो कहीं सुना होगा कि किसी लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए किसी को नुकसान तक पहुंचा दिया।
2: तो कहीं किसी लड़के ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के खातिर अपने घर परिवार को और समाज को भी ठुकरा दिया। समाज में ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहां लड़की और लड़के की उम्र में बहुत अंतर रहा होगा या फिर दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस में भी बहुत अंतर रहा होगा।
1: अब कहने वाले चाहे जो कहें, सच तो ये है कि दिल अगर किसी पर आ गया,
2: दिल में तो, सांसों में तो, ख्वाबों में तो, ख्यालों में तो,
1: क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या काबा,
2: मेरे जज्बात में तो, मेरी पहचान में तो।

0: कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355387211 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय चिंतन की ये त्रयी हमारी संस्कृति का सौंदर्य दर्शन है, जहाँ सत्य जीवन का आधार है, शिव उसका मंगल है और सौंदर्य उसकी अभिव्यक्ति। मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित खजुराहो की मंदिर इसी दर्शन को शिलाओं में मूर्त रूप देते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी भटनागर आपके प्रिय यात्रा वृतांत तस्वीर में आज आपको लेकर चलूंगी बुंदेलखंड की उस अनुपम धरोहर की ओर, जहां स्थापत्य, शिल्पकला और आध्यात्म सहस्त्र वर्षों से एक साथ समृद्ध हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो कभी चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर आज विश्व धरोहर के रूप में शिल्पकला की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिने जाते हैं। आइए इस अद्भुत नगरी की यात्रा आरंभ करें, जहां प्रत्येक शिला एक कथा कहती है, प्रत्येक प्रतिमा एक भाव व्यक्त करती है और प्रत्येक मंदिर भारतीय कला की अमर साधना का साक्षी बनकर आज भी अडिग खड़ा है।

खजुराहो की कथा उस युग की है जब कला और आस्था राज सत्ता के संरक्षण में अपने उत्कर्ष पर थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल राजाओं ने यहाँ लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। समय की धारा में आज उनमें से लगभग 25 मंदिर ही सुरक्षित हैं, किंतु उनका वैभव आज भी वैसा ही विस्मय जगाता है। इन मंदिरों में शैव, वैष्णव और जैन तीनों परंपराओं का समन्वय है और इसी कारण खजुराहो आस्था के तीर्थ के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का भी अनुपम उदाहरण है। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित खजुराहो भारतीय स्थापत्य और शिल्प कला की उन अमूल्य निधियों में गिना जाता है जिन्हें देखने देश विदेश से असंख्य यात्री यहाँ आते हैं, ठीक हमारी तरह। तो आइए इन मंदिरों की ओर बढ़ें, जहाँ पत्थरों को भाव भक्ति और जीवन की अनुभूति भी दी गई। पर उससे पहले चलिए इन सुरों में लीन हो जाएं।

खजुराहो के मंदिरों की यात्रा आरंभ होती है पश्चिमी मंदिर समूह से, खजुराहो के सबसे विशाल और सर्वाधिक संरक्षित परिसर से। आइए आरंभ करें कंदारिया महादेव मंदिर से। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर खजुराहो की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इसकी ऊंची शिखर रचना पर्वत की भव्यता का आभास कराती है और इसकी संरचना नागर शैली की परिपक्वता को दर्शाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं लक्ष्मण मंदिर पर, जो भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो के प्राचीनतम और सबसे सुंदर संरक्षित मंदिरों में से है। इसके समीप ही स्थित है विश्वनाथ मंदिर, उसके सामने बना है नदी मंडप और देवी जगदम्बी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर इस परिसर की स्थापत्य विविधता को दर्शाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर विशेष रूप से सूर्यदेव को समर्पित है और खजुराहो के मंदिरों में ये अपनी अलग पहचान रखता है। श्रोताओं, पश्चिमी समूह से आगे बढ़ते हुए खजुराहो के अन्य मंदिर समूह भी देखने योग्य हैं। पूर्वी समूह के पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैन मंदिर अपनी शांत गरिमा और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं दक्षिणी समूह की ओर चलें तो दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर स्थापत्य यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन मंदिरों की रचना में बलुआ पत्थर का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऊंचे शिखर, गर्भगृह, मंडप और अलंकृत द्वार भारतीय नागर स्थापत्य की विशेषताओं को दर्शाते हैं और हमें उस युग की अद्भुत निर्माण कला से भी परिचित कराते हैं जहां पत्थर भी अपनी कहानी कहते

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। लौटकर खजुराहो की शिल्प कला और उसके अद्भुत प्राकृतिक वैभव की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन

श्रोताओं, इस ऐतिहासिक नगरी के आसपास बुंदेलखंड की प्रकृति भी अपने अनेक सुंदर रूपों के साथ आपका इंतजार करती है। खजुराहो से कुछ ही दूरी पर स्थित है रनेह जलप्रपात। वर्षा ऋतु में ये ऐसा विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है जहाँ प्रकृति ने स्वयं एक अद्भुत चित्र रचा है। और प्रकृति और वन्य जीवन के प्रेमियों के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। केन नदी के किनारे फैला ये वन क्षेत्र बाघों के साथ साथ अनेक पक्षियों और वन्य जीवों का निवास स्थान है। और भाग्य साथ दे तो यहाँ वन्य जीवन भी रोमांचक झलक दे सकता है आपको। केन घड़ियाल अभयारण्य भी इस क्षेत्र की एक विशेष पहचान है। यहाँ घड़ियालों के संरक्षण के साथ नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। और वहीं पांडव फॉल्स अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्र वर्षों से कला को संजोए खजुराहो के आसपास की इस धरती की सुंदरता केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि नदियों, वनों और पहाड़ियों में

यहाँ के गीतों में मिट्टी की सरलता, ऋतुओं का उल्लास और लोक जीवन की सहज भावनाएं सुनाई देती हैं। खजुराहो का नृत्य महोत्सव भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का एक प्रतिष्ठित आयोजन है, जहां मंदिरों की पृष्ठभूमि में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। आप आए तो अवश्य देखिएगा। बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में राय नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी लय और चंचलता लोक उत्सवों की पहचान है। वहीं दिवारी नृत्य अपनी ऊर्जा और पारंपरिक शैली के लिए जाना जाता है, और यहाँ की शिल्प परंपरा भी इस सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पत्थर पर सूक्ष्म नक्काशी करने वाले कलाकार आज भी उस शिल्प स्मृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसने सदियों पहले खजुराहो के मंदिरों को आकार दिया था। खजुराहो हमें ये अनुभव कराता है कि विरासत केवल अतीत में सुरक्षित कोई स्मारक नहीं होती, वो लोगों की आवाज, उनके उत्सव और उनकी रचनात्मकता में आज भी जीवित रहती है।

श्रोताओं, किसी भी स्थान की वास्तविक पहचान केवल उसके स्मारकों में नहीं, वहाँ के लोगों, उनकी भाषा, संगीत और परंपराओं में बसती है। खजुराहो की यात्रा में बुंदेलखंड की इसी जीवंत संस्कृति से परिचय होना एक विशेष अनुभव है। ये क्षेत्र अपनी बुंदेली बोली, लोक गीतों और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है।

नाना तछुम तछुम तक तक दाते इसकिदा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

दर्शन हमने किए और आसपास की प्रकृति के भी। तो अब बात करते हैं कि खजुराहो की यात्रा को सहज और यादगार बनाने वाली कुछ आवश्यक जानकारियों के विषय में। बुंदेलखंड का स्वाद भी अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों में बुंदेली थाली, दाल बाफला, भुट्टे का कीस, मावा बाटी और स्थानीय मिठाइयाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। आप आए तो इन्हें अवश्य चखिएगा, उनके बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और यात्रा के स्मृति रूप आप यहाँ की पत्थर कलाकृतियाँ, छोटे शिल्प प्रतिरूप, हस्त निर्मित वस्तुएं और स्थानीय कलाकृतियाँ भी साथ ले जा सकते हैं। पर खजुराहो जाएं कैसे? तो यहाँ पहुँचने के लिए वायु मार्ग सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। खजुराहो हवाई अड्डा दिल्ली और कुछ अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से खजुराहो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा जा सकता है, जो प्रमुख शहरों से भी जुड़ता है। सड़क मार्ग से भी ये नगर झांसी, सतना और छतरपुर जैसे शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अनुकूल माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है और मंदिरों के दर्शन भी आराम से किए जा सकते हैं। वहीं वर्षा ऋतु में आसपास की हरियाली और जलप्रपात अपने सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। और यदि आपको प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य महोत्सव देखना हो तो फरवरी आदर्श समय है जाने का। समावेशी पर्यटन की दिशा में खजुराहो में यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रयास किए गए हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुगम मार्ग हैं, सहायता सुविधाएं और वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है, ताकि विरासत की ये यात्रा सभी के लिए सहज बन सके। तो चाहे आप कला के साधक हों, इतिहास के जिज्ञासु हों या प्रकृति के प्रेमी, खजुराहो हर यात्री को अपनी गति से इसे जानने और अनुभव करने का अवसर देता है। और श्रोताओं, खजुराहो से विदा लेते हुए मन एक बार फिर उन शिलाओं की ओर लौटता है जिनमें एक सहस्त्राब्दी पहले किसी कलाकार ने आकृतियों में अपने समय की चेतना अंकित की थी। इन मंदिरों के शांत प्रांगणों में चलते हुए अनुभव होता है कि कला वास्तव में समय से परे होती है। एक शिल्पकार के हाथों की रचना पीढ़ियों की यात्रा करती हुई आज भी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही अर्थपूर्ण। अगली यात्रा में फिर किसी नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा

0: ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंगन। घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर
1: और रश्मि कुकरेती। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और रश्मि जी कैसी हैं आप?
1: जी बढ़िया।
0: और आज जो हम कार्यक्रम सुन रहे हैं और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं वो एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और सिमरन, हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछते हैं अपने श्रोताओं से, तो आज का प्रश्न आप क्या लेकर आई हैं?
0: देखो, आज है खास विशेष हमारा कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो आज का हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं अपने श्रोताओं से, वो रहेगा हमारा परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है।
1: जी, अपने विचार हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com इस ईमेल पर, क्योंकि देखिए सिमरन, परिवार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है ना, तो कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। लेकिन आपके ऐसे कुछ अनुभव रहे होंगे जरूर कि किस तरह से हम परिवार को जोड़कर रख सकते हैं, तो जल्दी से लिख भेजिए ये जवाब कि परिवार को किस प्रकार जोड़ सकते हैं आप।
0: और तब तक हम अपने श्रोताओं को सुनाते एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

0: मिलजुल कर कुछ कम कम करें, बिल्कुल। और अभी आप सुन रहे थे एक गीत हमारे तुम्हारे फिल्म से, और गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: और सिमरन, जो हमारा प्रश्न था ना कि परिवार को जोड़कर रखने का मूल मंत्र क्या है, बहुत सारे जवाब दोस्तों इस गीत में छुपे थे, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने, क्योंकि जब आप परिवार की बात करते हैं तो परिवार में तो हर तरह का सदस्य होता है और हर तरह के मिजाज होते हैं उनके अलग अलग
1: जी, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुने, छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखें और हर सदस्य को ये एहसास कराएं कि वो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, तो विश्वास कीजिए रिश्ते मजबूत जरूर बने रहेंगे, है ना?
0: बिल्कुल बने रहेंगे। और रश्मि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। तो जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो इस सच है कि वरिष्ठ जन हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को नसीब होता है, और इसीलिए सभी को अपनों से बड़े और वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए।
1: बुजुर्गों के अनुभव और सीख से हम जीवन में आई विपत्तियों से तो पार पा ही सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे समाज की अनमोल विरासत होते हैं।
0: और रश्मि जी देखिए, हम अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हमारे घर की तरक्की हो सकती है पूरी तरह से।
1: भाई, बड़ों का होना अगर है तो सुरक्षा

0: है, संस्कार है, संवेदना है, ज्ञान है, और जो अपनी पारिवारिक जड़ें हैं ना उनको जोड़े रखने के लिए तो ये अति आवश्यक है।
1: बिल्कुल
0: उनका जो जीवन जीने की कला सिखाने का जो तरीका होता है ना, वो तो प्यार और दुलार से भरा हुआ होता है।
1: और उनके साथ खड़े होना परिवार की जिम्मेदारी है। उन्हें सम्मान, प्यार और देखभाल दें, जैसा कि उन्होंने आपको तब दिया था जब आप उन पर निर्भर थे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना?
0: जी बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में गीत फिल्म थी खूबसूरत।
1: और सिमरन, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई परिवार को साथ रखने का मूल मंत्र, अगर मान होता रहे एक दूसरे का तो परिवार एक साथ जुड़ रहता है। और मधु किरण हमें कह रही है भाई एक चुप सौ सुख,
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी बात है परिवार के लिए।
1: और प्रकाश चंद गोगिया भी जुड़ गए हैं, उनका भी यही कहना है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ गए हैं। नवीन भाटिया कह रहे हैं कि बुजुर्गों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें, उनकी भी बात सुने और कभी क्रोध जो अगर आ जाए तो शांति बनाए रखें। मोतीनगर से आप हैं और साथ डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं
0: कि भाई हर हफ्ते के जो फिक्स फैमिली टाइम रखिए जिससे

0: डिनर के लिए छोटी मीटिंग जा, मतलब मेरा कहने का मतलब उनका ये है और मेरा कहने का भी मतलब ये है रश्मि जी कि सब बैठ के इकट्ठे खाना खाएं, बुजुर्ग भी साथ में बैठ के प्यार से खाना खाएं तो कितना अच्छा लगता है। अकेले खाना ना
1: जी,
0: खाएं, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए।
1: और साथ में एक और हमारे पास मेल आ गई है, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन परिवार को एक साथ रखना सबसे ज्यादा स्त्री का काम है, माँ का काम है, वही कोशिश मैं भी करती हूँ। मैं तो शाम को सब एक साथ डिनर करवाने की कोशिश करती हूँ, सब एक साथ आए, सब मिलकर दिन भर की बातें करें और रविवार को टीवी पर कोई एक साथ मूवी देखकर गप्पे मारते हैं।
0: बहुत बढ़िया है
1: तो क्या कहेंगी आप सिमरन?
0: बहुत अच्छी बात है और इन्होंने इतनी अच्छा लिखा है और ऐसा ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी ये बिल्कुल सही है, है ना।
1: मुझे लगता है कि स्त्री का तो काम है ही, लेकिन बाकी सबका भी काम है, चाहे वो घर के पुरुष हो या घर के वरिष्ठ हो, सभी को कोशिश करनी
0: चाहिए। जितने भी सदस्य घर में रहते हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर काम को करें तो बहुत अच्छा होता है।
2: क्या?
3: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो।
0: तो बात तो ये हुई है कि जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, तो इसके साथ साथ मैं एक बात करना चाहती हूँ रश्मि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ बातों का शुरू से ध्यान रख लें तो कितना अच्छा हो जाए, इस परेशानी से हम बच सकते हैं।
1: हाँ, यानी कहना चाहती हो कि अगर हम 60 और 55 के हो जाएं तो भाई किस प्रकार से दिनचर्या को व्यवस्थित रखें कि हम स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित एक्सरसाइज करना हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। पैदल चलना या तैरना जैसी हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद साबित होती है
1: और इसके साथ अगर नियमित स्वास्थ्य जांच हो जाए तो ये एक ऐसी सावधानी है जिसमें हम समय समय पर अगर जांच करवाते रहेंगे तो हम जरूर उसमें जो भी हमारे स्वास्थ्य में कमियां हैं वो पकड़ पाएंगे, डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श ले सकेंगे।
0: रश्मि जी, एक बात ये है कि जब तक हम अपनी नींद को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा महत्व क्या है। अच्छी नींद के लिए गुणवत्ता वाली नींद हमें दुगनी ऊर्जा देती है।
1: और ये भी होता है सिमरन कि जब उम्र बढ़ती है तो हमारी प्यास की अनुभूति इतनी तीव्र नहीं रह जाती, तो पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहें।
0: और इसके अलावा तनाव की मौजूदगी नहीं बल्कि हम उससे कैसे निपटते हैं सबसे ज्यादा यही मायने रखता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं,
1: मैं तो कहूंगी

0: अभी आप सुन रहे थे एक गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म थी कल आज और कल।
1: और एक बहुत अच्छा मूल मंत्र हमारे पास आ गया है, आप हैं गौरी शंकर नागलोई से, आप कह रहे हैं सिमरन रश्मि राम राम, राम राम जी, समय का पहिया रुकता नहीं है और आज के समय में परिवार को संभालना बहुत टेढ़ी खीर है। भाई सही कहा,
0: अच्छा कहा ना,
1: और फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है।

0: आपने सही कहा, गलतियों को माफ करने में अच्छाई है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, इसी में समय खुशी से बीत जाएगा। बाकी आप सब, आपको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में रश्मि जी, मेरे पास एक और मेल आ गया है। मेरे पास आया है सुनैना गुप्ता, नीना गुप्ता और नीतू गुप्ता का। ये आया है मेरठ से। इन्होंने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कविता लिख के हमें भेजी है। इन्होंने कहा है कि बड़े बुजुर्ग जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बनकर खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब

0: सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि उनके अनुभव में परिवार को जोड़कर रखने में सबसे जरूरी है रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखा जाए। कई बार छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर पहल कर दे तो मनमुटाव खत्म हो जाता है। परिवार में केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। जब बड़े प्यार और धैर्य से मार्गदर्शन करें और छोटे उनका सम्मान करें, तब घर में अपनापन बना रहता है। आखिरकार परिवार वही जगह है जहां बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है। भाई बहुत खूबसूरत,
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनकी बातें। इन्होंने बहुत प्यारा मेल भेजा है। और अब बात करते हैं रश्मि जी कुछ बुजुर्गों की तरफ फिर से आते हैं। जब परिवार की बात हम कर ही रहे हैं तो साथ में बुजुर्गों के लिए योजनाओं की बात कुछ कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए सरकार ने खास उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। अगर इस समय योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन आराम से बीत सकता है और सिस्टमैटिक प्लान भी बुजुर्गों के इनकम का एक जरिया हो सकता है।
0: जी, और सिस्टमैटिक प्लान की जब आपने बात कही तो इसमें SIP और म्यूचुअल फंड की भी हम बात कर सकते हैं। आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ अपने म्यूचुअल फंड चुने।
1: बिल्कुल। और सरकार ने 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी शुरुआत की है।
0: जी, और इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने सरकार लेकर आई है और टैक्स में छूट का फायदा लेने के लिए इस योजना में, हालांकि जो 60 से जो कम उम्र के नौकरी लोग हैं वो भी निवेश करते हैं, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने के लिए करीब जो रिटर्न है वो जो सामान्य FD होती है उससे थोड़ा ज्यादा होता है और 1,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है। तो फिर आगे सिमरन कुछ कहना चाहोगी?
1: मैं कहना चाहूंगी रश्मि जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खाता किसी भी अधिकृत बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक और या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक में जाकर नजदीकी डाकघर पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं।
0: जी, ये बहुत सुरक्षित निवेश है, इसलिए कर सकते हैं।
1: तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत, फिल्म थी सितारा। और रश्मि जी, मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को बता दूं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन के साथ आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपका इंतजार, जल्द से जल्द फटाफट हमें मेल भेजिए,
1: जल्दी से लिख भेजिए। और इस बीच में और मेल्स जो आ गई हैं, है अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, और जहां बुजुर्ग हैं वहां बरकत है, और वो कहते हैं परिवार वो सुरक्षा कवच है जहां हर कोई शांति महसूस करता है।
0: बहुत बढ़िया लिख के भेजा है इन्होंने रश्मि जी, ये तो बहुत ही अच्छा लिख के भेजा। और सच में परिवार वही जगह है।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कुछ कह रही हैं,
0: ये कह रही हैं कि मैंने एक बात पढ़ी थी रिश्तों और परिवार के संदर्भ में, मतलब परिवार के बारे में, बहुत फिट बैठती है कि सब कुछ अच्छा बनाना पड़ता है अपने आप को, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात
1: यानी,
0: है।
1: यानी अंदाज भी हो और नजर अंदाज भी हो। और एक और हमारे पास मेल आ गई है, आप हैं गुड़गांव से जितेंद्र, आपको कह रहे हैं कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे बड़ा मंत्र अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि रिश्तों में जीतने की नहीं, निभाने की कोशिश कीजिए। यही ऐसा ही कुछ संदेश पहले भी प्राप्त हुआ था। और वो कहते हैं कि परिवार एक पेड़ तना होती है जिसकी जड़ें हैं संस्कार, तना है विश्वास और शाखा

0: कोई किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन अगले दिन अगर छोटा जब आके बड़ों का पांव छू के पांव छूते हैं तो बड़ा भी जो है हंस के माफ करना चाहता कि चलो अब ये झुक ही गया, तो क्या अहंकार रखना, क्या गुस्सा रखना। जी जी, तो ये छोटे छोटे ऐसे मंत्र हैं कि अगर आप झुक जाए तो फिर समझिए
1: फिर तो फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई बात ही नहीं। और देखो परिवार में तो रश्मि जी ये होता ही है कि कोई किसी स्वभाव का होता है, कोई किसी स्वभाव का, और कहते हैं ना मुट्ठी बंद रहती है तो वो बहुत अच्छी रहती है ना, जब खुल जाती है तो अलग अलग, तो सबकी मुट्ठी एक साथ बंद रहे और हर काम एक साथ करे तो बहुत अच्छा रहता है।
0: और मैं तो ये कहूंगी कि अगर जो छोटे बच्चे हैं वो दादा नानी दादी के साथ नाना नानी के साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। भाई दादा दादी और नाना नानी के पास बहुत सारे अनुभव सीख होते हैं, वो कहानियों में भी सुनाते हैं वो अनुभव और सीख, है ना।
1: सही कहा और आपने। और देखो ये बात में मैंने आपकी बात मानी कि पहले टीवी नहीं मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज होती थी कहानी, और वो कहानी सुनाते थे दादा दादी नाना नानी हमारे, और संस्कार और सीख कहानियों से राजा रानी चतुर खरगोश लाल चिकोवा नहीं होते थे, होते थे सच ईमानदारी मेहनत और मदद के पाठ, यानी कि बीरबल की चतुराई पंचतंत्र की नीति, और ये सब बिना उपदेश के हमें यूं ही मिल जाता था सीखने को।
0: जी, और जब दादी बोलती थी ना, बहुत समय पहले की बात है, तो हमारा दिमाग खुद ही ना जंगल किला और परी बना लेता था सिमरन। और आज तो सब बच्चे फोन पर देखते हैं, लेकिन तब तो ना हम खुद सोचते थे। और सच बताऊं सिमरन, हमारी भाषा भी इससे मजबूत हुई और शब्दों का खजाना भी बढ़ा।
1: और एक बात मैं कहूंगी रश्मि जी कि नानी वाली कहानियों से गांव, खेत, त्योहार, लोकगीत और आ जाते थे, हमें पता चलता था कि हमारे पूर्वज कैसे जीते हैं। यही कहानियां हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती हैं और कहानी संस्कार देती हैं।
0: और सच बताऊं जब दादा दादी और नाना नानी की गोद में सर रखकर कहानी सुनते थे ना, तो बड़ा सुकून मिलता था। जो बच्चों बचपन में मन में कभी एंग्जाइटी दुख कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि नींद नहीं आ रही, भाई जब दादी ना अपनी आवाज में धीरे धीरे कहानी सुनाए तो सच बताऊं सुनते सुनते ही हम सो जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहानी के साथ एक लाइन हमेशा आती थी, बेटा हमारे समय में, यानी कि वो एक लाइन 50 किताबों से ज्यादा सिखा देती थी, हार संघर्ष त्याग सब कहानी सुनकर आता रहता।
0: तो हम यही कहेंगे कि भाई रोज 10 मिनट जो है बुजुर्गों के पास बैठिए और बच्चों को जो बुजुर्गों की कहानियों से कभी दूर ना होने दें, क्योंकि ये जो सीख है ना, ये तो मैं कहूंगी भाग्यशाली बच्चों को ही मिलती है ना।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: तो भाई वाह सिमरन, कहानी की बातें हो रही थी और तुमने तो गीत में ही कहानी सुनवा दी। और सच बताओ मजा आ गया ये कहानी सुनकर।
1: मजा आया ना भाई, दादा दादी नाना नानी की कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं। आज भी मन करता है जरा टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो बैठ जाए उनके पास।
0: और देखिए एक और मेल आ गया हमारे पास, पढ़िए। महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई परिवार जो है वो चमकते जा रहे हैं और जमीन छोटी होती जा रही है, रहन सहन छोटा होता जा रहा है और ना ही लोगों के पास समय रहा कि जो परिवार के साथ मिलकर बैठे। तो ये यही हमें रोकना है, हमें मिलकर भी बैठना है, एक दूसरे से रिश्ते बनाए भी रखने हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने जी। और क्योंकि साथ में जब रहेंगे तो वो प्यार वो सम्मान वो रिश्ते पक्के मजबूत तभी तो होंगे। और मोबाइल को साथ में हटा के, ये नहीं कि साथ में उसे जोड़ के रखे, है ना?
0: जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राघव दिलशाद गार्डन से। वो कहते हैं कि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि थाली में दाल चावल सब्जी रोटी और अचार सबका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जब सब साथ होते हैं तभी भोजन पूरा लगता है। परिवार में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, कोई शांत कोई गुस्से वाला कोई भावुक, जो जैसा उसे वैसे ही स्वीकार करें। बहुत खूबसूरत,
1: बहुत अच्छा लिख के भेजा है इन्होंने। और एक और अभी तो आया है ना
0: जी,
1: रश्मि जी आपके पास
0: एक और हमारे पास मेल आ गया है शालीमार गार्डन से। आप हमसे जुड़ गई हैं उमा जी। ये कह रही हैं कि मेरी दादी कहा करती थी, घर जो बड़ा होता है वो कमरों से नहीं होता, दिलों से होता है। जब भी परिवार में किसी बात पर नाराजगी होती है तो वो सबसे पहले चाय बनाती है और सबको एक साथ बैठा देती है। आधी समस्या तो साथ बैठने से ही खत्म हो जाती और संवाद जो है वो चलता रहता और रिश्ते भी चलते रहते
1: और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं ना। और इसके अलावा रश्मि जी एक और मेल आया है, ये है ये रीता नीना और रितिका का है ना, ये उत्तम नगर से आया है। ये है एक लिखा है इन्होंने कि गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। इनका कहना आंधी आई बारिश आई पर वह हमेशा खड़ा रहता था क्योंकि दादाजी कहते थे कि इसकी वजह जड़ों में है, खास तौर पर क्योंकि परिवार भी ऐसा है। हमारी जड़ें हैं, संस्कार है, विश्वास है, प्रेम है और अगर जड़ें मजबूत रहे तो जीवन में कोई भी कभी भी आंधी आ जाए लेकिन परिवार कभी नहीं हिल सकता।
0: भाई सिमरन हमारे जो श्रोता है वो कितने गुणी और कितने समझदार है, आज मुझे बहुत सीखने को मिला है उनसे, सच
1: है ना?
0: सच।
1: और हमारे जो कार्यक्रम का जो ये जो प्रश्न है उनके साथ साथ मेल हमें बहुत ही खूबसूरत भी आए हैं, हमें लिख के भेज रहे हैं जो मेल। अच्छा एक बात मैं और कहूंगी रश्मि जी कि आजकल मौसम बदल रहा है, खास तौर पे हम बुजुर्गों की जब बात करते हैं तो उनके खान पान का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि वृद्धावस्था के साथ होने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को देखते हुए बदलते मौसम बुजुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
0: और सिमरन देखो जब उम्र बढ़ती है तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, तो हमें उन पदार्थों को शामिल करना चाहिए अपने खाने में जिनसे इन पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। जैसे कि कैल्शियम के लिए हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और सूर्य का प्रकाश लेना तो बहुत जरूरी है ही, साथ में उम्र बढ़ने के साथ जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है तो थोड़ा जिंक भी हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। और नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोटेशियम को अपने भोजन में शामिल करना बेहद जरूरी है।
0: और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी हृदय संबंधी रोगों की संभावना 50% तक कम हो जाती है, तो इसे भोजन में शामिल करना ना भूलें।
1: और शरीर के खराब जहरीले पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए 8-10 ग्लास पानी की जरूरत तो होती ही है।
0: तो ये कहना सही रहेगा सिमरन कि अकेले खाने से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि जैसा हम परिवार को
1: अभी कहने वाली थी रश्मि जी कि अभी मेल भी इसी बारे में आया था कि अकेले खाने से बचना चाहिए, बैठ के सबके साथ खाना खाना चाहिए क्योंकि इसी में प्यार है और प्यार की परंपरा हमेशा रहनी चाहिए।
0: जी पोषक खाना खाइए और सब मिलकर खाना खाइए, मिलकर रहिए।

0: लक्ष्मी जी, एक और मेल आया है मेरे पास, मैं साथ चाहती हूँ कि चलते चलते मैं उनको एक मेल और अपने श्रोताओं को बता रहा। शालिनी अग्रवाल, रचना अग्रवाल और रीना गोयल का चंद्र विहार से, इन्होंने दो लाइनें लिखी हैं रश्मि जी, लेकिन बहुत प्यारी लिखी हैं कि हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है, उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है।
1: जी, और एक मेल मेरे पास आया है, आप कह रहे हैं कि दो भाइयों में, इन्होंने कहानी लिखकर भेजी है सिमरन, कह रहे हैं दो भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। एक दिन एक बड़े ही वहां आया तो बड़े भाई ने कहा हमारे खेतों के बीच जो है ऊंची दीवार बना दो। बड़ई ने शाम तक वहां काम किया और जब दोनों भाई शाम को आए तो वहां पता क्या था, वहां दीवार नहीं थी बल्कि एक सुंदर लकड़ी का पुल बना था। तो दोनों भाई एक दूसरे की ओर बढ़े और गले मिले और उनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई। भाई वाह, रिश्तों में तो दीवार नहीं होनी चाहिए, पुल ही होना चाहिए, पुल होना चाहिए ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें। और ये खूबसूरत कहानी हमें लिखकर भेजी थी विकासपुरी से उमेश जी ने।

0: समय तू धीरे धीरे चल, गाना तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास समय नहीं है धीरे धीरे चलने का।
1: तो अब हम ये कार्यक्रम
0: कहना चाहते कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. The grand tour culminated in spectacular sports diplomacy at the iconic Melbourne Cricket Ground. Standing on the historic turf, the two leaders officially launched the India-Australia Sports Collaboration Roadmap. Prime Minister Narendra Modi will reach Auckland today on a two-day visit to New Zealand. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India and New Zealand are celebrating 100 years of sporting ties in 2026. Hockey, which started this journey in 1926, continues to bring the two countries closer. The sporting relationship began in 1926 when the Indian Army hockey team became the first Indian sports team to tour New Zealand. Former Hockey New Zealand CEO and 1976 Olympic gold medalist Ramesh Patel says Prime Minister Narendra Modi's visit will further strengthen sports cooperation between the two countries. As India and New Zealand celebrate a century of sporting ties, hockey remains a strong bridge of friendship, connecting the people of both countries and inspiring future generations. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said clean energy met over 50% of the country's electricity demand for the second time. In a social media post, Mr. Joshi said renewable sources contributed 50.2% of the power supply on the 6th of this month. The minister called this a testament to the growing strength and reliability of India's clean energy ecosystem. He said under the leadership of Prime Minister Modi, India continues to power sustainable growth with speed and determination. Niti Aayog member Dr. Joe Ramania held interaction with UNICEF India representative Cynthia McCaffrey and her delegation in New Delhi to strengthen collaboration on child-centric development, school education and human development. According to Niti Aayog, the discussions focused on safe and inclusive learning, foundational literacy and numeracy, teacher education, student well-being, cyber safety and digital security, particularly in aspirational districts and blocks. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall in Uttarakhand today, while in some parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttar Pradesh, heavy to very heavy rainfall is expected today. The Met Department has issued a yellow alert for light to moderate rainfall over the national capital today. Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh with persistent

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11:05। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए जिन्हें सिर्फ अभिनेता कहना उनकी प्रतिभा के न्याय उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे बल्कि उसे जिया करते थे। उनके चेहरे पर जब भाव बदलते थे तो लगता था कि मानो पूरी कहानी बदल गई हो। कभी उनकी आंखें बोलती थीं तो कभी कभी उनकी खामोशी संवादों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाती थी। दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही मशहूर अभिनेता संजीव कुमार को। संजीव कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें फिल्म जगत की आकाशगंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है जिनके बेमिसाल अभिनय से सजी फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। कहा जाता है कि उन्होंने 20 साल की छोटी सी उम्र में एक बूढ़े आदमी का ऐसा जीवंत किरदार निभाया जिसे देखकर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए। अभिनेता संजीव कुमार का नाम आते ही दिमाग में कभी ठाकुर की छवि उभरती है तो कभी फिल्म कोशिश का वो मौन भी याद आ जाता है। कभी याद आती है फिल्म मौसम की संवेदनाएं तो कभी फिल्म आंधी में उनके अभिनय की परिपक्वता भी हमें याद आ जाती है।

दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। उनका मूल नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। एक संस्कारी परिवार में जन्मे संजीव कुमार को बचपन से ही नाटक देखने का बहुत शौक था। कहते हैं कि स्कूल में जब कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो सबकी नजर एक दुबले पतले शांत स्वभाव वाले लड़के पर चली जाती, और जब ये लड़का मंच पर पहुंचता तो मंच का पूरा दृश्य ही बदल जाता। दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं, ये थे संजीव कुमार। फिल्मों की चाहत और फिल्मों में अभिनय करने का सपना इन्हें कुछ ही दिनों में मुंबई खींच लाया। शुरुआती दिनों में ये पहले रंग मंच से जुड़े और बाद में फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया, और यहां पर वो अभिनय की बारीकियां सीखने लगे।

0: वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ।

दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1960 में फिल्मालय के बैनर तरफ बनी फिल्म हम हिंदुस्तानी में मात्र 2 मिनट की एक छोटी सी भूमिका में करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्हें सन 1965 में आई फिल्म निशान में पहली बार बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। सन 1960 से सन 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्हें जो भी छोटी बड़ी भूमिकाएं मिलती उसे वो बिना किसी भेदभाव के सहर्ष स्वीकार करते रहे। इसके बाद सन 1968 में आई फिल्म शिकार में वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेता की उपस्थिति में संजीव कुमार अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे और उन्हें इस फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। सन 1968 में ही आई फिल्म संघर्ष में उनके सामने थे हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। संजीव कुमार ने इस फिल्म में अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद भी दर्शकों के बीच खूब तारीफें बटोरी। दोस्तों, संजीव कुमार का अभिनय इतना जीवंत था कि जिसे देखकर लगता था कि मानो कैमरा उनके अभिनय को नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहा हो।

दोस्तों, साल 1972 में हिंदी सिनेमा को एक ऐसी फिल्म मिली जिसे आज भी वर्ल्ड सिनेमा में महान फिल्मों में गिना जाता है, और इस फिल्म का नाम था कोशिश। गुलजार साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए अभिनेता संजीव कुमार और अभिनेत्री जया भादुड़ी। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक गूंगे और बहरे व्यक्ति का किरदार निभाया था। जरा सोचिए, न लंबे डायलॉग, न ऊंची आवाज, न भावुक भाषण, था तो सिर्फ आंखों और चेहरे का भाव और शरीर की भाषा। दोस्तों, इस फिल्म में संजीव कुमार ने दुनिया को बता दिया था कि अभिनय आवाज से नहीं बल्कि संवेदनाओं से होता है। इस फिल्म को देखने वाले हंसे भी, रोए भी और अंत में खड़े होकर तालियां भी बजाएं। सन 1974 में आई फिल्म नया दिन नई रात संजीव कुमार के करियर की सबसे कठिन फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग किरदार निभाए थे, और हर किरदार में अलग चाल, अलग आवाज और अलग व्यक्तित्व। आज भी फिल्म संस्थानों में इस फिल्म के कई दृश्य अभिनय की शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक ही कलाकार इतने अलग अलग व्यक्तित्व इतनी सहजता से निभा सकता है, ये विश्वास करना बहुत कठिन लगता है।

दोस्तों बात करें संजीव कुमार के अभिनय से सजी कुछ और चर्चित फिल्मों की, तो सन 1975 में आई एक ऐतिहासिक फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाया गया ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार भी एक आइकॉनिक रोल है। आज भी कई मिमिक्री आर्टिस्ट अपने शोज में इस किरदार का अभिनय किया करते हैं। इसके अलावा फिल्म आशीर्वाद, राजा और रंक, सत्यकाम, अनोखी रात, संघर्ष, खिलौना, मंचली, सीता और गीता, आंधी, मौसम, अंगूर और नमकीन आदि फिल्में ऐसी सफल फिल्में रहीं जिसमें अभिनेता संजीव कुमार ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा था।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभिनेता संजीव कुमार अपनी ही उम्र के व्यक्तियों के पिता का रोल निभाने में बड़े माहिर थे, इसलिए उनकी सराहना फिल्म के हीरो के जितनी ही की जाती थी। बात करें संजीव कुमार की उपलब्धियों की, तो उन्हें फिल्म शिकार और आंधी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही उन्हें सन 1977 में फिल्म अर्जुन पंडित के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें श्रेष्ठ अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार आजीवन कुमारी रहे। 6 नवंबर सन 1985 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सन 1960 से लेकर 1984 तक उन्होंने अभिनय के एक से बढ़कर एक नए आयाम स्थापित किए। उन्हें उनके शिष्ट व्यवहार और विशिष्ट अभिनय शैली के लिए फिल्म जगत में सदियों तक याद किया जाएगा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हमनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाएकार करार दिया है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इक्तसादी तआवुन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुज़ाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दो तरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का यादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तआवुन, नीज एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिगार से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही

0: इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वाह वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या MCG में खेलकूद की सिफारत हो, दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुँच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जाब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जाब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की ज़रूरत में मौजूदा इस्तस्ना को ख़त्म कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएं जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई के इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत और इन्हिसार का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत बिजली के मैदान में रफ्तार और अजम के साथ लगातार तरक्की कर रहा है। नीति आयोग की रुकन डॉक्टर जोरामानिया ने यूनिसेफ भारत नुमाइंदा सिंथिया मैकैफ्री और उनके वफद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसका मकसद बच्चों पर मरकूज तरक्की, स्कूल तालीम और इंसानी तरक्की से मुतालिक इश्तराक को तकवीत देना था। नीति आयोग के मुताबिक बातचीत में महफूज और सबकी शमूलियत वाली आमोजिश, बुनियादी खानदगी और असातिज़ा की तालीम, तलबा की खुशहाली, साइबर हिफाजत और खासतौर पर उमंगों वाले जिलों और ब्लॉकों में डिजिटल सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि इस साल नवंबर के आखिर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जो 2006 के बाद से पहले इंतखाबात होंगे। सदर अब्बास ने एक सदारती फरमान जारी करते हुए 28 नवंबर 2026 बरोज हफ्ता को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जम्मू कश्मीर ने मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले यानी मकानात की फहरिस्तसाजी का अमल 100% डिजिटल डाटा जमा करने के साथ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि यहां अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इधर आज रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम आज उस वक्त तारीख रकम करेगी जब वो लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाले खवातीन का ये अब तक का पहला टेस्ट मैच होगा। ये इंग्लैंड और भारत खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान 16वां टेस्ट मैच होगा। और आखिर में खास खबरें एक

फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाएकार करार दिया है। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की

0: जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया।

0: है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे।

सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और 2:30 हो चुके हैं और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ सुषमा शर्मा, और मेरे साथ है यहाँ पर हमारे साथी
2: रजनीश
1: जी। हम दोनों ही आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं
2: जी।
1: रजनीश जी, हम बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आते हैं, बहुत सारे हम ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे किसानों के लिए बहुत बेहद जरूरी है, और मौसम के हिसाब से भी हम फसलों की बात करते हैं
2: जी। बिल्कुल सही कहा सुषमा, और देखिए कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उसे नित्य नई जानकारियां उन्हें मिले, और साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों को स्टूडियो में बुलाकर जो भी अपडेट है ना, वो उन तक पहुंचे, ताकि वो जो भी फसल लगा रहे हैं उनमें उनका उत्पादन अच्छा हो, उनकी आमदनी अच्छी हो, यही उद्देश्य रहता है हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और उत्साह भी लगातार बढ़ा रहे उनका। हम धान की आज बात करने वाले हैं, और हमारे किसान भाइयों को भी पता है कि धान जो है हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और देश के लगभग हर कोने और हर हिस्से में भी उगाई जाती है
2: जी।
1: और देश की खाद्य सुरक्षा में धान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान काफी वर्षों से रहा है, और धान फसल को हम सीधी बुवाई अथवा रोपाई विधि से भी उगाया जा सकता है, उगा सकते हैं। हमारे देश में धान उगाने की जो रोपाई विधि है वो बहुत, जो रोपाई है यानी कि हम प्रत्यारोपण कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित है, और धान की रोपाई वैज्ञानिक विधि से और उपयुक्त सावधानियों को अपना कर की जाती है। और हम इस फसल से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है विशेषज्ञों को, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको।
3: धन्यवाद
1: जी। सर हैं प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, एग्रोनॉमी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली से।
2: तो सर, जैसा कि आज का विषय है कि धान की रोपाई, समय, सावधानियां और खरपतवार
1: जी।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पूरे, जैसे कि अभी सुषमा ने बताया कि देश के लगभग हर कोने में धान की फसल लगती है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कौन सा सही समय है, और इसकी रोपाई किसानों को कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और रोपाई का भी क्या महत्व है अगर हम धान की फसल के उत्पादन की बात करें।
3: जी बिल्कुल। जो धान है हमारे देश में, मुख्य तौर पे तीन ऋतुओं में या मौसमों में उगाया जाता है। एक होता खरीफ के पहले उसकी रोपाई या बुआई की जाती है, एक खरीफ में की जाती है, और एक रबी या जायद का धान कहा जाता है
2: जी।
3: और जहां तक खरीफ के धान की बात है, ये धान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में जो भी धान पैदा होता है उसका 86% क्षेत्र जो है वो खरीफ धान से आता है, यानी मुख्य धान का समय जो है वो शुरू हो चुका है, और धान की रोपाई जब हम खरीफ में करते हैं तो ये रोपाई जून के अंत में शुरू हो जाती है, और 15 जुलाई और 20 जुलाई तक ये की जाती है। 20 जुलाई के बाद भी कुछ किसान जो है 25 जुलाई तक धान की रोपाई करते हैं, हालांकि ये पछेती हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि

0: हमारे किसान कई कारणों की वजह से रोपाई में देरी कर देते हैं। रोपाई में देरी, जैसे मान लीजिए कहीं बरसात नहीं हुई तो रोपाई में देरी हो जाती है, या कहीं ज़्यादा बरसात होगी, पानी ज़्यादा भर गया खेत में, तब भी रोपाई देर से की जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमारे किसानों को कि 20 जुलाई तक धान की रोपाई जरूर कर लें, और रोपित विधि से उगाया हुआ धान जो है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में लगाया जाता है हमारे देश के, और इससे अच्छी पैदावार मिलती है।
1: जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और रोपाई जब करते हैं हमारे किसान, तो बात आती है सावधानियों की, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और जैसे बहुत सारी खेत से संबंधित जानकारी, कैसे तैयारी करें, कौन सी विधियां हैं, दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब सर आप विस्तार से बताइए।
0: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी का जहाँ तक बात है, इस समय आधे से ज़्यादा देश में हमारे बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी अच्छी बरसात हुई है, और बरसात हो गई है तो निश्चित तौर पर किसानों को अब पानी लगा के धान की जो है रोपाई करने की शायद ज़्यादातर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खेत में आपके पानी इकट्ठा है, और सबसे पहले आप अपनी मेड़ों को मजबूत कर लें, क्योंकि मेड़ अगर हमारी टूटी फूटी होंगी, उसमें चूहों के छेद होंगे, चूहों के घर होंगे, तो उससे पानी बहता है। तो सबसे पहले अपनी मेड़ों की मरम्मत कर लें, उनकी ऊंचाई बढ़ा लें, और जो भी बरसात होती है उसका खेत का पानी हमें खेत में ही रोकना है, खास करके जहाँ हम धान की फसल लगा रहे हैं। पानी खेत में खड़ा करने के बाद सामान्यतः 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, फिर आपके पास पडलिंग एक यंत्र होता है, या फिर पडलर अगर आपके पास नहीं है, पडलर होता है, पडलर से हम पडलिंग करते हैं। किसान भाइयों गारा बनाते हैं, या उसमें हम कोदो बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से इसको कहते हैं। मोटे तौर पर आप कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हैं, हैरो का प्रयोग कर सकते हैं, पडलर का प्रयोग कर सकते हैं। इन यंत्रों के प्रयोग करके आप धान में जो है गारा बना लेते हैं। गारा बनाने के बाद किसान भाइयों उसमें पाटा लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उसी समय पे आपको खाद और उर्वरकों का भी प्रयोग अपने खेत में करना पड़ता है। पाटा लगाने के बाद आप अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं, और रोपाई के लिए आपको जो दूरी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लाइन से लाइन की, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि सही पौधों की संख्या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर आ जाती है। कई बार किसान भाई रैंडम रोपाई करते हैं। रैंडम रोपाई का मतलब होता है कोई भी पौधा कहीं लगा दिया, एक कहीं लगा दिया, एक कहीं लगा दिया। इस तरह से हमारी जो पौधों की संख्या है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एकसार नहीं होती, कहीं ज्यादा लग जाते हैं, कहीं कम लग जाते हैं। दूसरा, आपको रोपाई की गहराई पे भी ध्यान देना है। कई बार धान की रोपाई बहुत ज्यादा गहराई पे कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर ज्यादा गहरी रोपाई होती है तो इसमें कल्लों का बनना कम हो जाता है, ब्यांत कम आता है। रोपाई की गहराई आप मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, ज्यादा गहरा उसको ना रोपें, और साथ ही साथ जो आपकी पौध है, जो आपके सीडलिंग है, उसकी आप देखभाल अच्छे से करें, वो कमज़ोर ना हो, उनके अंदर घासों के बीज ना मिले हो, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे कि आपने कहा कि अच्छी बारिश हो रही है, और धान की फसल के साथ पानी की बात बहुत होती है, और धान की फसल में पानी किस तरह से उसका इस्तेमाल होना है, कैसे उसको व्यवस्था करनी है, ये बहुत ही अहम प्रश्न है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि धान की फसल में जो पानी की उपयुक्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाए।
0: जी, धान जो है वो पानी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा चाहता है, और ख़ास करके जैसे अब अपने आप बरसात हो रही है हमारी, तो पानी की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक हो जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूखे की स्थिति आ जाती है या बरसात कम होती है कुछ समय के लिए, उस समय पे खास करके किसान भाइयों को जल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, और ऐसी दशा में आपको लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी अपने धान के खेत में लगाना चाहिए एक बार में, और जब ये पानी उतर जाए, यानी उसका इंतजार करें आप, जब ये पानी खेत से उतर जाए, यानी पानी मिट्टी के अंदर समो जाए या ऊपर उड़ जाए, फिर उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको सिंचाई करनी होती है, और इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी आपकी फटे नहीं। जैसे पैरों में हमारे बिवाई पड़ जाती है पिंडली में पीछे, इस तरह की बिवाई हमारी मिट्टी में ना पड़ने पाए, तब उससे पहले ही हमें पानी लगा देना चाहिए। और एक खास बात है कि जब इसमें जननिक अवस्था शुरू होगी, यानी जब आपका जो बाली है, बाली बनना शुरू होती है, गाभे में धान आता है, उस समय से लेकर और फूल आने तक हमें धान में हमेशा खड़ा पानी रखना पड़ता है। वो अवस्था आपकी बाद में आएगी, और अभी आपको कहीं कहीं पर जल निकास भी करना पड़ सकता है। जहाँ बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना किसान भाइयों

0: कि धान की फसल पानी में डूबने ना पाए। अगर ऐसा लगे फसल हमारी डूब रही है तो उसमें से आप जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बोला। और भी हम बातें करेंगे, हम खाद उर्वरकों की भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने किसानों को भी जोड़ लें इस कार्यक्रम से। फोन नंबर बता देते हैं 2342-1081, एक नंबर ये है, दूसरा है 2342-1083, ये दो नंबर हैं। आप चाहें तो एक्सपर्ट से आज के विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। फिलहाल हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक बार फिर से स्वागत करते हैं किसान की बात कार्यक्रम में, और आज का जो विषय है, हमारे किसान भाई सुन रहे हैं कि धान की रुपाई करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे होना चाहिए। लेकिन अभी रजनीश हमने पानी की बात की थी कि पानी जो होता है बहुत जरूरी होता है धान की फसल के लिए, लेकिन पानी सिर्फ धान की फसल के लिए नहीं, हम सबके लिए, बहुत सारी फसलों के लिए बेहद जरूरी है। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो आकाश ने जो लबालब पानी भरा है तो उसका हम इस्तेमाल भी करें, यूज करें, उसका संचयन करें, उसको जोड़ें, वो भी बहुत जरूरी है।
7: बिल्कुल सही कहा सुषमा। और देखिए, कहते हैं ना कि जो आकाश से वर्षा मिलती है हमें, वो सिर्फ वर्षा नहीं बल्कि एक अमृत होता है,
6: अमृत होता है, पोषण।
7: हाँ बिल्कुल, और इसको सहेज के रखने की जरूरत होती है, और इसीलिए भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है, और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण की पहल की जाती है, और इसका जो मूल मंत्र है कि बारिश को वहीं इकट्ठा करें जब वह गिरे, यानी कि जैसे ही बारिश की जो बूंदे धरती को छुए और हम उसको सहेज लें, जो इस अमृत को सहेज लें। और जब जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि धान की फसल के लिए पानी कितना जरूरी है, तो हमें इसके महत्व को समझना होगा, और जैसा आपने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि हमारा भू जल स्तर बना रहे, वो जल संरक्षण हम करते रहें, लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जो ये कैच द रेन अभियान है, ये हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
8: जी बिल्कुल, देखिये जल ही जीवन है, जल के बिना कोई भी हो, पौधा हो, वनस्पति हो, सूक्ष्म जीव हो, इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, कोई भी जीवित वस्तु बिना जल के नहीं रह सकती। पहली जो जिंदगी या जीवन दुनिया में आया था वो भी जल से शुरुआत हुई थी, तो जल के बिना तो हम नहीं रह सकते। जरूरी है हम इस जल की बचत करें, और जो प्रकृति हमें बरसात देती है ये तो निःशुल्क देती है, ये कोई चार्ज हमसे नहीं लेती, तो जो भी हमारी बरसात होती है इस पानी को हमें कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, उसका संरक्षण करना और फिर उसका उपयोग करना, ये बहुत ज़रूरी। अब मान लीजिए कोई शहर में रहता है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ शहर का नागरिक होने तक सीमित नहीं है, उसको चाहिए कि वो अपनी छत पे ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसकी पानी की हार्वेस्टिंग की जा सके। थोड़ा बहुत पानी आप घर में होज बना के इकट्ठा भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आजकल जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी वेल बना ली जाते हैं, बोर वेल टाइप चीजें बना ली जाती हैं। तो जो हमारा जमीन के अंदर अधोस्तरीय पानी है, भूमिगत जल है, उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो जल का हम संचयन करते हैं, हर घर की छत से कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खेत में भी जल का संचयन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अच्छे से आप मेढ़े बनाएं और खेत में पानी को इकट्ठा करें, जो फालतू पानी हो उसको तालाबों में इकट्ठा करें। हमारे गाँव में तालाब होते हैं, खेतों पर तालाब होते हैं, तो जो हमारा फालतू का पानी है उसको हम तालाबों की तरफ ले जाएं और तालाब में उस पानी को इकट्ठा करें।
7: जी, और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा अपने सभी सुनने वालों को कि इसमें सरकार भी बहुत प्रोत्साहित करती है हर व्यक्ति को, हर आम से खास व्यक्ति को। यह अभियान आमतौर पर मानसून से पहले से लेकर मानसून के मौसम के अंत तक चलता है, और नई दिल्ली जैसे स्थानों में स्थानीय सरकारें अपनी जागरूकता अभियान चला रही हैं, और इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो इसका समन्वय करते हैं, जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सुषमा, हम सबको इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।
6: बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास छत होती है ऊपर और जो गार्डनिंग करते हैं, उनको एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलता है पानी के संचयन के लिए। तो उम्मीद है कि जागरूक हैं सभी हमारे निवासी जो हैं, देशवासी हैं। और एक और कॉलर पर हम आते हैं, क्योंकि कॉल्स भी आ रही हैं लगातार, हमारे किसान भाई हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। हेलो,
9: नमस्ते।
6: नमस्ते जी, नाम बताइएगा।
9: मैं उमेश बोल रहे हैं जी, करनाल से।
6: जी, करनाल से कॉल है सर।
9: मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सर हम क्या सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और इसके फायदे क्या है? कई बार सुना है कि पैदावार कम होती है सीधी बिजाई करते हैं, और आप अगर फसल नंबर बता दें कि हम कौन सी करें। जैसे
8: देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि सीधी बिजाई का समय लगभग निकल चुका है। सीधी जी बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि अब आप अगर करोगे तो उसका अंकुरण अच्छा नहीं होगा और स्थापना में फसल में दिक्कत आएगी। तो इस समय पे तो अगर आपके पास नर्सरी हो, पौध हो, आप धान लगाना चाहते हैं तो आप धान लगा दें, क्योंकि जो सीधी बिजाई हम आपके पंजाब हरियाणा में करते हैं वो सीधी बिजाई हमें जून के पहले पखवाड़े में करनी पड़ती है, और अब जो है वो 10 जुलाई आ चुकी है। तो मेरी समझ से आप सीधी बिजाई से धान ना लगाएं इस समय पर। कोई भी किसान मेरी बात सुन रहे हैं तो इस पर आप ध्यान दें, और धान लगाना ही है तो अब आप रोपाई विधि से धान को लगाएं। दूसरा, जहां तक आपने पूछा पैदावार की बात, पैदावार सीधी बिजाई वाले धान से भी बहुत अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं, और परंपरागत वाला रोपाई वाला जो धान है उसके बराबर पैदावार ले सकते हैं, अगर हम उसका प्रबंधन ठीक से लें करें, सही किस्म का चुनाव करें, और बुआई का सही समय बहुत जरूरी है, जून का पहला पखवाड़ा, सही मात्रा में बीज दर का प्रयोग करें तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
6: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि और भी किसान हमसे जुड़ सकते हैं। और आपने कहा कि पानी का सही प्रबंधन होना चाहिए, तो सर वही कहीं ना कहीं खाद हमारा जो उर्वरक है उसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, तो वो किस तरह से प्रबंधन?
8: बिल्कुल, देखिए आजकल हर किसान भाई जानता है, बहनें जानती हैं कि भारत सरकार आजकल जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसको जारी रखे हुए है, और इसके तहत हमारी मिट्टी की जांच की जाती है और फिर आपको उर्वरकों की संस्तुति दी जाती है, मात्रा कितनी डालनी है। इसके लिए किसी वजह से अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाए थे तो अब बड़ा मुश्किल होगा मिट्टी की जांच कराना इस समय पे, क्योंकि आपको बुआई या रोपाई से पहले ही जांच करानी चाहिए उसकी। जो किसान भाई जांच नहीं करा पाए उनको इसमें 120 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होगी। फास्फोरस, पोटाश और आधी नाइट्रोजन आप बुआई के समय, रोपाई के समय डाल दें, और बाकी नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांट के रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और 55 से 60 दिन बाद आप उस खेत में डाल दें। मोटा मोटा यही है। अगर जस्ते की कमी हो जिंक की आपके खेत में तो आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर मोनोहाइड्रेट है तो वो लगभग आपका 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से पड़ेगा। तो ये जिंक की आपूर्ति आप कर सकते हैं। कई बार रोपाई वाले धान में भी पौधे पीले हो जाते हैं, आयरन की, लोहे की कमी आ जाती है, ऊपर के पत्ते पीले हो जाते हैं, तो आप उसमें पानी लगातार भर के रखें तो लोहे की कमी जो है ऊपर की पत्तियां पीली होना बंद हो जाएंगे आपके।
7: डॉक्टर साहब, आपने बात की धान की, और धान की रोपाई के लिए जरूरी है कि धान की पौध अच्छी हो, उसकी नर्सरी अच्छी हो, लेकिन फिर भी आपने जैसे और समय और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जिसको हमें बहुत सावधानी से हमारे किसान भाई बहनों को देखना है?
8: जी बिल्कुल, देखिए धान की नर्सरी अगर हमारी स्वस्थ होगी तभी हमारे मुख्य खेत में जो है अच्छी कल्ले बनेंगे, अच्छी पैदावार आएगी। स्वस्थ नर्सरी में आपको ध्यान देना है। अभी भी कुछ किसान भाई नर्सरी देर से लगाए हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें कि कोई बीमारी दिखाई ना दे आपको, कोई कीड़ा दिखाई ना दे, और पत्तों का रंग पीला ना दिखाई दे, और आवश्यकता अनुसार आप उसमें उपचार करें अच्छे से। पौध उखाड़ते समय जो किसान भाई अब रोपाई कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि पौधों की जड़ें ना टूटे आपकी। जड़ें टूट जाती हैं, कई बार होता है किसान एक साथ 8-10 पौधों को उखाड़ते हैं, आपको एक समय में 1 या 2 पौधे उखाड़ने हैं, और फिर उसको अच्छे से जो है वो धुलाई करनी है, जो मिट्टी होती है नीचे लगी हुई उसकी आपको धुलाई करनी है, और छोटे छोटे बंडल या गुच्छियां हम बना लेते हैं। बनाने के बाद उन गुच्छियों को आप हो सके तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसकी रोपाई कर दें। अगर अगले दिन आपको उस धान की जो पौध उखाड़ी है आपको उसकी रोपाई करनी पड़ती है तो उसको आप किसी छायादार स्थान पर और पानी के अंदर उसकी जड़ों को पानी में डुबो कर रखें, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक खास ही बात है कि जब आप पौध को उखाड़ते हैं तो आप सिर्फ

0: धान के पौधे उखाड़े, उन्हीं के बंडल बनाए। कई बार क्या होता है कि मिलती जुलती घास होती है उनको भी हम उसमें मिक्स कर देते हैं, तो घासों की छटनी कर लें और उसके बाद उस पौध से आप रोपाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आपने कहा कि सावधानियां बहुत जरूरी हैं, जब भी आप उसे धान की फसल को उखाड़ें तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, लेकिन कुछ भी करें सर, कीट की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आती है, और इस अवस्था में कौन कौन से कीटों की संभावना रहती है, और अगर है तो वो कैसे रोकथाम उनका?
0: निश्चित तौर पर देखिये, धान की फसल में हमारा अनुभव यही बताता है कि जब हम रोपाई करते हैं और रोपाई के कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद 20 दिन बाद, जल्दी से दो कीड़े सबसे पहले आते हैं। पहला होता है एक तना छेदक और तना भेदक भी कहते हैं, और दूसरा होता है पत्ती लपेटक। ये दो कीट आम तौर पे धान की फसल में आते ही हैं, तो इन पे नज़र रखें आप। जैसे जो हमारा तना छेदक कीट होता है, तना छेदक कीट जो इल्ली होती है या सूंडी होती है, वो नीचे से तने में अंदर घुस जाती है, अंदर का पदार्थ खाती है और बीज की पत्तियाँ और बीज के पौधे हमारे सूख जाते हैं। इसको बोलते हैं डेड हार्ट, मृत केंद्र। जो बीज का भाग होता है वो मरसा जाता है, पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं, ये इसके लक्षण हैं। दूसरा पत्ती लपेटक कीट होता है। पत्ती लपेटक कीट क्या करता है, इसकी इल्ली या सूंडी पत्ती के किनारों को, दोनों किनारों को सिल देती है चिपचिपे पदार्थ से, और बीच में ऐसा लगता है एक सुरंग बन गई हो, और फिर ये हरा पदार्थ जो होता है क्लोरोफिल होता है उसको खा जाती है। इन दोनों कीटों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप कार्बाफ्यूरान जो 3CG है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें 3CG जो है वो बैन हो चुकी है कार्बाफ्यूरान की, 3CG आप डाल सकते हैं धान में। इसकी लगभग आपको 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करनी है। 3CG है, इसका आपको प्रयोग करना है। दानेदार दवाई होती है, मिट्टी या रेत में मिला के समान रूप से अपने खेत में बिखेर दें। मात्रा इसकी लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको डालनी है।
1: बिल्कुल सर, और हम खरपतवारों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रेक के बाद स्वागत है और हम धान की रुपाई की बात कर रहे हैं, क्या क्या सावधानियां हो, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, तो बस अब रजनी जी यही प्रश्न पूछने वाले हैं।
4: डॉक्टर साहब आपने कीटों से तो सावधानी बता दी कि किस तरह से हमें अपने धान फसल को बचाना चाहिए, लेकिन जो खरपतवार है इससे भी धान की फसल को काफी हानि होती है, तो इस फसल में खरपतवार से नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
5: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवारों की लेके आते हैं धान की फसल में, और इसमें खरपतवार आते भी हैं और दोनों तरह के खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी आते हैं, सकरी पत्ती वाले भी आते हैं और मोथा कुल के खरपतवार भी आते हैं। तीनों तरह के खरपतवार धान में आते हैं। अगर हमने रोपाई विधि से धान उगाया है और उसमें लगातार पानी रखते हैं तो उसमें थोड़ा कम खरपतवार आते हैं, और आते भी हैं तो वो घास कुल के आते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। अगर हमने सीधी बिजाई से धान को लगाया, स्थापित किया है, तो उसमें दोनों तरह के खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी और सकरी पत्ती वाले। लेकिन जो सीधी बिजाई से बोया हुआ धान है उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। धान की किसी भी तरह से आपने फसल लगाई हो, इन खरपतवारों द्वारा पौधों को हमारे कंपटीशन दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा दी जाती है और धान की फसल प्रभावित होती है और खास करके उसकी पैदावार में कमी आ जाती है। ये खरपतवार प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्पेस के लिए, जगह के लिए करते हैं, पोषक तत्वों के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, यानी ये नुकसान ही नुकसान करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आमतौर पर किसान भाइयों को ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई बताई जाती है। धान जब आपने रोपाई विधि से लगाया है तो ब्यूटाक्लोर 50 ईसी में आता है, 50% में आता है। इसकी लगभग 1.5 लीटर मात्रा, 1.25 लीटर से लेकर 1.5 लीटर सक्रिय तत्व, ध्यान रखें अगर आपको 1.5 लीटर सक्रिय तत्व लगाना है तो बाजार का जो व्यवसायिक पदार्थ है, जो बोतल आप खरीद के ला रहे हैं, वो 3 लीटर होनी चाहिए। तो 3 लीटर जो व्यवसायिक उत्पाद है उसको

0: हेक्टेयर के हिसाब से आपको धान की फसल में लगाना है और इसको छिड़काव करना है, और लगाते समय आपको एक खास ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना खड़ा हो, छिछला पानी खड़ा हो, तब आप इस दवाई का छिड़काव अपने खेत में कर दें। तो इससे काफ़ी लंबे समय तक, 20-25 दिन तक खरपतवार इससे नहीं आते। कोई किसान भाई अगर भूल गए हैं, खरपतवार नाशी नहीं लगा पाए हैं और बाद में उनकी फसल में खरपतवार आ जाते हैं, तो 25 दिन पे आप बिसपारीबैक सोडियम, हर किसान धान वाला जानता है इसका नाम, बिसपारीबैक सोडियम नाम की एक दवाई आती है, रोपाई के 25 दिन बाद इसका प्रयोग करना है। 20 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व की, 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रयोग में लानी है। 500 लीटर पानी में घोल बना के आप रोपाई के 25 दिन बाद, ध्यान से सुने, 25 दिन बाद धान के खेत में आप इसका छिड़काव कर दें, तो इससे चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल खरपतवारों से सुरक्षित हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, खरपतवार बता दिया आपने, रोग भी सर इस समय आ जाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं?
0: धान की फसल में अगर हम रोगों की बात करें तो इस समय पर बकानी रोग और बदरा रोग, दो रोगों के आने की संभावना होती है। बकानी रोग में पौधे अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, बाकी पौधों से लंबे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, बाद में उनमें बालियां नहीं बनती। ये रोग धान के लिए बहुत खतरनाक रोग होता है, इसके लिए आपको नर्सरी से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी किसान भाइयों समय है, जो किसान भाई रोपाई करने जा रहे हैं तो जो आपने पौध उखाड़ी है, जो बंडल बनाए हैं, उनको 4 घंटे तक बावस्टीन के घोल में डुबो के रखें, और इसके लिए बावस्टीन का घोल बनाए, इसके लिए आप 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, ध्यान से सुने, 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, ऐसा आप आवश्यकता अनुसार घोल बना लें और उसमें धान की पौध को कम से कम 4 घंटे 5 घंटे डुबो कर रखें, तो बकानी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। और मुख्य खेत में अगर ये दिखाई देती है तो पौधों को उखाड़ के दूर ले जाके उनको दबा देते हैं। दूसरा, एक बदरा रोग आने की संभावना होती है, क्योंकि इस समय बादल छाए हुए हैं, बदरा रोग में धान की पत्ती पर आँख के आकार के, जैसे हमारी आँख होती है, धब्बे बन जाते हैं और पूरी पत्ती पर फैल के ये सुखा सकते हैं। इसके लिए बावस्टीन का जो घोल बताया था मैंने, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, उसका छिड़काव कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाइयों से बदरा रोग को या ब्लास्ट रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, बहुत सारे पोषक तत्व भी धान की फसल के लिए जरूरी होते हैं, तो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उनके क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में थोड़ा
0: जी? बिल्कुल, देखिए, धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की तो बात हमने कर ली, रोपाई के समय डालते हैं,
2: जैसे जिंक है, लोहा है।
0: जी बिल्कुल, और जिंक की कमी से क्या होता है कि धान के पौधे का, खास करके जब ब्यांत बन रहा होता है, टिल्लिंग अवस्था होती है, कल्ले निकलने की अवस्था होती है, उस समय पर जिंक या जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। खास करके बीज की पत्तियों पर चॉकलेट ब्राउन, जो चॉकलेट का रंग होता है, देखा होगा छोटे बच्चे खाते हैं, चॉकलेट के रंग जैसे धब्बे बन जाते हैं, धब्बे बड़े होकर पूरे पौधे पे फैल जाते हैं और फिर पौध को हमारी जो हमारी फसल है उसको सुखा देते हैं। इसके लिए मोटे तौर पे मिट्टी में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई के समय हर तीसरे साल आपको डालना चाहिए या मिट्टी की जाँच के आधार पर डालना चाहिए। लोहे की कमी में पौधे के ऊपर के पत्ते पीले हो जाते हैं, नीचे के पत्ते हरे रहते हैं, इसमें आपको खेत में जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त करनी है, यानी खेत में हमारे पानी अगर भरा रहेगा तो लोहे की कमी खेत में नहीं आती। इसी प्रकार अगर हमें कमी दिखाई देती है फिर भी, तो आयरन सल्फेट 0.5% और 0.25% चूने का घोल, दोनों घोलों को बराबर मात्रा में मिला के आप छिड़क सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आपने ये पोषक तत्वों के बारे में बता दिया, तो अब चलते चलते कि आप इस वक्त में हमारे सभी किसान भाई बहन जो रोपाई कर रहे हैं,
0: जी जी,
2: क्या
0: बिल्कुल समझ गया,
2: संक्षेप में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है पौध ठीक से उखाड़ें आप, इसके अलावा अपने खेत की तैयारी अच्छे से करें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाएं। दूसरा, धान के खेत में जहां भी पानी आपका नष्ट होने की संभावना है, उसकी चारों तरफ से मेड़ों की मजबूती कर लें और रोपाई सही दूरी पर करें, सही गहराई पर करें, और जैसे समय पर मैंने बताया उस पर तो करना है। साथ ही साथ रोपाई से पहले आपको जो पोषक तत्व मिट्टी में मिलाने हैं उनको आप अच्छी तरह से मिला दें, फिर आप खरपतवार नाशी का प्रयोग भी करें अगर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फसल की लगातार आपको निगरानी करते रहना, कहीं उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी तो दिखाई नहीं दे रही, उस पर भी नज़र रखें। अगर आपको कोई अपनी फसल में कमी नज़र आती है तो उसका आप तुरंत निदान करें, उसका आप नियंत्रण करें, तो आप धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, डॉक्टर दिनेश जी आज हमारे साथ रहे, दिनेश कुमार, और बहुत अच्छे से जानकारी जानकारी दी धान की रोपाई की फसल के लिए। तो हम आज का किसान की बात के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सुषमा और मेरे साथी
2: को अनुमति
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेता के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इस महीने की पहली तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले पर परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में

0: जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा गीतों के कार्यक्रम का, जिसका नाम है मन भावन। जी हाँ, यानी कि आप वो गीत सुनते हैं जो भाते हैं आपके मन को। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने फ़ोन के साथ, अपने ईमेल के साथ, ताकि आप अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हम तक पहुंचा सकें। आपको पता है कैसे आपको अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है? fmgoldair@gmail.com पर आप ईमेल के ज़रिए अपनी फरमाइश अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, fmgoldair@gmail.com। मैं पहुंचाऊंगी आपके पसंदीदा गीत आप तक। स्वागत करती हूं मैं रुचिका आप सभी का। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz।
1: आपके हसीन रुख

जी हाँ, ये खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। यदि आपकी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो ईमेल के ज़रिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं fmgoldair@gmail.com। और देखिए कितनी सारी फरमाइशें, कितने सारे ईमेल्स जो हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, उमेरखड़ महाराष्ट्र से हम तक संदेश पहुंचा है अभिजीत राही का। इनके साथ हैं श्रीमती सरिता गुहाणकर और साथ साथ सिद्धांत, प्रणीता, लाडला, टुकटुक, एकांश, सुमित, कुमारी, ध्वनि, इनका पूरा परिवार जो है वो हमें सुन रहा है। और एक आशा भोसले जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और साथ साथ आपको बता दें, बहुत सारे संदेश हम तक पहुँचे हैं। फिल्म दो बदन का भी एक रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा है, महाराष्ट्र से ही इनका संदेश हम तक पहुंचा। विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर का संदेश हम तक पहुंचा। और देखिए और किसका संदेश हम तक पहुंचा है, भाई हरजिंदर सिंह भाटिया जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया भी हैं। इन्होंने भी जमशेदपुर से इनका संदेश पहुंचा है हम तक, ये भी एक गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। और देखिए एक बार फिर से विजय जी का संदेश हम तक पहुँचा है। और ताज मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहाँ, आज़ाद नगर, हरिद्वार से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और कहते हैं कि हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ आप शामिल कर लीजिए। तो चलिए, हमने आपकी फरमाइश और आपका संदेश दोनों ही शामिल कर लिए हैं। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में ये सुपरहिट गीत।

जी हाँ, बहुत सारे संदेश, बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो आपकी हम तक पहुंच रही हैं। और देखिए, हम तक संदेश पहुंचा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से, और फरमाइश भी इन्होंने की है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत की। और लिखते हैं कि प्रोग्राम में रुचिका जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और FM गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें। भाई क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप FM गोल्ड के लिए इतनी अच्छी और प्यारी बातें आप लिखते हैं, और FM गोल्ड का जो साथ है वो आप हमेशा निभाते हैं। इनके अलावा देखिए और भी बहुत सारे संदेश हैं। मोहम्मद सईद अबासी का संदेश हम तक पहुंचा है, इनके साथ है निकट परवीन अबासी और इनका पूरा परिवार, कहां से, बुलंद शहर से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और संजय ढिंगिया का संदेश हम तक पहुंचा है, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, इनके साथ हैं उत्तर प्रदेश बागपत से, इनका संदेश हम तक पहुँचा। और रोहित बेलदार हमारे साथ हैं, इनके साथ फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार और डब्लू वली बेलदार, कहाँ से, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हम तक पहुंचा।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन आपके साथ है। और यदि आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं FM गोल्ड AIR Delhi @gmail.com पर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन जारी है, जिसमें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ आपकी पसंद के गीत। यदि आपकी भी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं fmgold@gmail.com पर। और देखिए आपके कितने सारे संदेश जो हैं, कितने सारे ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं। देखिए, प्यार भरा नमस्कार आदरणीय प्रचारक महोदया जी, सुनना चाहते हैं कौन है भैया, सबसे पहले आपको ये बताएं। शेगांव बुलडाना महाराष्ट्र से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। संतोष एस काले, तेजस एस काले का संदेश है ये। फिल्म आया सावन झूम के फिल्म का मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनना चाहते हैं ये एक गीत। और देखिए, उत्तर प्रदेश से हम तक एक और संदेश पहुंचा है। किसका पहुंचा है भाई? फरुखाबाद से असलम मंसूरी और फहीम मंसूरी का संदेश पहुंचा। लिखते हैं कि नमस्कार जी, मन भावन प्रोग्राम मैं भी सुन रहा हूं। जी, आप सुन रहे हैं, हमें पता है और हमने आपका संदेश शामिल भी कर लिया। तुलसी मस्कीन का संदेश हम तक पहुंचा। इनके साथ हैं वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना, कहाँ से? बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनका संदेश पहुंचा। और लिखती हैं कि भाई होस्ट रुचिका जी, यही साथी, यही मीत, दर्द कांटे गीत संगीत मेरे मेल पर भी गौर फरमाइए, अभी तक आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए भाई, हमने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत है तो आपके पसंद का जो गीत है वो आप तक पहुंचाकर हम उस शिकायत को दूर करेंगे। संदीप मक्कड़ का संदेश हम तक पहुंचा है। कहां से ये संदेश हम तक पहुंचा है? जालंधर से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके साथ हैं भरत और कमला भी। और भी बहुत सारे संदेश देखिए। लता मंगेशकर के आवाज़ में सुनना चाहती हैं गीत। पंजाब से इनका संदेश पहुंचा है। भवानीगढ़ संगरूर से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से आपके संदेश, आपकी फरमाइशें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं। गुजरात से एक संदेश हम तक पहुँचा है। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार,

और भावेश कुमार का इनकी भी एक फरमाइश है, फिल्म सत्ते पे सत्ता और गीत है मौसम मस्ताना। देखिए ये जो गीत है ना, इसकी फरमाइश हर मन भावन कार्यक्रम में हम तक पहुंचती है और लगभग ये इस मौसम में ये गीत हमें सुनने को मिल ही जाता है ना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुँचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी का एक बार फिर से हम तक संदेश पहुँचा। और कौन है हमारे साथ, कोल्हापुर से हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार का संदेश हम तक पहुंचा और एक गीत भी सुनना चाहते हैं, ये फिल्म फूल और कांटे से। और भी आपके बहुत सारे संदेश हैं। देखिए संदेश हम तक पहुंचा है हर्षित, हीना, हेमलता और खुशी गोस्वामी का राजस्थान गंगानगर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पहुंचाने के लिए और मैं आप तक पहुंचा रही हूं आपकी पसंद के गीत। एक ईमेल आईडी एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। बहुत सारे संदेश आपके हम तक पहुंच रहे हैं। संदेशों के साथ साथ बहुत सारी तारीफें भी हैं और शिकायतें भी हैं। बेंगलोर से संदेश हम तक पहुंचा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पोरुष का। लिखते हैं, FM गोल्ड के प्यार का मारा हूँ मैं, सिकंदर हूँ पर हारा हूँ मैं, न जाने क्यों जलने लगे वो मुझसे, जब से उनकी आँखों का तारा हूँ मैं। भाई इतनी खूबसूरत बात आपने लिखी, FM गोल्ड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ एक शिकायत भी है कि आप जो हैं हमारा संदेश शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो 15 से 20 मेल करते हैं उनके ही आप संदेश शामिल करते हैं। देखिए यही जो है समस्या होती है, जब आप 15-20 मेल हमें करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट हम तक पहुंचती है कि कंफ्यूजन होती है कि किसका मेल हम शामिल करें और किसका नहीं।

इसीलिए हमारी गुजारिश हमेशा यही होती है आप सभी से श्रोताओं से कि एक या दो मेल्स आप हम तक पहुंचाएं ताकि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनके सभी मेल्स, उनकी सभी फरमाइशें हम अपने प्रोग्राम में मन भावन में शामिल कर सकें। और फिलहाल स्वरूप आनंद सरजल का संदेश हम तक पहुंचा है और एक फरमाइश भी इन्होंने की है। कहाँ से इनका संदेश पहुंचा है भाई सीजी, इन्होंने लिखा है, लिखते हैं कि पूरा जो परिवार है उनका वो एफएम गोल्ड सुन रहा है। और साथ साथ सनावत से शेख मुसा मोहसिन का संदेश हम तक पहुंचा और लिखते हैं कि आप खैरियत से हैं, दुआओं में हमें याद रखना। और एक फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई। और किनका संदेश हम तक पहुंचा है, और भी बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, आलिया अंसारी, लुबना अंसारी, अनवर मोहम्मद कैफ, रियाज आफ्ताब अंसारी, इन सभी का संदेश हम तक पहुंचा है उत्तर प्रदेश से। और सारिका सुतार चेतन और संभा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। इनके अलावा शकुंतला यादव गरिमा और उग्रसेन यादव का संदेश हम तक पहुंचा है नई दिल्ली से ही। आफ्ताब अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके भी संदेश, देखिए कितने सारे संदेश हम तक पहुंचते हैं ना, एक ही ईमेल जो है वो बार बार आप हम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए बाकी के संदेश हम शामिल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे संदेश पहुँचे हैं, और देखिए किनका संदेश है, लखनपाल रंधावा और सुरिंदर कौर रंधावा का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुँचा है। उत्तम कुमार का संदेश पहुँचा, इनके साथ हैं श्वेता किशु अरसव और सत्यम आनंद झारखंड से। और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश हम तक पहुँचा। और भी बहुत सारे संदेश हैं, देखिए एक और संदेश है, किनका संदेश है, सचिन खोरवाल हैं और जयराम हैं दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने संदेश पहुंचाने के लिए, फरमाइशें पहुंचाने के लिए। और साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो भी आपके शिकायतें होंगी वो हमने दूर करने की कोशिश की होगी।

संदेश हम तक पहुंचा है एटा से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद का। और साथ साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से संदेश पहुंचा है जुबेल अली खान और सबीहा अंजुमन खान का। लिखते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी यदि आप हमारा नाम भी शामिल करें। तो चलिए, आपकी शिकायत दूर हुई। और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक का संदेश हम तक पहुंचा है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है। और हमारे साथ बने हुए हैं दिग्दर्शन कौर मेरठ से, इनका संदेश पहुंचा है। इनके साथ कविता गौर भी जुड़ी हुई हैं। तो भैया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने संदेश पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मनभावन पसंद आया होगा। फिलहाल मनभावन में इतना ही। वक्त हो चला है समाचारों का। सुनते रहिए FM गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज शिमला के भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी के उद्घाटन और सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्याएं बनाई गई हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमों को और कठोर बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एथिल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के अंतर्गत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कल जवाब प्राप्त हुआ था। 1 जुलाई को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले में परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर सुशासन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। ये शिविर सवेरे 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने एक विकेट पर 28 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार वर्षा की आशंका है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: डीजल और रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cmeri.res.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक निदेशक शैक्षिक, शैक्षिक अधिकारी हिंदी, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट अग्नि के दो सामान्य पद हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विवरण के लिए देखिए CISF की वेबसाइट www.cisf.gov.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में उपनिदेशक लेखा का एक पद उपलब्ध है। इसके लिए देखिए वेबसाइट www.nios.ac.in। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अन्य जानकारियों के लिए यदि आप चाहें तो देख सकते हैं 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उप सचिव रिक्ति एक, उप परीक्षा नियंत्रक रिक्ति एक, अनुभाग अधिकारी रिक्तियां 6 और सहायक लाइब्रेरियन 1 रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट ncismindia.org/advertisements। कृषि विज्ञान केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विस्तार 1 पद और सहायक 1 पद। योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट देखिए। पता है parbhani.kvk8.in। सैनिक स्कूल सतारा आमंत्रित कर रहा है नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सिस्टर के पद के लिए आवेदन। आवश्यक योग्यता, आवेदन फॉर्म और नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainiksatara.org। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उपनिदेशक राजभाषा का एक पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.meity.gov.in। ये जानकारियां DOPNT की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जिसका पता है www.dopt.gov.in। राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण यंग प्रोफेशनल्स के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवश्यकता इस प्रकार है यंग प्रोफेशनल 4 पद, CACMA यंग प्रोफेशनल 4 पद कानूनी और यंग प्रोफेशनल IT 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट nfra.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: Hello, namaskar, and a very good afternoon, Sir Firozi. So we are here with a fresh new episode of Parikrama today.
1: Ji.
0: Yes, the song says that after a long spell of hot days and high temperature, monsoon finally sweeps all of India. This was the longest the rainy season has taken to cover the entire country since 2021. And Delhi and its neighboring districts received almost continuous rain in last 2 days. And we did face a lot of traffic jams and disruptions on roads. But yes, the city is breathing good air after nearly 3 years. Thanks to the widespread monsoon showers, the city's air quality index recently dropped to an impressive 59. It is really very surprising for Delhi.
1: बिल्कुल, और अनुजा अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि बारिश बड़े दिनों बाद आई है, मॉनसून अब बढ़ चला है पूरे देश में, तो बारिश का तो मजा लेना जरूरी है ही, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है. यू नो, कुछ लोगों को इन्फेक्शन कैच हो जाता है. इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी अपने श्रोताओं से भी कि बाहर निकलने से पहले आप कहीं भी जा रहे तो एक मौसम विभाग की एडवाइजरी जरूर देख लें. यू नो, कई जगहों पर
0: कैरी एन अम्ब्रेला ऑलवेज विद यू.
1: यस.
0: And I would still say, let more rain come to the cities as it is the monsoon season. Pick up your evening cup of tea or coffee. Tune in to Parikrama on Akashvani and enjoy your afternoon. And if the rain continues in the evening as well, you still have a lot to do. Catch up with the sports events going on these days, with Wimbledon and FIFA World Cup creating all the buzz.
1: जी बिल्कुल, पर शुरुआत करेंगे अपने परिक्रमा कार्यक्रम से.
0: Right. So just be with us for the next half an hour. Let's begin with all the updates in the afternoon magazine today with the news headlines.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं. वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे.
0: सेंटर अमेंड्स ड्रग्स रूल्स टू रेगुलेट हाई अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग फॉर्मुलेशंस.
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की. इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया.
0: IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today.
1: FIFA विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से.
0: And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. And of course, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, first we will talk about National Fish Farmers Day. Today we are celebrating National Fish Farmers Day, observed every year on July the 10th. It's a day to recognize the invaluable contributions of our fish farmers, fishers, aquapreneurs and researchers who help strengthen India's food security and rural economy.
1: बिल्कुल अनुजा, वैसे तो ऐसे लोग जो हमारी प्लेट तक खाना पहुंचा रहे हैं, पौष्टिक खाना पहुंचा रहे हैं, इन सभी की हर रोज कद्र की जानी चाहिए. लेकिन जो आज का दिन है, खासतौर पर ये दिन मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करने और इस बात पर विचार करने का भी दिन है अनुजा, कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कीमती जल संसाधनों का टिकाऊ तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं.
0: बट देन Why is 10th of July so significant?
1: बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है अनुजा, कि ये दिन तो किसी भी दिन मनाया जा सकता था, तो फिर आज का ही दिन क्यों?
0: Yeah.
1: तो इसलिए क्योंकि 1957 में इसी दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्हो ने ओडिशा के अंगुल में भारत में पहली बार काप मछली का इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में सफलता हासिल की. अपने श्रोताओं को बताते चले कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी प्रेरित प्रजनन मछली पालन की एक उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक है. इसमें मछलियों को कृत्रिम रूप से हार्मोन इंजेक्शन देकर अनुकूल परिस्थितियों का एहसास कराया जाता है, और जब इस तरह के एनवायरनमेंट में अनुजा पहुंचती हैं मछलियां, तो वो बाद में फिर पानी में अंडे देती हैं.
0: राइट सर फिरोजी, इन फैक्ट नॉट टू फॉरगेट दैट जुलाई 10th इज ऑल्सो द फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एस्टैब्लिश्ड इन 2006 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनहांस फिश प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री.
1: बिल्कुल अनुजा, और आज से 20 साल पहले जब इस बोर्ड का गठन हुआ था, और आज जब हम देखते हैं तो भारत के मछली पालन सेक्टर ने बहुत तरक्की कर ली है. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, और दुनिया भर में होने वाली मछली उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है. तो मेरे हिसाब से ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी तरक्की है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर मछली पालन के क्षेत्र में. ये सेक्टर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका का जरिया है, और खासतौर पर अनुजा तटीय और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए.
0: यस, इन फैक्ट फिश प्रोडक्शन हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम 95.79 लाख टन्स इन 2013-14 टू अराउंड 197.75 लाख टन्स इन 2024-25. दैट्स एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, इज़न्ट इट सर फिरोज़?
1: बिल्कुल. और जब हम इन सारी उपलब्धियों की बात अनुजा करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह सरकार के जो प्रयास हैं इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं समर्थन हमारे मछली पालकों को मिल रहा है और इस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं. बहुत सारी पहले हैं, उनमें से कुछ का जिक्र हम अपने श्रोताओं के लिए यहाँ कर देते हैं. सरकार की पहले जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास कोष, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस सेक्टर को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अनुजा मछली पालकों के लिए वित्त सहायता को मजबूत करने में बहुत मदद कर रही हैं.
0: यस फिरोजी, एज वी सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर्स डे टुडे, लेट्स एक्नॉलेज द डेडिकेशन ऑफ एवरी फिश फार्मर, फिशर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड एवरीवन वर्किंग टू मेक इंडियाज फिशरीज सेक्टर स्ट्रॉन्गर, more sustainable and of course more resilient.
1: बिल्कुल अनुजा, हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं हमारे मछली पालकों का योगदान उत्पादन और आर्थिक विकास के अलावा ये जलीय संसाधनों के संरक्षण, पौष्टिक प्रोटीन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने और लाखों परिवारों की टिकाऊ आजीविका को सहारा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
0: एंड वी कैन ऑल्सो से दैट नेशनल फिश फार्मर्स डे इज देयरफॉर नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इनकरेजिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड वर्किंग टूगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर.
1: बिल्कुल अनुजा, और सस्टेनेबल फ्यूचर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ साथ हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है किसी भी संसाधन के टिकाऊ प्रबंधन की. तो एक उपभोक्ता के तौर पर हम भी अपने स्थानीय मछली पालकों के प्रयासों का समर्थन करके टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देकर और अपनी नदियों, झीलों, जलाशयों और तटीय इको सिस्टम को बचाने के महत्व को समझ कर अपना योगदान दे सकते हैं.
0: Yes, so on this National Fish Farmers Day, we extend our heartfelt appreciation to every fish farmer, fisher, researcher, and every individual working tirelessly to strengthen India's fisheries sector. And now moving on to the other topic which we'll be discussing today is Global Energy Independence Day. Today, 10th of July, we also celebrate Global Energy Independence Day, a day that encourages all of us to think about a cleaner, greener and more sustainable energy future.
1: बिल्कुल अनुजा, आज का जो ये दिन है, ये दिन दुनिया भर के लोगों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए बहुत हद तक प्रेरित कर रहा है.
0: एंड इंटरेस्टिंगली सर फिरोजी, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड टुडे, दैट इज 10th ऑफ जुलाई, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिलियंट इन्वेंटर निकोला टेस्ला, हु इज पायनियरिंग वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सिस्टम्स कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द वे वी जनरेट and distribute energy today.
1: और अनुजा, जब हम बात करते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंसी की तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि निर्भरता का मतलब क्या, कि जो देश हैं वो अपने ही स्तर पर अपनी एनर्जी जनरेट करें ताकि उन्हें बाहर से ना इंपोर्ट करनी पड़े. हालांकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ अपने स्तर पर अपने घर पर बिजली पैदा करना नहीं है बल्कि ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य बनाना भी है. और इसी क्रम में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाकर जो देश है वो आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं.
0: एंड टू मेक इट मोर क्लियर, फ्रॉम इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स टू सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वाइजली, ईच ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग एनर्जी इन आवर ओन वे और सेविंग एनर्जी इन आवर ओन वे. स्मॉल एक्शंस व्हेन टेकन टुगेदर कैन मेक अ बिग डिफरेंस.
1: बिल्कुल अनुजा, और बात करें अपने देश भारत की तो भारत का लक्ष्य 2047 तक पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना और 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना है. और जो हमारा देश है अनुजा, बहुत तेजी से इस क्रम में आगे बढ़ रहा है. बात करें जीवाश्म ईंधन के आयात की जगह घरेलू स्तर पर बनने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल देश में हो रहा है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम अपना रहे हैं.
0: And not only this, Global Energy Independence Day also celebrates innovation. Around the world, scientists, engineers, entrepreneurs, policymakers, and communities are working together to develop new technologies that will power the future while reducing carbon emissions.
1: बिल्कुल अनुजा, आज का जो दिन है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, आज के दिन हम ऊर्जा बचाने, रिन्यूएबल समाधानों का समर्थन करने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टिकाऊ विकल्प चुनने के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं.
0: Yes, Firozi, together we can help build a cleaner planet and a brighter future for generations to come. So let's do it.
1: बिल्कुल. अनुजा, अब कार्यक्रम का वो सेगमेंट आ चुका है जहां हम पूरे देश की परिक्रमा करते हैं और अपने श्रोताओं को एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरे देश में घुमाते हैं और बताते हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है.
0: तो Absolutely,
1: सबसे yeah. पहले कहां लेकर चल रहे हैं?
0: In fact, you must have heard or you must have traveled in the Kolkata's tram network in West Bengal, Sir Firozi. Kolkata's tram network is the oldest operating electric tramway in Asia and it offers a nostalgic, eco-friendly ride all the way. And in a major push to modernize West Bengal's public transport while preserving its heritage, the state government has unveiled an ambitious roadmap to revive Kolkata's iconic tram network with the state-of-the-art battery-powered trams. The proposed transformation aims to eliminate overhead electric wires, introduce cutting-edge technology, and restore one of the city's oldest transport systems in a modern avatar. We have a report on this.
2: The initiative comes after Kolkata's historic tram service, one of the oldest operating tram networks in Asia, had been reduced to a handful of routes following years of declining operations. Although the service narrowly escaped complete closure, after the intervention of the Calcutta High Court in 2024, tram operations have since remained confined to limited stretches across the city. Determined to restore the network's former prominence, the Transport Department has entrusted state-owned engineering consultancy rights with works to prepare a comprehensive blueprint for the revival of the tram system. The plan envisages a phased modernization program beginning with the routes that are currently operational. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
1: अनुजा, जहां एक और पश्चिम बंगाल जो है वो अपने ट्रैम नेटवर्क के लिए जाना जाता है, पर एक और चीज है जिसके लिए पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जो है वो बहुत फेमस है.
0: ऑफ कोर्स, इज इट द टी इंडस्ट्री?
1: बिल्कुल, हाँ, बात कर रहे हैं चाय बागान की. पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग से जुड़े उत्तर बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कायाकल्प करने का संकल्प राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लिया है और इसके लिए अनुजा एक बहुत अच्छी योजना की घोषणा की गई है. उस योजना के बारे में अपने श्रोताओं को बताते चलते हैं.
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है. चाय बागान क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. राज्य स्तरीय समिति ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है. इस योजना के लिए कुल 313 करोड़ 30 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है. इससे चाय श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है. चाय श्रमिक शिक्षा योजना के लिए 177 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना व श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. इससे उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे. चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 72 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इस योजना का लक्ष्य चाय बागान क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके. चाय श्रमिक आश्रय योजना के लिए 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसके तहत 321 विश्राम गृहों या रेस्टिंग सेट का निर्माण किया जाएगा. जाएगा। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में 88 और समतल इलाकों में 233 विश्राम गृह शामिल हैं। इन सुविधाओं में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा, स्वच्छ पेयजल, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आधुनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर बंगाल विकास विभाग

0: को इस पूरी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चाय बगान श्रमिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाना है, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, करशियांग।
1: So where are we going next? Which city?
2: जी अनुजा, अब लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे अपने श्रोताओं को, और इसके साथ ही परिक्रमा को एक कल्चरल टच भी दे रहे हैं। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की, जिसमें देहू और आलंदी से एक पालकी यात्रा प्रारंभ होती है। आषाढ़ी वारी के लिए श्री क्षेत्र आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज और श्री क्षेत्र देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्राएं प्रारंभ होकर कल पुणे पहुंची। इस पर हमारे संवाददाता एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: आषाढ़ी वारी के लिए श्री क्षेत्र आलंदी से संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज और श्री क्षेत्र देहू से जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्राएं पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई। विभिन्न नगरों और गांवों से होकर दोनों पालकियां कल पुणे पहुंची, जहां उनका भक्तिभाव से भव्य स्वागत किया गया। ज्ञानोबा तुकाराम रामकृष्ण हरि और विठल नाम के अखंड जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। संतों की पादुकाओं के दर्शन के लिए पालकी मार्ग पर हजारों वारकरी, श्रद्धालु और नागरिक उमड़ पड़े। महाराष्ट्र से देश के विभिन्न राज्यों से आई सैकड़ों डिंडिया, ताल, मृदंग, वीणा और भगवा ध्वजों के साथ अभंग और भजन गाते हुए पालकियों के साथ पुणे पहुंची। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर पालकियों का भव्य स्वागत किया। वारकरियों के लिए पेयजल, महाप्रसाद, चिकित्सा सहायता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई। पालकी दिंडी यात्रा महोत्सव के लिए पुणे महानगर पालिका, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं के व्यापक प्रबंध किए। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
1: And from now Pune to Tiruchirappalli, where a major drive is being undertaken to remove Simai Karuvelam, the invasive species in Puducherry. This is a central district for Tamil Nadu, to protect the water table and environment. Simai Karuvelam, which was introduced by the British rule for the purpose of firewood, is now causing hazards to pedestrians and absorbs a huge amount of groundwater, up to 30 liters per day per tree, resulting in drying up of wells, bore wells, and depleting the groundwater level. We have more on this from our correspondent from Tiruchirappalli.
4: The government machinery in full swing is clearing Simai Karuvelam trees, botanical name Prosopis juliflora, an invasive species from water bodies and revenue lands, besides on lands along the roads, with the twin objectives of protecting groundwater and environment. For better maintenance of environment, removal of these trees has become very essential. The pace of removal of Simai Karuvelam species is being constantly reviewed by the district collector of Pudukkottai. The massive drive has resulted in the removal of Simai Karuvelam from 736.29 acres so far in various locations in the districts. The work had been split into three phases, with the first phase covering 13 panchayats, 26 panchayats in the second phase, and 13 panchayats in the third phase, totally covering 52 panchayats till now. The invasive species had been uprooted from many water bodies, revenue lands, and the lands belonging to the highways department. The intensified drive was launched as per the direction of Madras High Court, with the exercise monitored by the retired High Court judge and district collector. The drive was launched to protect groundwater and environment, and the focus was primarily on water bodies, revenue lands, and lands on the roadsides. Simai Karuvelam, which was once useful, now has become an ecological villain, and removal of these trees have given safer roads, clear water, cleaner air, and healthier environment for the next generation. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani Tiruchirappalli.
1: And Sir Firozi, today is Friday, and traditionally recognized as the primary opening day for theatrical film releases. Mm-hmm. And since Mumbai is the premier box office territory in our country, it serves as the central hub for Bollywood releases. And cinegoers this week have a mix of entertainment options to enjoy on big screen. It includes a madcap adventure drama, Dhamal 4, a Hollywood horror thriller, Evil Dead, Burn, and Hindi dubbed release of animated adventure feature Moana. Besides, there is a Marathi release, Tula Patana, on bonding relations as well. We have more on this from a correspondent from Mumbai.
5: Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi, and Javed Jafri, fourth installment of the popular

0: कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल इज द मेजर हिंदी रिलीज दिस वीक. द स्टोरी फॉलोज अ ग्रुप ऑफ इसेंट्रिक फ्रेंड्स हु वंस अगेन गेट एंटैंगल्ड इन अ मैडकैप एडवेंचर फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रीजर हंट्स एंड कॉमिक सिचुएशंस. अमंग द मेजर हॉलीवुड रिलीजेस दिस वीक, एविल डेड बर्न इज अ हॉरर थ्रिलर एंड द लेटेस्ट एंट्री इन द एविल डेड यूनिवर्स. द फिल्म कंबाइन साइकोलॉजिकल हॉरर विथ वायलेंट एनकाउंटर्स एंड सस्पेंस. हिंदी डब रिलीज्ड ऑफ द एनिमेटेड एडवेंचर मोआना इज अ स्टोरी ऑफ अ करेजियस यंग गर्ल हु सेट्स आउट ऑन अ डेंजरस सी वोयाज टू सेव हर आइलैंड एंड हर पीपल. मराठी फिल्म तुला पाहताना दैट रिलीजेस टुडे सेंटर्स ऑन रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट जनरेशन्स. इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, फैमिली एंड पर्सनल ग्रोथ थ्रू द लाइव्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स. निवेदिता फॉर परिक्रमा फ्रॉम मुंबई.
1: अनुजा, जब किसी तरह की इमरजेंसी, किसी तरह का हादसा होता है तो यू नो, कुछ जो मिनट हैं वो ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं.
2: yes,
1: अगर sir, आपको see. मदद जो है वो सही समय पर मिल जाए तो यू नो, आप लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं. लेकिन समय पर मदद तभी मिल सकती है जब हम में से हर कोई जीवन बचाने वाले बुनियादी कौशल से लैस हो. आपातकालीन तैयारी को मजबूत करने के प्रयास में पुदुचेरी में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मिशन जीवन युवा सेफ्टी कॉप्स. तो अपने श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी देते हैं.
3: Launched by the Department of Emergency Medicine and Trauma at JIPMER, Mission Jeevan Yuva Safety Corps aims to create an emergency-ready society by equipping young people with the knowledge and confidence to respond effectively during medical emergencies. It is part of JIPMER's India EMS project under the Indian Council of Medical Research National Health Research Program. As a part of the project's inaugural program, nearly 200 students underwent competency-based training in hands-only CPR, automated external defibrillator awareness, bleeding control, trauma response, scene safety and emergency communication. The inaugural batch of students received a classroom instruction followed by practical hands-on sessions conducted in small groups under the supervision of emergency medicine faculty and trained youth ambassadors. Participants were assessed after the training and awarded digital certificates. Speaking to Agashwani, Puducherry Government's Director of Health Services, Dr. Sewell said that every citizen trained in basic emergency response has the potential to save a life. He also described Mission Jeevan as an excellent example of collaboration between the health system, education institutions and the youth organizations. Mission Jeevan also incorporates the My Bharat experiential learning framework under which trained youth ambassadors will themselves become trainers, helping expand the program to more schools and colleges across the Union Territory. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
2: And Sir Firozi, have you ever been to Mizoram? It's a beautiful state.
1: आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अनुजा मुझे, पर I hope कभी जाएंगे.
2: Please do try and go there to the northeastern side of India. It's really very nice. And where a Bualti village is surrounded by lush green landscapes, typical of southern Mizoram, and it features picturesque local landmarks like the seasonal Bualti waterfall during the monsoon. But yes, sadly, in Mizoram, as a landslide stranded scores of vehicles and left hundreds of travelers unable to continue their journey there because of heavy rainfall, residents of Bualti village rallied to provide meals for around 220 people. This is such an overwhelming news. Offering a lifeline amid the disruption. And around 220 stranded travelers were served dinner by the local women and children, and they were accommodated in homes across the village, while some of the travelers were expected to spend the night in their vehicles or at the village hall as efforts were continuing to restore road connectivity. These kind of positive informations really ask you live up to the life as, I mean, people are so warm.
1: और इसी तरह की मदद की बात भी हमने जिस तरह पुदुचेरी में जो पहल शुरू की गई है, तो मैं इसी तरह की मदद की बात कर रही थी. यू नो कि समय पर मिली मदद बहुत काम आ सकती है और of बहुत course. बड़ा फर्क ला सकती है.
2: सर्टनली.
1: और अनुजा, अब अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा के बाद खेल के मैदान की भी जानकारी दे रहे हैं. सबसे पहले बात करेंगे फीफा विश्व कप की. फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा. उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
2: एंड यस, मिजो ताइक्वांडो एथलीट वान मलगाई हजुआली वन अ गोल्ड मेडल at the 17th Beijing Taekwondo Super League.

0: बीमारी, ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी, दुख से कर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी।
1: आज असद भोपाली जी की जयंती है। ये बॉलीवुड के गीतकार थे। असद का जन्म भोपाल में हुआ था। इनका जन्म का नाम असदुल्ला खान था। इन्होंने साल 1949 में सबसे पहले फिल्म दुनिया के लिए दो गीत लिखे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। 1990 में असद को उनके द्वारा फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जाजा के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसी फिल्म का हम आपको एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: And remembering Sunil Gavaskar today, the master blaster on his birthday. I don't think he needs any introduction, isn't it?
1: जी बिल्कुल अनुजा. और सुनील गावस्कर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
0: नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी

0: लोगों की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
2: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
1: जी।
2: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
2: जब माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
1: जी,
2: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
2: बिल्कुल,
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
2: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता।

0: वो बोलता है अब तुम्हारी तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर,
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं।
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5 R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5 R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा, लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं,

0: गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशन पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
0: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए, तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
1: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
0: जी।
1: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
1: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
0: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, हम लोग
0: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
0: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
0: जी।
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे 1 पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो, ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड डिसाइड करे
0: जी
1: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
0: हमारे जो श्रोता है जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
1: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल, तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
0: Yes.
1: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
0: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
1: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
0: हाँ,
1: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
0: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं?
1: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
0: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो

0: बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में।
1: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा, तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है, और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
0: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं, माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
1: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो हैं, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी, उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है, उसका एक सार बन के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे, और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
0: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए, और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

सुपरहिट गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म थी कर्ज। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1980 में, और आपको बता दें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, राजकिरण, इन सभी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के लिए, जी हाँ, इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो चलिए एक और सुपरहिट गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। फिल्म है वारिस, और आवाज़ है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह जी की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री

0: कृष्ण ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded

0: आइए जानते हैं कि इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे।
1: रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने नई संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा जारी की। इसके तहत दोनों देश रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच तालमेल, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया प्रारूप भी शुरू किया गया, जिससे सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और समुद्री अभियानों में बेहतर समन्वय हो सकेगा। साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने पैक्ट्स साझेदारी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, डिजिटल सहयोग, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मिलकर काम करना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत और कैनेडा के बीच उभरती प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। खनन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र सौंपा गया, जबकि विक्टोरिया विश्वविद्यालय को गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। सांस्कृतिक सहयोग के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 3 प्राचीन कलाकृतियां लौटाईं। इनमें 11वीं से 12वीं शताब्दी का ग्रेनाइट से बना नंदी, 11वीं शताब्दी की कांस्य से बनी भद्रकाली के साथ त्रिशूल और 12वीं शताब्दी का बेसाल्ट से बना 6 मुखों वाले स्कंद यानी कार्तिकी की प्रतिमा शामिल है। इसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कोलकाता और ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ फिल्म स्कूल के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
0: श्रोताओं, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं वर्ष 2014 में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में प्रशासनिक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया। आज के बदलते वैश्विक हालात और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा परिकल्पना आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आधार बन चुके हैं। आइए सुनते हैं इस विषय पर ये विस्तृत रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर उसके प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों ने ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया को तरल ईंधन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। ऊर्जा परिवर्तन को गति देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कम कार्बन वाले ईंधन पर सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पहल का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाते हुए केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानकों के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने क्वाड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और मई 2026 में नई दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत किया। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के माध्यम से सहयोग बढ़ाने, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के तहत जारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया भारत इंडोनेशिया त्रिपक्षीय तंत्र के जरिए समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी नई गति देने पर सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आसियान की केंद्रीय भूमिका, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के

0: महत्व को भी रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर भी दोनों देशों की सोच एक जैसी रही। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया, साथ ही वर्ष 2028-2029 के लिए भारत और वर्ष 2029-2030 के लिए ऑस्ट्रेलिया की गैर स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के समर्थन की भी पुष्टि की। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सहयोग के विषय पर पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार से हमने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: अभी हमने 2022 में एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। पिछले चार साल में अगर मैं कहूं जो करीब ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो 200% बढ़ा है। अब पहली जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ है जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो ड्यूटी फ्री हो गए हैं। अब एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहां पर जो काम होता है वो सब होता रहे।
1: श्रोताओं, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोस्टन से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के बाद ये दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखण्डराज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतुविभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगतरूपेण स्वागतं विहितम्।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. And to discuss the stories, we are joined in our studio by economic expert Udayan Ray. Namaskar Udayan and welcome to Akashvani.
1: Namaskar Lalema.
2: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की बढ़त, सेंसेक्स में 800 से अधिक अंकों का उछाल, वहीं निफ्टी 24,200 से ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी।

0: Number one. Mm-hmm. Second is you mentioned statements, and despite all that is going on, the tit for tat that's going on, there seems to be, market seems to be now discerning. So other statements that are coming in, that the discussions are on and stuff like that. So market is possibly choosing to believe that. But in our case, the IT bit is something. It's not so much the individual company, but the signal that people are taking, that as to, you know, from that company that people are trying to take a signal that things may not be as difficult or as dire, and it's turned out to be a little better, and people expect that more to continue. Mm-hmm. With the results coming in,
1: as they say, markets are dependent on sentiment, and the sentiment is all is well.
0: Yeah.
2: उदयन, जो आज हमने तेजी देखी लगभग 1% से अधिक की बढ़त रही है, तो ये सिर्फ एक दिन की हम तेजी मान सकते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, तो आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो एक नए बुल रन की शुरुआत इसे माना जा सकता है, या मार्केट जैसा दिखा कि पिछले दो सप्ताह में जैसा परफॉर्म कर रहा था, इस हफ्ते में शायद थोड़ा सा सहारा मिला है मार्केट को, जिसमें घरेलू निवेशकों से ज्यादा विदेशी निवेशकों का सहारा ज्यादा मिला, तो क्या कह सकते हैं इस पर?
0: देखिए, आपने जो विदेशी निवेशक के बारे में कह रहे हैं, उनकी वापसी तो थोड़ी बहुत हुई है, मतलब उस लेवल की नहीं हुई है, पर वापसी हुई है. अब जो आपके जो नतीजे आएंगे उससे काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है. अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी कई जगह से, कई क्षेत्रों से काफ़ी सकारात्मक है. तो उस पीछे की ये खबरें हैं जो कि आती रहेंगी. अब एक तो वहाँ से आएंगी, जो पीछे की जो नतीजे, क्वार्टरली जो तिमाही जो नतीजे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रेजिलियंस देखने को मिल रहा है. जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि अप्रैल, मई, जून में काफ़ी इतने चैलेंज होने के बावजूद भी वो सेक्टर, FMCG मानिए, बाकी मांगे, वहाँ पे एक सर्टन एक दृढ़ता देखी गई है. पर आगे चल के जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, उसको, उसकी जो प्रगति है, कितना अच्छा स्प्रेड होता है, कितना कुछ कोई डेफिशिएंसी नहीं आ जाती है, एक चिंता थी, तो वो काफ़ी कुछ हेडलाइंस को, रादर मार्केट सेंटिमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है. और क्योंकि आप पूरा, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो खरीदारी होती है, जो कंजम्पशन, जो त्योहारों के वक़्त हैं, तो वहाँ से वो निष्कर्ष निकाला जाएगा, वहाँ से वो आकलन किया जाएगा, और वहाँ से वो आप मान सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस जरूर होगा, क्योंकि कंजम्पशन के जो से जुड़े हुए, खपत से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर मॉनसून की प्रगति का और किस क्वालिटी की वो होती है, वो काफ़ी कुछ डिपेंड.
2: तो इसमें ये मान सकते हैं कि बाजार को आगे मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए, आपका ऐसा अंदाज़ा है क्या?
0: नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. आप अगर उतना मतलब कभी अगर देखिए, जो खाड़ी में जो संघर्ष है वो अभी तक वो निपटा नहीं है, एंड तो वो क्योंकि वो निपटा नहीं है, तो जब जब आपकी खबरें आएंगी, अगर वो सकारात्मक खबरें नहीं हैं, तो फिर वो उसका एक असर तो पड़ेगा, क्योंकि सीधा आप पहले ये बाजार निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि तेल के जो आपूर्ति है उस पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि उससे मुद्रास्फीति, आर्थिक प्रगति, कंपनी के जो स्टेटमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उसके ऊपर असर तो पड़ता है. जो पीछे हम देख रहे हैं, हमारे रुपए के मजबूती में, वैल्यू में असर तो पड़ता है. तो वो एक और चीज़ है जिसके ऊपर नज़र रहेगी. अगर वो वहाँ पे सकारात्मक खबरें नहीं आती, उसका एक असर तो ज़रूर पड़ेगा. पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मॉनसून की प्रगति में जो पीछे चल रहा था और मूवमेंट होती जा रही है, तो जितना गैप नज़र आ रहा था वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर होता चला जाएगा, ताकि जो कृषि क्षेत्र में कुछ ज़्यादा चैलेंज ना आए.
1: Can we say that Indian fundamentals are very strong? Also for the fact that we are largely a consumer-based economy, not necessarily an export-based economy. And the fact that we keep having something like we're going to have festivals starting from Raksha Bandhan, and it'll go on till beyond, you know, Lohri and all that. So the consumption is there always thanks to these festivals. So, and add to that the measures taken by the government, like various laws and, the GST and so on and so forth. Do you think that we are sitting on very strong fundamentals?
0: There is no doubt about it. I mean, इफ़ यू सी

0: अब ये तो इंडिविजुअल उसके बारे में बात है कि वो वैल्यूएशन को कौन से को वाजिब सोचेगा, बट इट्स अभी जो जिस हाल में है वो अगर आप कोई मुझसे पूछे वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले जो स्थिति थी उसे तो मैं कहूँगा बेहतर है. तो इसलिए अगर कोई बार्गेन, जैसे आप दुकानों में बार्गेन लेने जाते हैं, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, अगर बार्गेन वाली बात अगर आ रही है तो शायद अब शायद बार्गेन वाली स्थिति बेहतर है वनस्पत इसके की 6-7 महीने पहले जो थी. और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस ये ऐसा वक्त है जहाँ पे जो रेगुलर छोटे इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या जो भी अदर एनपीएस के थ्रू कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो मार्केट्स में वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें क्योंकि यही उससे उनका एवरेज जो खरीदारी
1: होगा
0: जो कॉस्ट है वो एक मैनेजेबल लेवल रहेगा. जब अपवर्ड मूव होगा तो उसमें उनको गेंस मिलेंगी.
1: राइट.
2: Let's take a look at the U.S. markets now. Well, most U.S. equities ended higher yesterday, buoyed by gains in semiconductor shares and easing oil prices. Markets staged a recovery even as renewed tensions between the United States and Iran kept geopolitical risks firmly in focus. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 1.3%, the S&P 500 jumped 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. On the economic front, the latest U.S. unemployment insurance data showed initial jobless claims fell to 2,15,000 last week, down 2,000 from the preceding week. So earlier we used to say oil, and now we say in lighter vein again that semiconductor is the new chip on the block. Whoever has the semiconductor is rules the world.
0: Yeah, what has also happened is, you know, it happens in every market. First, there are darlings, people, you stocks that you like. Then you say that this is too overvalued. What do we do? Is there somebody who looks like the superstar but is not a superstar yet? So that's how there are certain, even in semiconductors, you find certain companies which have certainly caught the eye and people are sort of attracted or towards those stocks. So sometimes what happens is you move towards one particular counter or stock, and then after a point of time it gets beaten down a little bit. So those things are happening. Those are interesting things. Yes, semiconductors are going to be there. They're going to influence market movements, because that is going to become, see, Lalima, one thing is there, whether you agree with me or not, the way technology has come into our lives, whether it's mobile phones or whatever, AI, so almost everything that is being offered is on a technological platform.
2: Absolutely.
0: So every company is a technology company which is offering something. So that's how we have become. And if the infrastructure is going to be based on semiconductors, then it is like oil. Data and semiconductors and stuff like that, anything related to it is going to be very crucial, and especially market sentiments and market movements is going to keep determining.
2: Right. And now look at the forex reserves. Well, India's foreign exchange reserves rose over $7.2 billion to over $674 billion during the week ended July the 3rd. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $4.5 billion to over $545 billion. During the week, gold reserves rose around $2.7 billion to over $105 billion.
1: इस वर्ष जून में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 26% से अधिक बढ़कर 28,973 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मई में ये 22,908 करोड़ रुपए था. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के अनुसार जून में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 31,781 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो मई के मुकाबले 2.7% ज्यादा है. इक्विटी में जून महीने के दौरान मिड कैप फंड में सबसे ज्यादा निवेश आया, जिसकी कुल धनराशि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक रही. इसके बाद स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड का नंबर रहा. वहीं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मामले में रुख उल्टा हो गया. पिछले महीनों में मुनाफा वसूली के बाद इसमें 3,443 करोड़ रुपए का निवेश आया, हालांकि जून में डेट फंड से निकालने पैसे का सिलसिला जारी रहा, कुल मिलाकर 1,09,000 करोड़ रुपए निकाले गए। उदिन, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, कहां मई में 22,908 करोड़ और अभी जून में 28,973 करोड़, क्या इससे हम कह सकते हैं कि ये एक शिफ्ट है जो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, या बाजार का प्रभाव अभी का देखते हुए, बाजार के हाल को देखते हुए थोड़ा सा सोचने में बदलाव आया है निवेशकों के?
0: उत्साह बढ़ा है जो जब आपका ये कोई हमारे देश वाली बात नहीं, जहाँ पे भी मार्केट्स अच्छा करती हैं वहाँ पे उत्साह बढ़ जाता है और निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि आप इसे रिसेंसी बायस कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस में, कि जो अभी अभी हो रहा है वो हमारे जो निर्णय ले रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि हम 3 साल 5 साल का हम नहीं देखते हैं, वैसे देखना चाहिए पर हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्साह बढ़ा है क्योंकि थोड़ा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई, तो वहाँ पे ये आपने इस उत्साह को पाया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हम यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं और जो मुझे लगता है वो ये है कि एक स्तर बना रहा है, इतना कुछ हो गया तब भी हमारे निवेशक डटे रहे हैं और एक वेरी हाई लेवल ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती चली जा रही है। मतलब अगर इक्विटी को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, भारत के भविष्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में अगर कहा जाए तो वोट वो मिल रहा है कंटिन्यूसली हमारे निवेशक। तो कहते हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन और व्हाटएवर एक किसी महापुरुष ने कहा था, तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल लागू हो रही कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगातार मिलता चला जा रहा है।
1: इसमें एक चीज और है कि ETF में लगातार निवेश बढ़ रहा है जबकि मुनाफा वसूली भी बड़े पैमाने पर हमने देखी है बीते दिनों में।
0: देखिए मुनाफा वसूली कई बार क्या हो जाता है कि कहना बड़ा मुश्किल है, अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, गोल्ड में जो निवेश हम करते हैं उसको एक शॉर्ट टर्म उसमें ना लेके करना चाहिए, बट एनीवे अगर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि इक्विटीज में, इसका मतलब इक्विटी कल्चर हमारे देश में आ गया है, हम रिस्क अगर मार्केट्स डाउन जाते हम नर्वस नहीं हो जाते, पहले क्या होता बिल्कुल खाली हो जाती थी, बिल्कुल डीमैट से डीमैट भी बिल्कुल वीरान हो जाते थे, वो चीज नहीं हो रही, वो हिम्मत है, वो स्टमक है, वो जोश जज्बा है एंड कॉन्फिडेंस, जो वोट है, वोट फॉर द फ्यूचर वो मिल रहा है एंड वो इन खबरों से लगातार आती जा रही है।
2: Well, we've had the unprecedented number of demat accounts open in the last 1 year, and that says it all about the Indian markets. Well, moving on, Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour. PM Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Mr. Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce, and defence. In an interview to Akashvani, Dr. Rahul Sen, economist and senior lecturer at Auckland University of Technology, said the bilateral relationship between India and New Zealand has a lot of potential to grow.
3: To me, this opportunity to take the bilateral trade relationship between New Zealand and India, which I would say has a lot of potential to grow, because currently India is the 11th largest trading partner of New Zealand, not even in the top 10. And clearly, this FTA should have the potential of taking India up the ranking of New Zealand's trade easily among the top 5. This FTA is providing opportunities for investments coming in from New Zealand to India, with an aspiration of about $20 billion of investment coming in over the next 15 years.
2: Against this backdrop, Prime Minister Modi's visit assumes even greater significance. Tomorrow, he will participate in a major business event where discussions will focus on trade, investment and expanding economic cooperation between the two countries. Udayan, first the Prime Minister goes to Australia, now New Zealand. Is energy security central to this whole trip and trade deal?
0: Absolutely. Lalima, you would have seen in the budget and other places the pronouncements regarding nuclear energy. Mm-hmm. So we want smaller reactors. We don't want those mega projects. And we want to crack this energy thing quite a bit. We cannot become an AI world power without having power.
2: Yes.
0: So we need that power. Is a critical area, power, water. Mm-hmm. So energies and also things like LNG and others, mm-hmm. those are also equally important. Coal is important. So this particular part of the globe is actually much more important that people like me normally think.
2: Yeah, and Australia has good quality and quantity of uranium. Which
0: yes, absolutely.

0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली
1: राइट।
2: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आज कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने से 2027 में दुनिया भर में तेल की भारी अतिरिक्त आपूर्ति का उसका अनुमान गलत साबित हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जून में वैश्विक तेल आपूर्ति 4.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 98.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य के पास फंसे टैंकरों ने अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस सुधार के बावजूद वैश्विक उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी क्योंकि 2027 में इसमें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। यह 6 वर्षों में पहली वार्षिक गिरावट होगी। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल 3.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी के बाद अगले साल ऑयल सप्लाई में 7.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी।
1: And global crude oil prices rose today as renewed geopolitical concerns reignited worries about supply disruptions. Brent crude was trading 0.7% up at $76.84 per barrel. West Texas intermediate crude was trading over 0.5% up at $72.48 per barrel when reports last came in. And let's talk about the Indian bullion market, where 24-karat gold was trading 0.8% down at 1,44,720 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,22,610 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.7% नीचे आकर 1,44,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.8% की गिरावट के साथ 2,22,345 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। उद्यम जी, बहुत ही कम शब्दों में क्रूड ऑयल के बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: ये देखिए, ये जैसे जैसे वहाँ पर संघर्ष का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जैसे आपने कहा 9 मिलियन बैरल्स का फ़र्क है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज में से वहाँ से पंप करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, आर्थिक वृद्धि का दर विश्व में कम हो जाता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक सप्लाई एंड डिमांड में एक एडजस्टमेंट होगा।
1: राइट, थैंक यू उदयन फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियोज एंड अपडेटिंग अस।
0: थैंक यू लालू।
1: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 प�ints, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200. Most Asian stock market indices end in positive territory. And global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक

0: 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by the New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for their warm hospitality during his visit. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar today interacted with members of the Indian diaspora in Oman. In a social media post, Dr. Jay Shankar said their enthusiasm in strengthening India-Oman relations is palpable. He appreciated the Indian diaspora's contributions to the society as well as to India-Oman partnership. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed the preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. The Supreme Court will hear a batch of pleas seeking a fair and time-bound probe into the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya on Monday. On 7th of July, an Ayodhya court granted one-day police remand for three of the eight accused arrested in connection with the alleged theft of donations at the Ram Temple. A local court had sent all the eight accused to a 14-day judicial custody on the 29th of last month. The Indian Railways has approved 206 crore rupees for Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakur Basti Bhatinda sections of the Delhi Division. Operation Amistad has concluded successfully with the return of the Indian contingent to New Delhi from Venezuela today. The Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission was launched following the recent earthquakes in Venezuela. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, thanked the Prime Minister for the timely help, support and solidarity extended by India. External Affairs Ministry said in a statement that on 26th of June, two Indian Air Force C-17 Globemaster third aircraft carried a 41-member contingent from the Indian Army's 60-para field hospital unit to Venezuela. Sebastian Robert, a former director of All India Radio News and an officer of Indian Information Service, passed away in New Delhi today after a brief illness. He was 80. Mr. Robert was associated with AIR News for several decades and had made his mark as an ace correspondent in the field of defense and external affairs, covering important events in India and abroad. In women's cricket, India were 170 for 3 in their first innings against England in one-off test match at the iconic Lord's Cricket Ground when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to field. This match is a landmark occasion for Lord's as it is the first women's test match to have been played at the ground. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार टीना झा।
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीना झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों बाद न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऑकलैंड का प्रतिष्ठित स्काई टावर भी भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता के रंगों में जगमगा था। वहीं भारतीय समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस यात्रा का रणनीतिक महत्व क्या है, भारत की इंडो पैसिफिक नीति में न्यूजीलैंड की क्या भूमिका है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को किस नई दिशा में ले जा सकती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व राजदूत श्री गुरजीत सिंह जी। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद टीना।
1: अम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की

0: लुक्सॉन के साथ भी उनकी पहली मुलाकात ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइंस पे लाओस में हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के साथ अपना संबंध बनाएं, चाहे कि एक बहुत बड़ी विजिट ऐसी नहीं हो। तो उनके प्रधानमंत्री भी पिछले साल आए थे, उनके विदेश मंत्री भी आए थे, और उन दोनों का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हालांकि वो दोनों एक ही सरकार में हैं, उनकी पार्टियां अलग हैं, और हमारे साथ जो FTA हो रहा है उनके ऊपर उनका नजरिया अलग है। तो हमने न्यूजीलैंड के हर कोने की जो एक सोच है उसके साथ संबंध बनाए हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूजीलैंड गए हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो ये न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ना तो क्वाड का मेंबर है और ना ही इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव है, लेकिन अब वो भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रहा है और भारत उसका पूरे रूप से सम्मान से उसका जवाब दे रहा है।
1: बिल्कुल, तो इस बारे में क्या आउटकम रहेगा, दोनों प्रधानमंत्री जब वार्ता करेंगे इस पे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अम्बेसडर, आज जब इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है, ऐसे में क्या भारत और न्यूजीलैंड रीजनल सिक्योरिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करने में साथ मिलकर किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं?
0: और न्यूजीलैंड ईस्ट एशिया समिट के दोनों सदस्य हैं और दोनों ही आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं, और हम और दोनों ही आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में भाग लेते हैं, आसियान रीजनल फोरम में भाग लेते हैं। तो जो ये अब रणनीति की बात कर रही हैं, ये इन संस्थाओं में जो बातचीत होती है उसमें भारत और न्यूजीलैंड का साझा ख्याल वहां पर आ चुका है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, खासकर पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी अपना हाथ उठाकर एक कोशिश कर रहा है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जाए और वहां पर किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से नहीं फैलने दे।
1: अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। एम्बेसडर, आपने जिक्र किया कि FTA का जो फॉर्मल साइनिंग है वो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत न्यूजीलैंड संबंधों में व्यापार अपनी पूरी क्षमता फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। FTA के बाद वो कौन से क्षेत्र हैं दोनों देशों के लिए जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं निकल कर सामने आई हैं, किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है FTA के बाद?
0: न्यूजीलैंड अपनी ट्रेड पॉलिसी के लिए बहुत ही माहिर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है, इसलिए वो APEC का मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, वो RCEP जिसमें से भारत ने एग्जिट कर लिया था उसका भी मेंबर है, और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसका भी वो मेंबर है, उसका इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट वही चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो अग्रीमेंट्स हैं जिनमें भारत नहीं है उसमें सब में न्यूजीलैंड है, क्योंकि उस न्यूजीलैंड को अपने व्यापार के लिए बड़ी मार्केट्स की एक सर्च रहती है, हमेशा खोज रहती है। तो भारत के पास भी वो इसी वजह से आया कि हमें भी भारत का जो बड़ा मार्केट है उसकी खोज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब RCEP की निगोसिएशन होती थी तो न्यूजीलैंड बहुत भारत को तंग करता था, क्योंकि उसकी एकमात्र रणनीति थी कि हमारे दूध और दूध के पदार्थ भारत की मार्केट में जरूर आए।
1: जी
0: अब हमारा जो FTA उनके साथ हुआ है इसमें भारत ने अपनी जो अपनी हमारी सोच है उसकी रक्षा की है, और इसमें दूध एग्रीकल्चर ऐसी जो चीजें हैं उनको हमने नहीं आने दिया है। लेकिन क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी हाई है, न्यूजीलैंड ने FTA साइन किया है और भारत के 100% गुड्स को वहां आने की अनुमति दे दी है। हमने अपनी तरफ से भी काफी ढील उनको दी है, और तकरीबन 90% जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत को होता था उसको फायदा होगा FTA से। लेकिन जो ये बड़ी चीजें होती हैं, दूध, मिल्क पाउडर, चीज, इन चीजों को हमने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों में समझौते की तरह हम आगे बढ़े, जैसे कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम जिसमें एप्पल, कीवीज और जो उनकी एक खास शहद होता है, हनी होती है, मारुकार, उसके लिए भारत में कैसे उनको उसका उत्पाद किया जाए उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि भारत की ओर से जो लोगों की मोबिलिटी

0: फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं, इसको एफटीए के अंडर हमें और अनुमति मिलेगी। और फाइनली 20 बिलियन डॉलर का एफडीआई निवेश न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करेगा। तो ये होता है एक कॉम्पोजिट एफटीए, जिसमें निवेश भी है, व्यापार भी है, मोबिलिटी भी है और सर्विसेज भी है। और न्यूजीलैंड का जो निवेश भारत में है वो ज्यादातर आईटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ऐसी सर्विसेज में है, तो ये उनकी क्षमताएं हैं, तो ये इस तरह से उनको फायदा होगा।
1: नई संभावनाएं हालांकि तलाश रहा है न्यूजीलैंड भी, क्योंकि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी न्यूजीलैंड को नजर आ रही हैं। और जो क्लाइम डाउन एक तरह से कह सकते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी में, वो भी हमने देखा है। आपने पीपल कनेक्ट की बात कही अम्बेसडर, तो उससे जुड़ता एक सवाल है कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय समुदाय से वो संवाद जरूर करें, और न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं हम कि भारतीय समुदाय लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। क्या ये समुदाय हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक नेचुरल ब्रिज या फिर एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ कल्चरल और एन इमोशनल ब्रिज, दे आर एज मच एन इकोनॉमिक एंड अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज, क्या न्यूजीलैंड के केस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रह रहे हैं वो भी इस रिश्ते को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
0: क्योंकि वहां पर तकरीबन 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जिसमें से तकरीबन 70,000 भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, तो ज्यादातर लोग तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ साल पहले से एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि भारत जैसे देशों से जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन एरियाज में उनको जरूरत थी, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, हेल्थ वर्कर हुआ, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ, ये उन्होंने इन प्रोफेशंस को टारगेट करके माइग्रेशन की। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स जो उधर हैं हमारे, वो सब प्रोफेशनल्स हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा ओहदा और अच्छी तस्वीर बना के देता है। अब वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इंतजार कर, आज मैंने देखा था कि कई लोग भारतीय मूल के कह रहे थे हमारा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अभी आज पहुंच गए हैं, तो जो ये मीटिंग होगी उसमें हाउसफुल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं हुई है, तो ये एक नया कीर्तिमान आज देखा जाए।
1: बिल्कुल, उस तरह की एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी देखी गई है। बल्कि कल जब मेलबर्न में भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो काफी उत्साह था। अम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट रहा प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड से पहले 2 दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो यह कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
0: नॉर्मली न्यूजीलैंड को एक ऑस्ट्रेलिया का करीबी दोस्त माना जाता है, कि जो ऑस्ट्रेलिया नीति अपनाएगा न्यूजीलैंड भी वो अपनाएगा, लेकिन इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे और चीन के ऊपर न्यूजीलैंड ने अलग कदम उठाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक में एक्टिव है, न्यूजीलैंड ने उसने इतने कदम नहीं बढ़ाए, इसलिए दोनों विजिट्स को एकमात्र रूप से देखना मैं समझता हूं थोड़ी विचित्रता आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे गहरी बात दो है, एक यूरेनियम और एक क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीजें बड़ी मात्रा में है, तो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो यूरेनियम हमको मिलेगा, जिससे हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चला पाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स तो वो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और पैक सिलिका का भाग है ऑस्ट्रेलिया। फिर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो हमारा एक संधि हुई है, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया का मैरिटाइम बॉर्डर कमांड, ये भी दोनों आपस में अब तालमेल रखेंगे। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, वो अब तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमारे एक इंटरिम अग्रीमेंट है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम हुआ, और जिसमें कई लोग मौजूद थे। और आपने देखा होगा कि एशिया में ऐसा सीईओ फोरम नहीं हुआ। तो हर देश में वही चीज नहीं होती है, डिपेंड करता है उस देश में क्या क्षमता है। और
1: जी
0: जो कल्चरल रिपैट्रिएशन है, ऑस्ट्रेलिया के पास कई भारत के सांस्कृतिक चीजें हैं जो चोरी से वहां आई हुई है, तो उन्होंने कई चीजें इस बारी भारत को लौटाई और इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड के पास यूरेनियम नहीं है, क्रिटिकल मिनरल नहीं है, उनके पास शीप है, दूध है, आईटी की क्षमता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा वादा कर दें एफडीआई का, उसका पूरा करें, तो उससे तो फायदा होगा ही। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो आसियान और ईएएस में भी बात होती है, न्यूजीलैंड उसको भी दोहरा रहा है। ये विजिट, जैसे मैंने कहा, एक नया दौर शुरू करेगी भारत और न्यूजीलैंड में।
1: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा बिल्कुल यही स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया से की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो न्यूजीलैंड गए हैं 2 दिनों के लिए। ये स्पष्ट है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अब और अधिक व्यापक हो गया है और अधिक सक्रिय है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ सहयोग को नई दिशा देने की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और साझा समृद्धि को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम सांझ ढले का ये वक्त और हमारे सभी सुधी श्रोताओं के लिए एक खुशखबरी यही है कि उनका जो पसंदीदा प्रोग्राम है सांझ ढले वो शुरू हो चुका है।

जिंदगी की यही रीत है और हर हार के बाद ही जीत है। हार हमें जीतने के लिए उकसाती है, हार हमें जीतना सिखाती है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम सांझ ढले, और सांझ के ढलते ही जो गीत प्रोग्राम सांझ ढले में आपने सुना वो था 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया। और 90s के जितने भी बच्चे, यानी कहते हैं कि 90 के दौर में जो भी बच्चे खूब अपने कॉलोनी में खेलते हैं या फिर जहाँ भी उधम उन्होंने मचाया पूरे अपने बचपने में, उनको ये फिल्म ज़रूर याद होगी। अनिल कपूर और उनके साथ वो बच्चों की टीम हमारे बचपन की एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हमारे यानी 90s के बच्चों की बड़ी लैंडमार्क मूवी थी। किशोर कुमार की आवाज़ में जिंदगी की यही रीत है और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

अनुराधा पौड़वाल जी की आवाज में ये गीत आपने सुना। अनुराधा पौड़वाल जी जो कि फिल्म आशिकी से रातों रात तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने बेहद प्रसिद्धि पाई और ये फिल्म जो थी 1981 में आई थी, प्रेम गीत देख लो आवाज देकर।

या दोस्तों, आदमी मुसाफिर है और मुसाफिर फिल्म का ये गीत भी था जो अभी आपने सुना। माफ़ कीजिएगा, मुसाफिर फिल्म का नहीं, अपनापन फिल्म, जो कि 1977 में आई थी और इस फिल्म में अभिनय किया था जंपिंग जैक जितेंद्र ने। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सांझ ढले, मेरे यानी सुनील के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: लताताई की आवाज में तलाश मूवी का ये गीत, और इसी गीत के साथ आज का सांझ लेकर कभी ही होता है संपन्न। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 सीएमश्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर बढ़ाई सख्ती। यातायात नियम तोड़ने पर इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास और जनसेवा के संकल्प को नई शक्ति मिली है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विकास की रफ्तार को

0: और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्षदों ने ये निर्णय लिया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।
1: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी मिलकर राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दे सकते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा परिसर में संस्कृत महाकाव्य मंगल महर्षि चरितम का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का प्रत्येक प्रयास देश के भविष्य में किया गया निवेश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषाओं में से एक है। इसकी तार्किक व्याकरणिक संरचना आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर में भी प्रासंगिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 8,300 करोड़ रुपए का 7 वर्षीय कार्यक्रम राजधानी में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम की 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% योगदान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर गति और दृढ़ संकल्प के साथ सतत विकास को गति दे रहा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री जाधव ने 70 लाख से अधिक स्वदेशी और जलवायु प्रतिरोधी वृक्षों के प्रस्तावित वृक्षारोपण, 70 से अधिक जल निकायों के विकास और लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने की सराहना की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की पहल शुरू की है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल और एनजीओ एहसास के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुए इस समझौते के अंतर्गत

0: जीएल अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर पहल के माध्यम से परियोजना के लिए वित्त सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 48,42,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं, जबकि रेड लाइट और ओवर स्पीड उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 17,21,000 से अधिक ई चालान जारी किए गए हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामलों में 2,187 FIR भी दर्ज की गई है। राजधानी में ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़क कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बना दिया गया है। अनावश्यक ट्रैफिक सिग्नल हटाने, यू टर्न की सुविधा देने और चौराहों को फिर से डिजाइन करने जैसे उपायों से इन रास्तों पर ट्रैफिक का प्रभाव बेहतर हुआ है। यातायात जाम को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट, आनंद विहार, आश्रम चौक, मजनू का टीला और अन्य प्रमुख स्थानों पर आधारभूत ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हुई है। यातायात पुलिस ने कहा है कि इंजीनियरिंग सुधार, आधुनिक तकनीक, प्रभावी परिवर्तन और जन भागीदारी के माध्यम से राजधानी में सुरक्षित और यात्री अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही DTC और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक ही कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी करने के रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 15 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली की महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली NCR का महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। ये मार्ग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट मेहरोली गुरुग्राम रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 148A को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतर्राज्यीय यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है। चांदनी चौक नागरिक मंच ने दिल्ली सरकार द्वारा शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मंच के महामंत्री और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों की लंबे समय से ये मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम परिवर्तन के साथ ही पुरानी दिल्ली के संरक्षण, विकास और रखरखाव के कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नजफगढ़ स्थित गोयला डेयरी संपीड़ित जैव गैस CBG प्लांट की प्रगति की समीक्षा की और पश्चिमी जोन की प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की साइबर सेल ने नकली दवाओं के निर्माण और अंतर्राज्यीय आपूर्ति से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था। राजधानी दिल्ली

आज सुबह हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण दिल्ली में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज दक्षिण जिले की दिशा समिति की बैठक भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए नालों की गाद हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ये वार्षिक महोत्सव अनानास उत्पादकों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य व्यवसायों और निर्यात बाजारों से जोड़ने का राज्य का प्रमुख मंच बन गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम व्यापार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक स्तर पर किसानों की क्षमताओं को नई गति प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे कई दशकों तक आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे। उन्होंने देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हुए रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के शामिल होने से राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली क्लीन एयर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादक

0: परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने आकाशवाणी समाचार के लिए देश विदेश में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में उनकी कुशल संवाददाता के रूप में विशेष पहचान थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र महिला टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 199 रन बना लिए थे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से हो रहा है। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली की यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. During his visit, the two leaders are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic, high-stake state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for the warm hospitality during his visit. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart Badr bin Hamad al-Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said, "The talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defence and cyber and AI domains." The Omani Foreign Minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और एक बार फिर से फिल्मी संगीत का मधुरता से भरा हुआ ये प्रोग्राम जिसका नाम है मधुरिमा।

कार्यक्रम मधुरिमा में आज जिस राग की हम बात करने वाले हैं वो है राग अहीर भैरव। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। ये राग भैरव थाट के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से भक्ति और शांति का वातावरण उत्पन्न करने के लिए इस राग को जाना जाता है।

0: नमस्कार, अहीर भैरव की हम आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा में। इस राग की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो ये राग भैरव और प्राचीन राग अहीरी या बागेश्वरी और खमाज का जो मिश्रण है उससे उत्पन्न हुआ है। इसमें ऋषभ, रे, धैवत स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर जो हैं इसमें शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह और अवरोह दोनों में ही सातों स्वरों का प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण है। इसके गाने के समय की बात की जाए तो दिन का प्रथम प्रहर अर्थात सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय इस राग के गायन और वादन का सबसे उपयुक्त समय है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा, और मधुरिमा के इस अंतिम गीत के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। बात हमने की आज राग भैरव की। राग भैरव एक बहुत ही भावुक और गंभीर राग माना जाता है। फिल्म संगीत में इस राग पर एक बहुत ही सुंदर उपयोग हुआ है। जैसे कि गीतों की अगर बात की जाए तो पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई फिल्म में, मेरी सूरत तेरी आंखें से ये गीत है। और परिचय फिल्म का वो मशहूर गीत सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। जी हाँ, ये राग अहिर भैरव पर ही बनाए हुए गीत हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा, और इस अंतिम गीत के साथ मुझे यानी सुनील को दीजिए अनुमति।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य सेमीफाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में जारी।

0: तो आज सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं टेनिस के साथ, जहां साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है, यानी कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, और अलेक्जेंडर जेरेव इसके पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराया। अब से कुछ देर में एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। नोवाक जोकोविच इससे पहले 10 बार पुरुष सिंगल्स का फाइनल खेल चुके हैं, जिसमें से 7 बार खिताब उठाने में सफल रहे हैं।
1: मार्सिलो अरेवालो और जेलेना ऑस्टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 56 मिनट के रोमांचक मैच में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने स्टॉर्म हंटर और मार्क पॉलमैन्स की जोड़ी को 4-6, 7-5, 6-2 से हराया। इसके साथ ही दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपना पहला मिक्स डबल्स का मेजर और पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। वहीं कैरोलिना मखोवा और लिंडा नोस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में चेक गणराज्य की कैरोलिना ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-2, 1-6, 7-6 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक को 6-4, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये था कल के मैचों का हाल, लेकिन बात करते हैं अभी खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबलों की, जहां जेवरेव ने पहले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष। सबसे पहले ये बताइए, रोमांचक मुकाबला रहा होगा, क्योंकि जब भी अलेक्जेंडर जेरेव की बात होती

0: है फ्रेंच ओपन का, वो फाइनल याद आता है, ये खिलाड़ी डरता नहीं है, डटता है और मुकाबला करता है।
1: जी हाँ, शक्ति लगातार अपने विकट परिस्थितियों के बावजूद अलेक्जेंडर ज्वेरेव पहले खिलाड़ी बन गए हैं विंबलडन 2026 में अपनी जगह बनाने वाले। उन्होंने अर्थर फेरी को इस मुकाबले में हराया। जो पहला सेट रहा वो बहुत ही कांटे की टक्कर का रहा। पहले मुकाबला 6-6 की बराबरी से था और लास्ट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने उनको छकाते हुए एक बेहतरीन तरीके से जीत को मुकम्मल किया। वहीं दूसरे और तीसरे सेट में अर्थर फेरी कहीं आसपास भी नजर नहीं आए और ज्वेरेव ने जो है बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला जीता। लेकिन अर्थर फेरी जो एक 23 वर्षीय खिलाड़ी, उन्होंने इससे पहले हुए मुकाबले में फ्लेवियो कोबोली को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया था, क्योंकि जो अर्थर फेरी की रैंक है वो 114वीं रैंक है और उन्होंने 90 नंबर के खिलाड़ी को हराया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और एक वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
0: जी बिल्कुल, तो ज़ेवरेव ने अपना टिकट पक्का कर लिया है, लेकिन दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। एक तरफ युवा जोश से भरपूर यानिक है और दूसरी तरफ नोवाक, जिनकी नज़र बिल्कुल स्पष्ट है अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए।
1: जी हाँ, जैसा आपने बताया कि वो अपने आठवें टाइटल के लिए जो है बहुत ही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ये उनका 11वां फाइनल होगा अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं। लेकिन यानिक सिनर की स्पीड के आगे जोकोविच कई बार परास्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जोकोविच अपने खेल में बदलाव करके एक अपने जो दौड़ है उसको सही जगह पर जाके खत्म करेंगे।
0: जी बिल्कुल, देखना होगा इसमें से कौन खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाता है आज की रात। और अब रुक करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप का, जहां क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं और कल पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और आज रात 12 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होना है।
2: फीफा विश्व कप 2026 को फ्रांस के रूप में अपना पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल गया है। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेल के गोल की बदौलत सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि लगातार दोनों तरफ से हो रहे आक्रमण के बाद भी मैच के शुरुआती 45 मिनट गोल रहित रहे। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपना अटैक और तेज किया। टीम को पहली सफलता मैच के 60वें मिनट में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दिलाई, जिन्होंने बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाते हुए फ्रांस को 1-0 से आगे कर दिया। ये इस विश्व कप में उनका 8वां गोल था। इसके ठीक 6 मिनट बाद ही उस्मान डेम्बेल ने फ्रांस की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। एम्बाप्पे के शानदार पास का फायदा उठाते हुए डेम्बेल ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और फ्रांस की जीत पक्की कर दी। इसके बाद बचे हुए समय में फ्रांस ने नियंत्रण से खेल को आगे बढ़ाया और को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
3: 20 वर्ल्ड कप गोल्स फॉर किलियन एम्बाप्पे। उस्मान डेम्बेले हैज हिट द बॉटम कॉर्नर एंड फ्रांस आर हेडिंग फॉर द फाइनल फोर। अ गोल ऑफ प्रिसिजन एंड सर्टेनिटी। फ्रांस मार्शल
2: इससे पहले टीम वर्ष 2018 में चैंपियन बनी थी और 2022 में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, यहाँ अब वो दौर आ चुका है फीफा का जहाँ टीमें अपने खिताब से महज 2 से 3 कदम दूर हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सबसे कठिन कदम है। आज मुकाबला होना है स्पेन का बेल्जियम से, किसका पलड़ा भारी है?
1: देखिए, पलड़ा भारी अगर मैं बताना चाहूँ तो दोनों ही टीमों ने इस विश्व कप में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी हैं। स्पेन ने एक ड्रॉ खेला था केप वर्डे के साथ, उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, उरुग्वे हो, ऑस्ट्रिया हो या पुर्तगाल हो, किसी भी टीम के सामने स्पेन जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटी और उन्होंने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। वहीं बेल्जियम जो है उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला इजिप्ट से ड्रॉ खेला था, उसके बाद उन्होंने एक मुकाबला ईरान से ड्रॉ खेला और 3 मुकाबले जीत कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मानसिक दबाव जरूर बेल्जियम पर होगा, क्योंकि स्पेन एक बार विश्व विजेता रह चुके हैं, जबकि बेल्जियम ने अभी तक कोई एक भी बार अभी तक खिताब नहीं जीता और फाइनल भी नहीं खेला है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुकाव जो है मैच का स्पेन की तरफ होगा, लेकिन क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो दर्शकों को एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। खेल ना सिर्फ एक मंच है जोश, जज्बे और जुनून से दुनिया जीतने का, बल्कि खेलों के अंदर क्षमता है सीमाओं की दीवारें तोड़कर संबंधों को नई मजबूती देने की। ऐसा ही किरदार अदा करता है क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन आज प्रसिद्ध मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं।
1: MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए खुशी की बात है।
1: स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत है, जबकि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा।
1: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
1: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
0: कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम साथ खेले और हम साथ जीते। स्पोर्ट्स कैन के लिए नेहा गोस्वामी।
2: हम साथ खेलते हैं और साथ जीतते हैं, ऐसे कुछ संबंध हैं भारत और न्यूजीलैंड के, जहां पे क्रिकेट की जगह ये किरदार अदा करता है हॉकी। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: और अब चलते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान की तरफ, जहां पर एक नया कीर्तिमान और इतिहास लिखा जा रहा है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड और भारत के बीच एक मुकाबला टेस्ट मैच यहां पर खेला जा रहा है और एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर

0: 218 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पहली बार किसी महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। और इंग्लैंड में ही इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 मुकाबले में 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर ली है। कल ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर के 49 गेंदों पर 80 रन का अहम योगदान था। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट निकाले। 159 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने फिलिप सॉल्ट और हैरी ब्रूक की अटूट शतकीय साझेदारी की बदौलत 13 ओवर और 5 गेंद में ही हासिल कर लिया एक विकेट खोकर के। और इसके साथ ही मेज़बान टीम ने 5 मुकाबलों की यह श्रृंखला जो है 3-0 से अपने नाम कर ली है। और ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने भारत के साथ 2 या उससे अधिक मैचों की कोई श्रृंखला T20 श्रृंखला जीती है। और पहला मैच इस श्रृंखला का जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था और अंतिम मुकाबला श्रृंखला का साउथहैम्पटन में कल खेला जाना है, जहां भारत की उम्मीदें होंगी कि अंतिम मुकाबले को जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी जाए अपने T20 श्रृंखला की, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खरीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में तैनात किया गया है। इशिता चौधरी, सुशीला चानू और ज्योति, शिल्पी डबास, निकी प्रधान, साक्षी राणा, सलीमा टेटे, नेहा, दीपिका सोरंग को टीम में मौका दिया गया है, जबकि बलजीत कौर और ऋषिका भी टीम का हिस्सा हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
1: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा

0: बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा साइबर और एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में अंतर विभागीय सहयोग को बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

0: Mr. Meghwal said, "A comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes." The Railway Ministry said the provision of coverage version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakurbasti Bhatinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds, and it also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarterfinal of the FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semifinals after defeating Morocco 2-0 in the first quarterfinal in Boston. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की. व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की कड़ी निंदा की. इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया. फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से. और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई. सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया. श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी. प्रधानमंत्री ने नाद वोकल एंसेंबल की प्रस्तुतियां देखकर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे हैं. न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है.
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है. न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है. साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए.
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से

0: यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं और एक दूसरे के बीच साझेदारी के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। विदेश मंत्री ने आज ओमान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनका उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने भारत ओमान साझेदारी में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा यानी CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर खुली बहस में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत P. Harish ने कहा कि इस तरह की हिंसा दंड मुक्ति की प्रचलित संस्कृति के बीच जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में सत्यापित मामलों में हुई तीव्र वृद्धि सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। वेनेजुएला में भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भूकंपों के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत द्वारा दी गई सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उत्पन्न खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा।
2: बैठक में यूरोप, लेटिन अमेरिका और एशियाई देशों के विदेश मंत्री और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजनीतिक आतंकवाद का फिर से उभरना कोई नई घटना नहीं है, बल्कि एक पुराना खतरा है। ये राजनीतिक आतंकवाद मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नए स्वरूप के साथ फिर से उभर रहा है। श्री पिगॉट ने कहा कि अमेरिका के प्रयास उन हिंसक गतिविधियों पर केंद्रित है जो आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत आती है, जिनमें हत्याएं, अपहरण और हिंसक धमकियां, बुनियादी ढांचे और नागरिकों पर हमले शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, वो भी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी श्रोताओं, स्टूडियो से आज साथ हूं मैं रोहिणी लेकर हर श्रृंगार। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे से ख्याल के साथ कि बुरी परिस्थितियों में हाथ थामने वाले शख्स का हाथ जब हमेशा के लिए हम सफर बनकर मिल जाए तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं दोस्त, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ सबसे अद्भुत सुंदर तोहफा समझिए। श्रोताओं, कुछ ऐसा ही रिश्ता FM गोल्ड बरसों से आपसे निभा रहा है, तो आइए आज के अपने हर श्रृंगार को आगे बढ़ाते हैं और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं इस प्यारे अंदाज के साथ। जी, आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत का ये प्यारा अंदाज जो कि आरोप फिल्म से है, लता जी और किशोर जी की आवाज़ में, इस गीत को अल्फाज से नवाजा है माया गोविंद ने और जिया संगीत बद किया है भूपेंद्र हजारिका जी ने। तो आइए सुनिए ये दिलकश अंदाज़।

सुन रही हैं हर सिंगार। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का अनुभव हमें यही सिखाता है कि जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराने वाली है, इसलिए जो लम्हा आज मिला है उसे जी भर कर जियो। जीवन में जितनी यादें जितने हंसते पल समेट सकते हो ना, समेट लो, क्योंकि आखिर में हमारी झोलियों में हमारे पास सिर्फ कहानियां ही रह जाने वाली हैं, इसलिए जिंदगी के हर पल को खूबसूरती से जियो। ये अगला गीत खुशबू फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। इस गीत को आवाज दी आशा जी ने और अल्फाज दिए गुलजार साहब ने। संगीत की खूबसूरती आदि बमन साहब की रही। तो आइए सुनाते हैं आपको ये अगला गीत 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये रुकते चलते सफर के इस जीवन में कहते हैं नहीं होता आसान, जिंदगी में कोई चाहिए से लेकर कोई नहीं चाहिए तक का सफर तय कर पाना दोस्तों, क्योंकि हमने जो सफर तय किया है चाहने से ना चाहने तक का, इसमें वो मिले या ना मिले ये बाद की बात है। ऐसे में एक मुलाकात खुद से हो जाए ये कमाल की बात है। और ऐसी कमाल की बातों के साथ साथ ये एक गीत याद आ रहा है जो कि है रूप तेरा मस्ताना फिल्म से लता जी और किशोर जी की प्यारी आवाज में। इस गीत को बोल दिए आनंद बख्शी साहब ने और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। हर सिंगार प्रोग्राम अभी चल रहा है और 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का और 11:10 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। जी हाँ दोस्तों,

हर श्रृंगार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्यारे बड़े ही प्यारे गीत जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और जब बात करते हैं 90 के दशक की उन गीतों की, जी हाँ, उनका अंदाज बड़ा ही प्यारा है और हमारे दिलों पर एक अपनी बड़ी गहरी छाप छोड़ता है। बेहतर आवाज़ और बेहद दिलकश संगीत से सजी ये गीत हमारी यादों में आज भी बसे हुए हैं। जी हाँ, बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि पिछड़ कर भी जो आपके भीतर रह जाए वही प्रेम है। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं और दोस्त कारवां भी बदल जाता है, पर नहीं बदलता रूह में बसा हुआ वो इंसान, अपनी जगह नहीं बदलता। जी हाँ, फिलहाल आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटने की मांगती हूँ आपसे इजाजत और आपके छोड़े जाती हूँ एक बेहद प्यारे से गीत के साथ जो कि है प्रोफेसर फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज दी है रफी साहब और लता जी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Ki Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
1: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So, there are many, many aspects of it, including maritime security.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defense, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani foreign minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari-Delhi and Shakurbasti-Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The Ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. And to discuss the stories, we are joined in our studio by economic expert Udayan Ray. Namaskar Udayan and welcome to Akashwani.
1: Namaskar Lalema.
2: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। Most Asian stock markets market indices end in positive territory and global crude oil prices rise.
2: घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की बढ़त, सेंसेक्स में 800 से अधिक अंकों का उछाल, वहीं निफ्टी 24,200 से ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी।

0: Well, before we move ahead, here's a disclaimer for all our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में अच्छे खासी खरीदारी के कारण ये तेजी देखी गई। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक चढ़कर 24,207 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप में 1.4% का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप में 1.5% से अधिक की वृद्धि हुई। दोनों सूचकांकों ने कारोबार के दौरान 52 हफ्ते के अपने नए उच्चतम स्तर को छुआ। इससे पहले आज वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले थे और पूरे दिन हरे निशान के साथ कारोबार हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today, led by broad-based buying. The Sensex rose 828 points to close at 77,569. Nifty also climbed 244 points to settle at 24,207. The broader markets on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap 100 advanced 1.4%, small-cap 100 climbed more than 1.5%. Both the indices touched their fresh 52-week highs during the trading session. Earlier today, the benchmark indices opened higher amid positive global cues and maintained upbeat momentum throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों ने बढ़त दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में रिलायंस 2.3% ऊपर आई। टेक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगभग 2.2% की तेजी देखी गई और एक्सिस बैंक 1.9% के लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ

0: declined and 174 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.86 पर कारोबार कर रहा था। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
0: So then we've been seeing that the markets have been very volatile, and if I may take your position as an expert partly and in lighter vein and say that much has been dependent on the utterances of President Trump. How do you view the geopolitical situation and other factors affecting the markets, although they have ended 1% higher today, over 1% higher today? How do you view these factors and what other factors, if at all?
2: Well, Lalima, I would say that it's basically what others also think. There's nothing very unique in what I'm going to say, that the TCS results, it's like a bellwether. From that result, market is gauging, it's trying to gauge that, that IT, the impact on IT is not as tough, it's not as severe as it was being thought of. So you would see that every other IT stock is doing, there's a certain amount of relief, a certain amount. So there, the market seems to be taking a cue from there, that the IT, the situation in IT is not as dire. You know, there was this whole thing about India missing out the AI boom, and all that. Mm-hmm. So suddenly data has come in and people seem to have changed their mind. So that's number one. Mm-hmm. Second is, you mentioned statements. And despite all that is going on, the tit for tat that's going on, market seems to be now discerning. So other statements that are coming in, that the discussions are on and stuff like that. So market is possibly choosing to believe that. But in our case, the IT bit is something, it's not so much the individual company, but the signal that people are taking, that as to, from that company, that people are trying to take a signal that things may not be as difficult or as dire, and it's turned out to be a little better, and people expect that more to continue. Mm-hmm. With the results coming in,
0: as they say, markets are dependent on sentiment, and the sentiment is all as well.
2: Yeah.
1: उदयन, जो आज हमने तेजी देखी लगभग 1% से अधिक की बढ़त रही है, तो ये सिर्फ एक दिन की हम तेजी मान सकते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, तो आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो एक नए बुल रन की शुरुआत इसे माना जा सकता है। ये मार्केट जैसा दिखा कि पिछले 2 सप्ताह में जैसा परफॉर्म कर रहा था, इस हफ्ते में शायद थोड़ा सा सहारा मिला है मार्केट को, जिसमें घरेलू निवेशकों से ज्यादा विदेशी निवेशकों का सहारा ज्यादा मिला, तो क्या कह सकते हैं इस पर?
2: देखिए, आपने जो विदेशी निवेशक के बारे में कह रहा हूँ, उनकी वापसी तो थोड़ी बहुत हुई है, मतलब उस लेवल की नहीं हुई है, पर वापसी हुई है। अब जो आपके जो नतीजे आएंगे उससे काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी कई जगह से, कई क्षेत्रों से काफ़ी सकारात्मक है, तो उस पीछे की ये खबरें हैं जो कि आती रहेंगी। अब एक तो वह वहाँ से आएंगी, जो पीछे की जो नतीजे, क्वार्टरली जो तिमाही जो नतीजे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि अप्रैल, मई, जून में काफ़ी इतने चैलेंज होने के बावजूद भी वो सेक्टर, FMCG मानिए, बाकी मांगे, वहाँ पे एक दृढ़ता देखी गई है। पर आगे चल के जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है, कितना अच्छा स्प्रेड होता है, कितना कुछ कोई डेफिशिएंसी नहीं आ जाती है, एक चिंता थी, तो वो काफ़ी कुछ हेडलाइंस को, रादर मार्केट सेंटिमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि आप पूरा, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो खरीदारी होती है, जो कंजम्पशन, जो त्योहारों के वक्त हैं, तो वहाँ से वो निष्कर्ष निकाला जाएगा, वहाँ से वो वो आकलन किया जाएगा और वहां से वो आप मान सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस जरूर होगा, क्योंकि कंजम्पशन के जो से जुड़े हुए खपत से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मॉनसून की प्रगति का और किस क्वालिटी की वो होती है वो काफी कुछ डिपेंड।
1: तो इसमें ये मान सकते हैं कि बाजार को आगे मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए आपका,

0: Of course, we need to perk up our overall growth. It's challenged by the international conditions. 6.5, 6.6, or even 7 is not good enough for us for the kind of ambitions we have.
1: Yes.
0: But then there's only so much that we can do all by ourselves. There has to be also a conducive international environment.
1: Right.
2: और आगे बढ़ते हैं, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया कॉस्पी इंडेक्स 2.5% ऊपर आ गया। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% नीचे आ गया, जबकि चक्रवात बावी की वजह से आज ताइवान का बाजार बंद रहा। दिन ओवर वैल्यूएशन का इस एशियाई बाजार में क्या रुख रह सकता है?
0: देखिए, ओवर वैल्यूएशन की अगर बात की जा रही है, अब तो इतना बीटन डाउन हो गया हमारे जो लार्ज कैप्स हैं। कोई अब अगर कोई कंप्लेन करे कि आप ओवर वैल्यूड है, वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड सुनते सुनते ही 6-7 महीने हो गए। तो कई लोग अभी भी शायद आर्ग्यू करें, पर वहां से तो काफी मूवमेंट हुई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अब धीरे धीरे करके वो वाला जो थीम है वो शायद वो ना रहे, और कुछ दूसरे किस्म के, दूसरे कैपिटलाइजेशन के जो स्टॉक्स हैं, कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि वहां पे अच्छे आपको बार्गेन्स मिल रहे हैं।
2: Okay.
0: अब ये तो इंडिविजुअल उसके बारे में बात है कि वो वैल्यूएशन वो कौन से को वाजिब सोचेगा, बट इट्स अभी जो जिस हाल में है वो अगर आप कोई मुझसे पूछे, वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले जो स्थिति थी उसे तो मैं कहूंगा बेहतर है। तो इसलिए अगर कोई बार्गेन, जैसे आप दुकानों में बार्गेन लेने जाते हैं, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, अगर बार्गेन वाली बात अगर आ रही है तो शायद अब शायद बार्गेन वाली स्थिति बेहतर है वनस्पत इसके की 6-7 महीने पहले जो थी। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस ये ऐसा वक्त है जहाँ पे जो रेगुलर छोटे इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या जो भी अदर एनपीएस के थ्रू कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो मार्केट्स में वो पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि यही उससे उनका एवरेज जो खरीदारी
2: होगा,
0: जो कॉस्ट है वो एक मैनेजेबल लेवल रहेगा। जब अपवर्ड मूव होगा तो उसमें उनको गेन्स मिलेंगे।
2: राइट,
1: सो अर्लियर वी यूज्ड टू से ऑयल एंड नाउ वी से इन लाइटर वे अगेन दैट सेमीकंडक्टर इज द न्यू चिप ऑन द ब्लॉक, हूएवर हैज द सेमीकंडक्टर इज रूल्स द वर्ल्ड।
0: या व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इज, यू नो, it happens in every market. First there are darlings, people, you stocks that you like. Then you say that this is too overvalued, what do we do, is there somebody who looks like the superstar but is not a superstar yet? So that's how there are certain, even in semiconductors you find certain companies which have certainly caught the eye, and people are sort of attracted or towards those stocks. So sometimes what happens is you move towards one particular counter or stock, and then after a point of time it gets beaten down a little bit. So those things are happening, those are interesting things. Yes, semiconductors are going to be there, they're going to influence market movements, because that is going to become, see, Lalima, one thing is there, whether you agree with me or not, the way technology has come into our lives, whether it's mobile phones or whatever, AI, so almost everything that is being offered is on a technological platform.
1: Absolutely.
0: So every company is a technology company which is offering something.
1: Mm.
0: So that's how we have become. And if the infrastructure is going to be based on semiconductors, then it is like oil, data and semiconductors and stuff like that, anything related to it is going to be very crucial. And especially market sentiments and market movements is going to keep determining.
1: Right. And now look at the forex reserves. Well, India's foreign exchange reserves rose over $7.2 billion to over $674 billion during the week ended July 3rd. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $4.5 billion to over $545 billion during the week. Gold reserves rose around $2.7 billion to over $105 billion.
2: इस वर्ष जून में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 26% से अधिक बढ़कर 28,973 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मई में ये 22,908 करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के अनुसार जून में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 31,781 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो मई के मुकाबले 2.7% ज्यादा है। इक्विटी में जून महीने के दौरान मिड कैप फंड में सबसे ज्यादा निवेश आया, जिसकी कुल धनराशि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक रही। इसके बाद स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड का नंबर रहा। वहीं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मामले में रुख उल्टा हो गया। पिछले महीनों में मुनाफा वसूली के बाद इसमें 3,443 करोड़ रुपए का निवेश आया, हालांकि जून में डेट फंड से निकालने पैसे का सिलसिला जारी रहा। कुल मिलाकर 1,09,000 करोड़ रुपए निकाले गए। उस दिन ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, कहां मई में 22,908 करोड़ और अभी जून में 28,973 करोड़, क्या इससे हम कह सकते हैं कि ये एक शिफ्ट है जो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, या बाजार का प्रभाव अभी का देखते हुए, बाजार के हाल को देखते हुए थोड़ा सा सोचने में बदलाव आया है निवेशकों के?
0: उत्साह बढ़ा है जो जब आपका ये कोई हमारे देश वाली बात नहीं, जहाँ पे भी मार्केट्स अच्छा करती हैं वहाँ पे उत्साह बढ़ जाता है और निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि आप इसे रिसेंसी बायस कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस में, कि जो अभी अभी हो रहा है वो हमारे जो निर्णय ले रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि हम 3-5 साल का हम नहीं देखते हैं। वैसे देखना चाहिए पर हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्साह बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई तो वहाँ पे ये आपने इस उत्साह को पाया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं और जो मुझे लगता है कि वो ये है कि एक स्तर बना रहा है। इतना कुछ हो गया तब भी हमारे निवेशक डटे रहे हैं और एक वेरी हाई लेवल ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती चली जा रही। मतलब अगर इक्विटी को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, भारत के भविष्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में अगर कहा जाए तो वोट वो मिल रहा है कंटिन्यूअसली हमारे निवेशक। तो कहते हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट्स इज लाइक अ वोटिंग मशीन और व्हाटएवर एक किसी महापुरुष ने कहा था, तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल लागू हो रही कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगातार मिलता चला जा रहा है।
2: इसमें एक चीज और है कि ETF में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जबकि मुनाफा वसूली भी बड़े पैमाने पर हमने देखी है बीते दिनों में।
0: देखिए मुनाफा वसूली कई बार क्या हो जाता है कि कहना बड़ा मुश्किल है। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, गोल्ड में जो निवेश हम करते हैं उसको एक शॉर्ट टर्म उसमें ना लेके करना चाहिए, बट एनीवे अगर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि इक्विटीज में, इसका मतलब इक्विटी कल्चर हमारे देश में आ गया है। हम रिस्क, अगर मार्केट्स डाउन जाते हैं हम नर्वस नहीं हो जाते। पहले क्या होता, बिल्कुल खाली हो जाती थी, बिल्कुल डीमैट से डीमैट भी बिल्कुल वीरान हो जाते थे। वो चीज नहीं हो रही, वो हिम्मत है, वो स्टमक है, वो जोश जज्बा है एंड कॉन्फिडेंस, जो वोट है, वोट फॉर द फ्यूचर, वो मिल रहा है एंड वो इन खबरों से लगातार आती जा रही है।
1: Well, we've had the unprecedented number of demat accounts open in the last 1 year, and that says it all about the Indian markets. Well, moving on, Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour. PM Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Mr. Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce and defence. In an interview to Akashvani, Dr. Rahul Sen, economist and senior lecturer at Auckland University of Technology, said the bilateral relationship between India and New Zealand has a lot of potential to grow.
3: To me, this opportunity to take the bilateral trade relationship between New Zealand and India, which I would say has a lot of potential to grow, because currently India is the 11th largest trading partner of New Zealand, not even in the top 10. And clearly, this FTA should have the potential of taking India up the ranking of New Zealand's trade easily among the top 5. This FTA is providing opportunities for investments coming in from New Zealand to India, with an aspiration of about $20 billion US dollars of investment coming in over the next 15 years.
1: Against this backdrop, Prime Minister Modi's visit assumes even greater significance. Tomorrow, he will participate in a major business event where discussions will

0: focus on trade, investment and expanding economic cooperation between the two countries. Uden, first the Prime Minister goes to Australia, now New Zealand. Is energy security central to this whole trip and trade deal?
1: Absolutely. Lalima, you would have seen in the budget and other places the pronouncements regarding nuclear energy. Mm-hmm. So we want smaller reactors. We don't want those mega projects. And we want to crack this energy thing quite a bit. We cannot become an AI world power without having power.
0: Yes.
1: So we need that power. Is a critical area, power, water. Mm-hmm. So energies and also things like LNG and others, mm-hmm. those are also equally important. Coal is important. So this particular part of the globe is actually much more important that people like me normally think.
0: Yeah, and Australia has good quality and quantity of uranium.
1: Absolutely.
0: Right.
2: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आज कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने से 2027 में दुनिया भर में तेल की भारी अतिरिक्त आपूर्ति का उसका अनुमान गलत साबित हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जून में वैश्विक तेल आपूर्ति 4.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 98.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य के पास फंसे टैंकरों ने अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर दी है। इस सुधार के बावजूद वैश्विक उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी क्योंकि 2027 में इसमें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। ये 6 वर्षों में पहली वार्षिक गिरावट होगी। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल 3.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी के बाद अगले साल ऑयल सप्लाई में 7.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी।
0: And global crude oil prices rose today as renewed geopolitical concerns reignited worries about supply disruptions. Brent crude was trading 0.7% up at $76.84 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.5% up at $72.48 per barrel when reports last came in. And let's talk about the Indian bullion market, where 24-carat gold was trading 0.8% down at 1,44,720 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,22,610 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.7% नीचे आकर 1,44,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.8% की गिरावट के साथ 2,22,345 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। उद्यम जी, बहुत ही कम शब्दों में क्रूड ऑयल के बारे में आपके विचार क्या होंगे?
1: ये देखिए, ये जैसे जैसे वहाँ पे संघर्ष का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जैसे आपने कहा 9 मिलियन बैरल्स का फर्क है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेस में से मतलब पंप करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, आर्थिक वृद्धि का दर विश्व में कम हो जाता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक सप्लाई एंड डिमांड में एक एडजस्टमेंट होगा।
0: राइट, थैंक यू डियन फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियोज एंड अपडेटिंग अस।
1: थैंक यू लालिमा।
0: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200. Most Asian stock market indices end in positive territory and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

श्रोताओं, सुना है कि अगर कोई दिल में उतरना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं। एक प्यारी सी मुस्कान, थोड़ी सी खामोशी, कुछ अनकही बातें और थोड़ा सा अपनापन। जी हाँ श्रोताओं, यही वो चाबी है जो हर दिल का ताला खोलती है। जी हाँ, यही अंदाज लिए आज इस वीराने में बाहर लेकर आप तक पहुंच गए हैं गीत मेरे मन मीत लेकर। स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगे बेहद प्यारे और सदाबहार गीतों के साथ। तो आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मन मीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है चोरी चोरी फिल्म से लता जी और मना डी की आवाज में। इस गीत को आप सुनेंगे, इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने।

101.1 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM कूल चैनल और प्रोग्राम आपका पसंदीदा गीत मेरे मन में। ये अगला गीत जो आप सुनेंगे अप्रैल फूल फिल्म से है लता जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरी मनमीत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:51 और 6 सेकेंड। और श्रोताओं, ये अगला गीत तीसरी मंजिल फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया आदि बर्मन जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि अपने सफर को आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। और कहते हैं ना, बातें तमाम मुकम्मल हुई जरूरी तो नहीं। जी हाँ, ये मुलाकात अभी और कुछ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलूंगी। इंतजार रखिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। ये अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है आशा जी और रफी जी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत को संगीत से सजाया है, तो अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने। हम जूली फिल्म से ये गीत आपकी नजर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने कल वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश में वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अब से थोड़ी देर में रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है, शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठी एक कहानी याद है। आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर, आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर, मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 5 सेकंड, शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

जब बात दीवानों की चली है तो बात दूर तक जानी चाहिए, शायद वहां तक जहां हम ये ना जान जाएं कि ये लोग कभी अकेले नहीं होते। किसी का इंतजार, किसी का ख्वाब हमेशा इनके साथ चलता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी थोड़े थोड़े दीवाने होते हैं, वो जो कैसे, किसी की याद में, किसी के प्यार में, है ना। फिलहाल हमें इंतजार है एक प्यारे से गाने का, अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

0: का।
1: आपको पता है जब मैं ये गाना सुन रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, और वो ये था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखा हो और उसने भी आपको देखा हो और फिर ऐसा लगा हो कि टाइम रुक गया। अगर ऐसा कुछ फिल्मी किस्सा आपके साथ हुआ है तो फिर स्माइल करिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल मुझ तक पहुँचती है और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

कहते हैं कि वादे टूट जाते हैं, लेकिन जो वादे आंखों से किए जाते हैं वो कभी नहीं बदलते। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी होते हैं, और अगर इस बिज़ी ज़िंदगी में आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी आंखों में आपको अपना अक्स दिखता है, तो आप खुशनसीब हैं। उनके लिए आज का दिन थोड़ा ख़ास बनाने की कोशिश करते हैं। प्यार का यह एहसास यूं ही बना रहे। अगला गीत अभी के लिए

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहराव बनकर सबके हिस्से आना ही चाहिए। सौदशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:39 और 54 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। सुन रहे हैं आप अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब मौसम की बात चली है, दिल की बात चली है, तो फिर इस हसीन सफ़र में रुकना मना है। जब समा इतना प्यारा हो और दिल पूरी तरह से रोमांटिक मिजाज में हो, तो प्यार में लंबे चौड़े वादे न करके पल भर का प्यार मुकम्मल किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए।

कभी कभी हम किसी के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि हमें उस इंसान की झूठी तसल्ली भी सच्ची लगने लगती है। होता है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ भी होता है। बस अब वो इंसान हमारे साथ कुछ पल बिता ले, वही हमें बहुत कुछ लगता है। अगर इस गाने को सुनकर आपके दिल में कोई नाम धड़कता है, कोई ऐसा नाम जिससे आज भी आपको उम्मीद है, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो, तो इस गाने के साथ उसे याद करते हैं। आज अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी ने जलते हुए शहर में एक ठंडी छांव ढूंढ ली हो, ठंडा किनारा ढूंढ लिया हो, सुकून वाली एक जगह मिल गई हो। अगर आप भी इस वक्त अंधेरे में सिर्फ रेडियो और आवाज के सहारे बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको तो मालूम ही है अंधेरे में मेरी आवाज़ लगातार आपका पीछा करती है। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल ने अपना बोल ही दिया है तो ये सफ़र लंबा जाएगा। फिलहाल निशिकंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह

0: में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद ये जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ वार्म एंड एंथुजियास्टिक वेलकम अपॉन हिज अराइवल इन ऑकलैंड, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज हिस्टोरिक टू डे विजिट टू न्यूजीलैंड। दिस इज द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन नियरली फोर डेकेड्स आफ्टर अराइव।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से, हमें संगीत से आवाज़ देता है। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम दिल्ली का ठग और आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा जी की, संगीत रवि का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था एसडी नारंग ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी किशोर कुमार, नूतन, मदनपुरी, इफ्तिखार और इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया था और इस फिल्म के जो गीत थे वो लिखे थे एसएचपी।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत फिल्म चोरी चोरी से। चोरी चोरी 1956 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक बहुत ही लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नरगिस ने और भगवान दादा, प्राण, डेविड, जॉनी वॉकर सहायक भूमिकाएं निभाई थी उन्होंने। और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इस फिल्म के संगीत की लोकप्रियता ने इस फिल्म को बहुत ही कामयाबी दिलाई थी। और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में से एक मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि 1991 में प्रदर्शित फिल्म दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म की कहानी से प्रेरित है। और अब अगला गीत अब तक पहुंच रहा है फिल्म कोहिनूर से रफी साहब और लता जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम कोहिनूर और आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कोहिनूर फिल्म की बात करें तो ये रिलीज़ हुई थी 1960 में और ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस किया था वी एन सिन्हा ने और डायरेक्ट किया था एस यू सनी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने। संगीत नौशाद साहब का था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही थी और साल 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। और अब अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

फिल्म खानदान से सुना आपने ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रवि का था और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। अगर इस फिल्म की बात करें, खानदान फिल्म की बात करें, तो ये रिलीज़ हुई थी 1965 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मुमताज़ ने। इस फिल्म का निर्देशन किया था ए भीम सिंह ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। और इस फिल्म का हिट होने के पीछे सबसे प्रमुख जो कारण था वो था इसका संगीत। इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

7.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

गीत सुहाने प्रोग्राम का आज का संगीत भरा सफ़र यहीं तक। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड

0: न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआनपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों के प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वॉन्ग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Mwanpui,

वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की कोई किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था। जरा देर का कोई ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर। तू खिजा का फूल है, तू खिजा का फूल है, मुस्कुरा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:13 और 4 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के दर्द को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से, अपनी बातों से रात के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

0: जब निगाहें मिलाने को जी चाहने लगे और दीदार को दिल तरसे तो समझो इश्क सातवें आसमान पर है। और जब इश्क सातवें आसमान पर है तो फिर ये वाला गाना सुनना तो बनता है। अगला गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से, वो इश्क ही क्या जिसमें सर न झुके।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।
1: झुका के सर को पूछो मैडम,

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा।
3: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
1: हाँ,

वैसे जब कोई इतनी शिद्दत और अदब से प्यार का इजहार करे तो कोई कैसे अपना दिल ना हारे, है ना। सच्चा प्यार भी तो यही होता है, जहाँ जुबान से पहले आंखें झुक जाती हैं, दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती है। अगर इस गाने को सुनकर आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं तो ये अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वो जो पहली मोहब्बत वाली घबराहट होती है ना, वही है इस गाने में। जब आप सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते, समझ नहीं आता कि इश्क को कहा कैसे जाए, और बस वहीं पर एक प्यारी सी मुस्कान सब कुछ कह देती है। कितना खूबसूरत होता है ना वो एहसास जब कोई आपके सामने आए और आपकी धड़कनें अचानक से बढ़ जाए, आपको वो शब्द ना मिले जिसमें इस खूबसूरत इश्क का इजहार किया जाए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का। सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। नदियों ने कभी नहीं कहा सागर से, जबकि वो मिली। पेड़ों ने कभी नहीं किया वादा हमसे, जबकि उन्होंने फल दिया। जहां आश्वस्ति होती है वहां वादा नहीं होता। वादा खुद से किया गया एक छल है। दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: कमर।
1: कुछ भी कहो, पहली मुलाकात का जादू ही कुछ और होता है ना। जब आप घंटों आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जाएं, बाल कैसे बनाए जाए, पहली मुलाकात में

क्या बात की जाए। दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि लगता है कि सामने वाले को सुनाई ना दे जाए। सच बताऊं दोस्तों, जिंदगी में हम कितनी भी मुलाकातें क्यों ना कर लें किसी और से, पर जो पहली मुलाकात का जादू होता है वो हमेशा दिल के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत खास होता है। और वो पहली मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है हमें भी नहीं पता चलता। अगला गीत आप ही के लिए।

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार कभी पूछ कर या बता कर नहीं होता, और ये तो बस चुपके से हवा के झोंके की तरह आता है और पूरे दिल पे छा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की सबसे बड़ी खासियत भी यही है और खूबसूरती भी यही है कि इसका कोई वक्त नहीं होता और कोई जगह नहीं होती। बस दिल हार बैठे तो हार बैठे। अगर आपके दिल में भी इस वक्त किसी का चेहरा घूम रहा है तो याद कीजिए इस गीत में उस इंसान को

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश

0: मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा है कि जनवरी 2025 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट।
1: दोस्तों, आराधना फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दो उस्ताद फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलाल आबादी की रचना है और संगीत ओपी नैयर का।

दोस्तों, बहुत बार आपसे कोई मुद्दत बाद मिलता है तो वो लोग आपसे इतने सवाल कर डालते हैं कि सांस भर में ही सवाल पर सवाल, और आप सोचने लगते हैं कि भाई इससे अच्छा तो शायद ना ही मिलते, या मैंने इनसे इनके साथ मिलकर ही गलती कर ली। किसी के मन में ऐसा ना आए तो आप खुशी से उनसे मिलें और बातचीत कीजिए।

ससुराल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत।

समर हाउस। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, असद भोपाली की रचना थी और रवि का संगीत। दोस्तों वाकई में ही बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे का प्यार उम्र भर के लिए पा लेते हैं। और अगला गीत हमराही कार्यक्रम में आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना थी और इकबाल कुरैशी का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे छोटी सी बात फिल्म से, गीत आशा भोसले और विजय येसुदास की आवाज़ में है, योगेश का लिखा गीत है और सलील चौधरी का संगीत।

दोस्तों, जब आप अपनों से दिल की बात करने लग जाते हैं तो बस फिर उनकी दूरी कभी सहन नहीं हो पाती।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। राजा मेहंदी अली खान की रचना थी और संगीत मदन मोहन का। अगला गीत आप सुनेंगे धूल का फूल फिल्म से, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना है और संगीत एंड तका।

कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

0: हमारे सभी दोस्तों ने पहचान लिया होगा कि ये गीत ताजमहल फिल्म से था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना थी और संगीत रोशन का। अगला गीत आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ है। दोस्तों, वक्त की रफ्तार चल रही है और कह रही है कि इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, और हम भी तो वक्त में बंधे होते हैं और अनुशासन का पालन करते रहते हैं। गीत आपके साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन

नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अरुणिमा कार्यक्रम में। और सभी दोस्तों को गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

दोस्तों, बहुत ही मधुर गीत आपने सुना, असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र ने गीत को रचा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। पता है दोस्तों, जब आप इस गीत को सुन रहे थे, साथ साथ मैं भी इस गीत को गुनगुना रही थी, क्योंकि ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और पूरा गीत आता है। अगला गीत आप सुनेंगे जमाने को दिखाना है फिल्म से, शैलेंद्र की आवाज में। मजू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा और आर डी बर्मन ने धुन तैयार की है।

दोस्तों, बहुत बार हम ज़माने को दिखाने के लिए बहुत आडंबर रचने लगते हैं। जो हम दिखावा नहीं करना चाहते वह भी करने लगते हैं, लेकिन बाद में खुद परेशान होने लगते हैं। अच्छा यही होगा कि दोस्तों से दोस्ती का रिश्ता प्यार से निभाएं और आगे बढ़ते जाएं।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र, उषा मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप अगला गीत सुनेंगे प्रेम पुजारी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। शब्दों में पिरोया है नीरज ने और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना पेइंग गेस्ट फिल्म से। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत था सचिन देव बर्मन का। दोस्तों, कई बार हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कभी कभी बात का मतलब जो है कोई और समझ बैठता है, और हम जब घर आ जाते हैं या कभी फिर दोबारा उनसे मिलते हैं तो वो मन में कोई ना कोई बात लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने उस बात का मतलब कुछ और निकाला था, लेकिन हमारा मतलब ऐसा नहीं था। तो कई बार बातों में ऐसा हो जाता है, तो अच्छा होगा कि हम बातों को आपसी में स्पष्ट कर लें ताकि रिश्तों को बिगाड़ा ना जा सके।

दोस्तों, आपने भी इस गीत में सुन लिया ना कि हर बात के दो मतलब होते हैं। जो अच्छा लगे वो अपना लो, और जो बुरा लगे बस उसे जाने दो। दिल पर बिल्कुल ना रखें। पैसे की गुड़िया इस फिल्म से लिया ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में। वर्मा मलिक ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। और जब दोस्तों अपने दिल की बात, हमें कई बार लगता है कि कितनी देर हो गई या कितना मन करता है कि मैं अब इस बात को किसी से साझा करूं, तो उसी से ही साझा कीजिए जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपके दोस्त तक आपकी बात सीमित रहेगी, वरना खिल्ली उड़ाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे।

और दिल की बात कर ही लेनी चाहिए जब मौका मिले तो। पहचान फिल्म से गीत आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल थे शंकर जयकिशन का संकेत। दोस्तों कार्यक्रम में अगला गीत अभी कुछ ही पलों बाद आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

सुंदरता को बयां करता ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। सरस्वती चंद्र फिल्म से लिया ये गीत था। बोल इंदिवर के थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अगला गीत आप सुनेंगे काला बाजार फिल्म से, आशा भोसले का गाया हुआ है। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस धुन को सुनकर। और इस गीत को सुनवाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि सबके सपने जो इंसान अपने मन में जब दिन की शुरुआत होती है तो एक लंबे कार्य के लिए तैयार हो जाता है एक नई ऊर्जा लेकर। तो उसके सपने जो उसने संजोए हैं वो अवश्य पूरे होने ही चाहिए।

और जब सपने साकार हो जाते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है ना। और हमारा तो मन यही चाहता है कि आपका मन भी यूं ही खुश रहे और आप मुस्कुराते रहें। और अब कार्यक्रम के आखिर में पारसमणि फिल्म से आपको गीत सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और कमल बैरोट की आवाज़ में, असद भोपाली की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। जुड़े रहिए FM गोल्ड से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। वहीं न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। वहीं बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र

दोस्तों नमस्कार। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आपकी दोस्त वंदना चुग

जब सच्चे मन से कोई उसे पुकारता है या अटूट विश्वास रखता है तो उसे भक्तों की पुकार सुनकर आना ही पड़ता है। आपने ये भक्ति रचना सुनी अवतार फिल्म से नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत। दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं और उन्होंने अपनी रचना का रूप इस धरती पर माँ को बनाकर भेजा।

दोस्तों, वाक्य में ही ईश्वर को हमने कभी नहीं देखा, ये तो एकमात्र हमारी कल्पना है। लेकिन माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, जो बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, फिर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में भेजती है। तो उस माँ की हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। और अब अगला गीत मनचली फिल्म से मुकेश का गाया हुआ है, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनचली फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने गीत सुना। दोस्तों, अब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर कौन कौन दौड़ा चला आता है ये तो सुनने वाला ही जानता है, लेकिन राधा के मन में तो हमेशा ये बांसुरी बजती रहती है और बसी रहती है।